दीवान है हर तान सतानी। श्लोक महला पहला। जे मोहका कर्म है कर्म पितरी दे अगे वस्त सिंजानी है पितरी चोर करे वड़ी है हथ दलाल के मुसफी करे ना।

0: नानक सूत के नरे ज्ञान तारे तो महला पहला
1: मन का सूत लोभ है जेवा सूत कूड़ अखी सूत वेखना पर त्रे पर धन रूप

पौड़ी नानक अंतना जापनी हरता के भरावा आप करे शक्ति भी आप करे मां इक ना गली जंजीरिया तुरी चरे बसया आप कराए करे आप हूं कैसे करी पुकार नानक करना जिनकी आप।

ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ।

यह आकाशवाणी के सिंधी सर्विस है 9870 किलोहर्ट से तंखा सवे तमा आकाशवाणी की सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डिफरेंट डिश से बुझी सकता है। प्रोग्राम शुरू थी चुका है, डिटेल्स कुछ इन तरह थोड़ी देर में तमा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जे महीनेवार प्रोग्राम मन की बात जे किस्त 135 जो सिंधी तर्ज में बुधना

0: ऐं ख़ासि ख़ासि ख़बरूं प्रोग्राम जे आख़िर में नशर कयूं वेंदियूं। हिते असांजे प्रोग्राम जी डिटेल्स तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधर। हिन पेश आहे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जे महीनेवार प्रोग्राम मन की बात जे किस्त 135 जो सिंधी तर्जुमो।
1: मुंहिंजे प्यारा देशवासियो, नमस्कार। मन की बात में हिकु दफ़ो तव्हां सां ॿीहर जुड़ी करे मूंखे ख़ुशी थी रही आहे। साल 2026 लॻभॻि अधु ख़तम थियण ते आयो आहे ऐं इन्हनि 6 महीननि दौरान असां मन की बात में देशवासियुनि जे घणनि हासिलातुनि ते चर्चा कई आहे। जून महीने में पिण भारत अहिड़ियूं हासिलातूं हासिल कयूं आहिनि जंहिं ते सभिनी भारतवासियुनि खे फ़ख्रु महसूस थी रहियो आहे। इहे कामयाबियूं आहिनि देश जे सुरक्षा ऐं आत्मनिर्भरता सां जुड़ियल आहिनि। ताज़ो ई मूंखे कोलकाता में नेवी सां जुड़ियल हिकु प्रोग्राम में शरीक थियण जो मौक़ो मिलियो। उते INS दूनागिरी, INS संशोधक ऐं INS अग्रह खे भारतीय नेवी में शुमार कयो वियो। इन्हनि ॿेड़नि जी डिज़ाइन तोड़े मैन्युफैक्चरिंग सभु कुझु भारत में तयार थियल आहे। साथियो, जून जे महीने में एविएशन सेक्टर में पिण देश खे हिकु वॾी कामयाबी मिली आहे। C-295 इहो हवाई जहाज़ मेड इन इंडिया आहे ऐं C-295 जहाज़ पंहिंजी पहिरीं उॾाम पूरी कई आहे ऐं अहिड़ा 40 जहाज़ भारत में तयार कया वेंदा। इन सां MSMEs ऐं एरोस्पेस खेत्र खे हिकु नई ताक़त मिलण वारी आहे। इन सां रोज़गार जा वज वधी रहिया आहिनि ऐं आत्मनिर्भर भारत जो मुहकम इरादो पुख़्तो थी रहियो आहे। जून महीने में ई DRDO ॾेही लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जी सोभाइती आज़माइश कई आहे। इन खे DRDO जे लेबोरेटरीज ऐं भारतीय इंडस्ट्रीज भाईवारनि मिली करे तयार कयो आहे, जंहिंजी माना आहे अॼु समुंड खां वठी करे आसमान ताईं असांजो भारत वधि में वधि सलामत ऐं आत्मनिर्भर थी रहियो आहे। दोस्तो, जून महीने में हिकु ॿियो प्रोग्राम थियो जंहिंमें पूरो आलम भारत जे कोशिश सां जुड़ी वियो ऐं सो हो आलमी योग ॾींहुं। हिन भेरे आलम जे 2500 खां बि वधीक हंधनि ते योग जा घणा ई प्रोग्राम थिया। असांजे देश में करोड़ माण्हुनि घणनि ई हंधनि ते योग प्रोग्राम में हिसो वरितो। हिन महीने अहमदाबाद में आलमी योग आसन चैंपियनशिप पिण थी, जंहिंमें भारत कुल 114 बिला खटिया आहिनि, तंहिंमें 102 सोने जा बिला शुमार आहिनि। भारत MEA चैंपियनशिप जे मेडल्स टैली में पहिरें नंबर ते रहियो आहे। मां सभिनी खटंदड़ रांदीगरनि खे तमामु घणियूं घणियूं वाधायूं थो ॾियां। दोस्तो, कंहिं बि मुल्क जी आत्मा संदसि अवाम हूंदी आहे ऐं जॾहिं देश जा माण्हू कोई मुहकम इरादो कंदा आहिनि त उनखे का बि ताक़त पंहिंजे मुहकम इरादे तां हटाए कोन सघंदी आहे। मुल्क जे अॾावत में पिण अवामी भाईवारी तमामु घणी वॾी ताक़त आहे, जेका असीं भारत में पिण ॾिसी रहिया आहियूं ऐं असां इन खे वर वर महसूस पिण करे रहिया आहियूं। साथियो, ओलह एशिया में तकरारी हालतुनि खे ॾिसंदे मूं देशवासियुनि खे कुझु अपीलूं कयूं। मूं अवाम खे चयो त जेतिरे क़दुरु थी सघे तव्हां कुझु अरसे लाइ सोन जी ख़रीदारी न करियो। मूं अवाम खे चयो त परडे॒ में मोकलूं मल्हाइण कोन वञो। मूं माण्हुनि खे चयो त कार पूलिंग खे वधाए डि॒यो। मूं किसाननि खे अपील कई त केमिकल्स वारा फर्टिलाइज़र न इस्तेमाल करे कुदरती भाण जो इस्तेमाल वधि में वधि कनि। मां देश जे हर हिकु शहरी जो थोरायतो आहियां जो उन्हनि मुंहिंजे अपील खे न फ़क़त हिमायत ॾिनी आहे पर इन में पंहिंजो भरपूर सहयोग ॾिनो आहे। मूंखे घणनि कुटुंबनि नियापो लिखी पंहिंजो आज़मूदो वंडियो आहे। घणनि कुटुंबनि इहो फ़ैसिलो कयो त हिन भेरे शादीअ में सोन जी ख़रीदारी कोन कई वेंदी ऐं जेकॾहिं ज़रूरत पई त पुराणे सोन खे रीसाइकल करे नवां ज़ेवर तयार कया वेंदा। घणनि माण्हुनि सोशल मीडिया ते लिखियो आहे त कहिड़े नमूने हिन भेरे हुननि परडे जे यात्रा खे टारे रखियो आहे। दोस्तो, कार पूलिंग सां पिण मूंखे अवाम वटां अनेक आज़मूदा मिली रहिया आहिनि। जेके माण्हू हिक ई तरफ़ वेंदा आहिनि से अॼुकल्ह गॾिजी करे कार पूलिंग ज़रिए वञी रहिया आहिनि ऐं घणाई माण्हू कोशिश करे बस ऐं मेट्रो खे कतब आणे रहिया आहिनि, जंहिं सां पेट्रोल ऐं डीज़ल जी झझी बचति थी रही आहे। इन तरह मुल्क जे घणनि हिसनि में कुदरती भाण जो वाहिपो पिण वधी रहियो आहे। दोस्तो, मूंखे इन ॻाल्हि जी ख़ुशी आहे त इन आलमी बहिराण खे असीं सभई भारतवासी मिली करे मुक़ाबिलो करे रहियूं ऐं मूंखे विश्वास आहे त अवामी भाईवारी जी इहा ताक़त असांखे वधीक पुख़्ताई ॾींदी ऐं असांखे कामयाब बणाईंदी। मुंहिंजे प्यारा देशवासियो, असांजे देश में जनम ॾींहुं, शादी मुरादी ऐं ॿिया प्रोग्राम पूरे समाज सां मिली जुली करे मल्हाया वेंदा आहिनि। हर को कुटुंब चाहींदो आहे कि संदनि ख़ुशियुनि

ॿिया पिण शुमार थियनि ऐं असीं इन तरह ईंदड़ महिमाननि खे सौगातूं पिण ॾींदा आहिनि। महाराष्ट्र जे नांदेड़ में हिकु कुटुंब पंहिंजी ख़ुशियुनि खे वंडण जे लाइ हिकु अहिड़ो प्रोग्राम कयो आहे, अहिड़ो कमु कयो आहे जेको हिन वक़्तु चर्चा जो मौज़ो थी वियो आहे। नांदेड़ जे बहादुरपुरा ॻोठ जे पेटकर कुटुंब सोचियो त जेकॾहिं ख़ुशी मल्हाइणी आहे, ख़ुशी विरिहाइणी आहे, त का अहिड़ी शइ ॾिनी वञे सौगात में जेका मुश्किल वक़्त में कंहिं कुटुंब खे इमदाद ॾेई सघे। ऐं कुटुंब रिटर्न गिफ्ट में ॻोठ जे लॻभॻि 3,500 माण्हुनि खे एक्सीडेंट इंश्योरेंस मैसर करायो। हर हिकु माण्हू खे 1,00,000 रुपए जो एक्सीडेंट वीमो ॾिनो वियो आहे। इन जे पुठियां जेके जज़्बात आहिनि से तमामु ई मुतासिर कंदड़ आहिनि। ऐं कुटुंब ॾिठो त एक्सीडेंट खां पोइ कुटुंब जी माली हालति तमामु ख़राब थी वेंदी आहे। अहिड़े वक़्त में हिकु नंढी सी इमदाद परिवार लाइ, मुतासिर कुटुंबनि जे लाइ वॾी ताक़त थी पवंदी आहे। दोस्तो, सरकार लखे ऐं किरोड़े कुटुंबनि खे एक्सीडेंट इंश्योरेंस मैसर कराए रही आहे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तहत महज़ साल जे 20 रुपए प्रीमियम ते कंहिंखे बि एक्सीडेंट कवर लाइ 2,00,000 करोड़ रुपया मिलंदा आहिनि। हेल ताईं इन स्कीम में 58 करोड़ खां वधीक माण्हू शुमार थी चुका आहिनि। तंहिंमें लॻभॻ 28 करोड़ असांजूं माताऊं, भेनरूं, धीअरूं ऐं औरतूं आहिनि। हेल ताईं मुतासिर कुटुंबनि खे 3,700 करोड़ रुपयनि खां बि वधीक जी माली मदद मिली चुकी आहे। साथियो, इन तरह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पिण घणी अहमियत रखे थी। इन स्कीम तहत कंहिं बि माण्हू जे ओचितो मौत ते संदसि परिवार खे 2,00,000 रुपयनि जो वीमो ॾिनो वेंदो आहे, जंहिंजो सालियानो प्रीमियम महज 436 रुपया, यानी कि हिकु ॾींहं जो प्रीमियम आहे फ़क़त 1.5 रुपयो। हेल ताईं इन स्कीम में 27 करोड़ खां बि वधीक माण्हू शुमार थी चुका आहिनि ऐं इन्हीअ रिथा तहत देश जे लॻभॻ 11,00,000 परिवारनि खे अंदाज़न 22,000 करोड़ रुपयनि जी माली इमदाद मिली चुकी आहे। इहे अंग अखर तमामु घणा वॾा आहिनि। इन्हनि अंगनि अखरनि जे पुठियां लखे कुटुंबनि जी पंहिंजी पंहिंजी कहाणी आहे। किथे का माउ पंहिंजे ॿार जी पढ़ाई बरक़रार रखी रही आहे छो जो खेसि माली इमदाद मिली आहे, त किथे का ज़ाल पंहिंजे घर जूं ज़िमेवारियूं निभाए रही आहे। साथियो, घणाई भेरा असांखे सुरक्षा जी शुरूआत तमामु ई नंढे नंढे नाणे सां कई वेंदी आहे, जितोणीकि इहे क़दम त तमामु नंढा नंढा आहिनि, पर इन सां नतीजो तमामु वॾो ऐं भारी ईंदो आहे। मुंहिंजी तव्हां सभिनी खे अपील आहे त पंहिंजे कुटुंब में इन्हनि रिथाउनि बाबति ॿियनि सभिनी खे ॼाण ज़रूर ॾींदा। मुंहिंजा प्यारा हमवतनी साथियो, अॼु मन की बात में असां हिकु अहिड़े मौज़ू ते ॻाल्हाईंदासीं जेको हज़ारे साल क़दीम आहे पर असांजे समाज सां जुड़ियल आहे। सो मौज़ू आहे अंधविश्वास। अंधविश्वास का फ़क़ति हिकु ग़लति धारणा कोन आहे, पर इहा भउ पण पैदा कंदी आहे जंहिंसां इंसान सच खे ॾिसणु बंदि कंदो आहे ऐं ग़लति फ़ैसिला खणंदो आहे। ऐं इहे फ़ैसिला बिना दलील जे, बिना सच खे ॼाणे अहिड़ा फ़ैसिला खणंदो आहे जंहिंसां संदसि घणो नुक़सानु थींदो आहे। समाज में अहिड़ा माण्हू पिण आहिनि जेके साइंस आज़मूदे ऐं दलील जे आधार ते इन्हनि ग़लति धारणाउनि ऐं अंधविश्वास खे ललकारींदा आहिनि। अंधविश्वास खां वठी करे विश्वास जी यात्रा को सवली कोन आहे, ऐं मां तव्हांखे अॼु अहिड़ी हिकु यात्रा बाबति ॿुधायां थो। दोस्तो, आसाम में हरगिला नाले हिकु दुर्लभ पखी आहे जेको माहौल खे साफ़ रखण में अहम रोल अदा कंदो आहे, पर आसाम जे कुझु इलाइक़नि में लंबे अरसे खां वठी इन पखीअ खे अपसुण करे मञियो वेंदो हो, जंहिं करे माण्हू इन पखीअ खे ॾिसण पसंदि कोन कंदा ऐं घणा भेरा उन्हनि वणनि खे कटे रखंदा जंहिं वण ते हरगुले पखीअ जो पंहिंजो आखेरो ठहियलु हूंदो। सोचो, अहिड़ो पखी जेको माहौल खे सफ़ा वेठो रखे सो माण्हुनि जे भव जो शिकार थी वियो। बायोलॉजिस्ट पूर्णिमा देवी बर्मन इहो सभु कुझु ॾिठो ऐं माण्हुनि अंदरि वेठल अंधविश्वास खे दूर करण जो मुहकम इरादो कयो। हुन उते माण्हुनि खे साइंसी दलीलूं ॾिनियूं ऐं पंहिंजे प्रोग्राम में औरतुनि खे शुमार कयो, ऐं औरतूं पिण संदसि प्रोग्राम में शुमार थी वियूं। जंहिं पखीअ खे अपसुण करे मञियो वेंदो सो हाणे ॻोठ जी सुञाणप थियण लॻो। हज़ारे औरतूं हरगिला पखी खे बचाइण लाइ अॻिते वधी आहियूं, जिन खे हरगिला आर्मी करे सुञातो वेंदो आहे। इन्हनि औरतुनि समाज सां जदोजहद पिण कई, समाज खे समुझायो ऐं अंधविश्वास खे छॾाइण लाइ खेनि दलीलूं पिण ॾिनियूं। औरतुनि साबित करे ॾेखारियो त जेकॾहिं सही ॼाण ॾिनी वञे त पुराणी सोच खे मटाए सघिजे थो। दोस्तो, मां चवंदो आहियां त जेको रांदि कंदो सो अॻिते तरक़ी कंदो। असांजे देश में नौजवाननि जो तादाद वधी रहियो आहे जेके रांदियुनि खे पंहिंजो कैरियर करे चूंडे रहिया आहिनि। इन सां वाबस्ता नागालैंड जा

0: मिसाल मूंखे मिलिया आहिनि। पहिरीं कोशिश आहे नागालैंड बेबी लीग, तव्हांखे लॻंदो की इहा का नंढनि ॿारनि जी मामूली काई लीग हूंदी, पर ईअं कोन आहे। पंजनि खां ॾहनि ॿारनि सालनि जा नंढा नंढा ॿार से इन लीग में शुमार थी करे फुटबॉल खेॾंदा आहिनि। इहा फुटबॉल जी हिकु अहिड़ी लीग आहे जिते खेनि पंहिंजी महारत ऐं रफ़्तार ॾेखारण जो मौको मिलंदो आहे ऐं खेनि सुञाणप पिण मिलंदी आहे। इन शुरूआति में नागालैंड में घणाई ॿार इन लीग सां शुमार थी विया आहिनि ऐं इहा लीग पंहिंजा टे साल पूरा करे चुकी आहे। नागालैंड में हिकु ॿी बहितरीन कार्रवाई थी रही आहे जंहिंजो नालो आहे नागालैंड वुमेन फुटसॉल लीग। फुटसॉल हिकु अलहदा नालो आहे। मां तव्हांखे ॿुधायां थो कि फुटसॉल जी माना आहे कि इनडोर फुटबॉल रांदि। इन तहत टीम में फ़क़ति पंज रांदीगर हूंदा आहिनि ऐं मैदान फुटबॉल जे मैदान खां तमामु नंढो हूंदो आहे, जंहिं सबब रांदीगरनि खे तकड़ा फ़ैसिला खणणा पवंदा आहिनि ऐं पंहिंजी महारत बहितर नमूने ॾेखारणी पवंदी आहे। नागालैंड जी वुमेन फुटसॉल लीग असांजी धीअरुनि खे पंहिंजी प्रतिभा ॾेखारण जो हिकु बहितरीन मौको मयसर कराए रही आहे ऐं मां अहिड़ियुनि कोशिशुनि लाइ नागालैंड वासियुनि जी साराह थो कयां। दोस्तो, ही दौर टेक्नोलॉजी जो आहे ऐं हर रोज रिसर्च थी रही आहे, नयूं नयूं एआई इनोवेशन साम्हूं अची रहियूं आहिनि। अहिड़े में हिकु सुवाल थो उभरी अचे त माण्हुनि जे क्रिएटिविटी खे कीअं सलामत रखियो वञे। टेक्नोलॉजी सां अॻिते वधंदे असां पंहिंजे पाड़ुनि खे कीअं सलामत रखे सघूं। इन्हीअ ॾिस में नालंदा यूनिवर्सिटी हिकु नए अवतार सां अॻिते वधी रही आहे। ॿ साल अॻु में मूंखे नालंदा यूनिवर्सिटी जे नई इमारत जो मुहूर्त करण जो मौको मिलियो। नालंदा यूनिवर्सिटी फिलोसॉफी जे बहस खे ॿीहर खां ज़िंदा रखे रही आहे, जंहिं में बहस को महज़ तर्क कोन हूंदो आहे, पर उन में सचाई सां गॾोगॾु पंहिंजी ॻाल्हि दलील सां रखणु ज़रूरी हूंदी आहे। असांखे साम्हूं वारे जी दलील खे ध्यान सां ॿुधणो पवंदो आहे। मूंखे ख़ुशी आहे त नालंदा यूनिवर्सिटी इन खे पंहिंजे कन्वोकेशन कार्रवाई जो हिसो बणायो आहे। इन में हिसो वठंदड़ लॻभॻि अधो अधु शागिर्द ॿियनि मुल्कनि मां आयल हुआ। मां इन लाइ नालंदा यूनिवर्सिटी खे वाधाई थो ॾियां ऐं देश जे ॿियनि यूनिवर्सिटी खे अपील कंदुसि त उहे पिण अहिड़ियूं कार्रवाइयूं कनि। साथियो, देश में नौजवाननि खे टेक्नोलॉजी सां जोड़ण लाइ घणियूं कार्रवाइयूं थी रहियूं आहिनि। दिल्ली में मौजूद सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐं डाटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करे रही आहे। भारत जे रवायती ॼाण खे जदीद टेक्नोलॉजी सां जोड़ण जो इहो हिकु अहम कदम आहे। इन सां असांजे क़दीम ग्रंथनि ऐं मैन्युस्क्रिप्ट खे डिजिटली सलामत रखण में ताक़त मिलंदी। मां सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जे इन कोशिशुनि लाइ खेसि घणी घणियूं शुभकामनाऊं थो ॾियां। दोस्तो, अॼु भारतीय संस्कृति दुनिया जे अलॻि अलॻि हिसनि में पहुची रही आहे। असांजा गीत संगीत ऐं रूहानियत खे दुनिया भर जा माण्हू ॼाणण जी कोशिश करे रहिया आहिनि ऐं पंहिंजी ज़िंदगीअ में अपनाए पढ़ रहिया आहिनि। भारत खां हज़ारे किलोमीटर परे कैरेबियन समुंड में डोमिनिकन रिपब्लिक नाले हिकु देश आहे, जिते भारतीयुनि जो तादादु शायदि 100 आहे या इन खां बि घटि आहे। तंहिंजे बावजूद बि भारतीय संस्कृति खे ऐं रूहानियत सां वाबस्ता हिकु वॾी कार्रवाई थी रही आहे। उते स्पेनिश ॿोली ॻाल्हाईंदड़ कुझु माण्हुनि हिकु टीम तयारु कई आहे ऐं टीम जो नालो रखियो आहे ब्रह्म कमल डोमिनिकना। टीम जा मेंबर मिली करे वैदिक अदब जो अध्ययन कंदा आहिनि, वैदिक मंत्रनि जो उच्चारण सिखी रहिया आहिनि ऐं इन लाइ केहू फॉर्मल या रस्मी ट्रेनिंग कोन वठी रहिया आहिनि। हू फ़क़ति ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ॿुधी करे वैदिक मंत्रनि खे तमामु ई बहितरीन नमूने सां उचारे रहिया आहिनि। हिन टीम में शुमार आहिनि सुकतम, श्री सुकतम, श्री रुद्रम, दुर्गा सुकतम ऐं देवी महात्मय। भारत खां एतिरो दूर रहंदे असांजी परंपराउनि खे सिखण में संदन कार्रवाई तारीफ़ जोगी आहे। मां ब्रह्म कमल डोमिनिकाना जे सभिनी मेंबरनि खे संदन कोशिशुनि लाइ शुभकामनाऊं थो ॾियां ऐं दिलि सां अहिड़नि माण्हुनि जी तारीफ़ थो करियां जेके भारतीय संस्कृति खे दुनिया भर में मशहूर करण लाइ लगातार कोशिशूं करे रहिया आहिनि। मुंहिंजा प्यारा हम वतनी साथियो, मेघालय जी सुञाणप बादलनि ऐं ख़ूबसूरत नज़ारनि सां आहे। जेके माण्हू मेघालय वेंदा आहिनि से माण्हुनि जे पंजाब खे लंबे अरसे ताईं यादि रखंदा आहिनि, पर मां हिते तव्हांखे मन की बात में अॼु मेघालय जी हिकु ॿी ख़ासि ॻाल्हि ॿुधाए रहियो आहियां। सा आहे मेघालय जूं रूट ब्रिजिस यानी के पाड़नि वारियूं पुलूं। इहे के महज़ रसनि वारियूं पुलियूं कोन आहिनि, पर रूट्स वारियूं पुलियूं आहिनि, जिन खे तयारु करण में के ॾींहं ऐं साल कोन लॻंदा आहिनि, पर सदियूं लॻी वेंदियूं आहिनि। रबड़ जे वणनि जे पाड़ुनि खे आहिस्ते आहिस्ते रूपरेखा ॾिनी वेंदी आहे ऐं इन्हनि खे नदियुनि पार आंदो वेंदो आहे। लंबे अरसे ताईं इहे जड़ूं मिली करे हिकु मज़बूत पुल जो रूप अख़्तियार कंदियूं आहिनि ऐं इन्हनि पुलनि जी हिकु ख़ासि ॻाल्हि आहे त इहे ज़िंदा पुलियूं आहिनि। वक़्तु गुज़रंदे इहे वधीक पुख़्तियूं थींदी वेंदियूं आहिनि। इन्हनि में सालनि जो सब्रु आहे ऐं कुदरत ॾांहुं असांजी इज़त पिण ॾिसण में थी अचे। एपलियूं ॿुधाइनि थियूं त इंसान कुदरत सां गॾिजी करे कीअं न अद्भुत शयूं तयार था कनि। अॼु भारत मेघालय जे इन्हनि रूट्स ब्रिड्स खे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शुमार करण लाइ एप्लीकेशन मोकिली आहे। दोस्तो, क्लाइमेट चेंज जो असर इन्हनि रूट ब्रिजिस ते पिण पइजी रहियो आहे ऐं इन्हनि खे मेंटेन करण में ललकारूं पिण पेश अची रहियूं आहिनि ऐं मेघालय वासियुनि इन ॾिस में पंहिंजी ज़िमेवारी सुठे नमूने अदा कई आहे। खेनि इहो पिण पतो कोन हो त इन्हनि पुलनि जो तादाद घणो आहे। कई मकानी माण्हुनि इन्हनि पुलनि जी ॻणप शुरू कई ऐं अॼु 120 खां बि वधीक इन्हनि रूट ब्रिजिस जी सार संभाल लही रहिया आहिनि। इन्हनि पुलनि खे वधीक पुख़्तो करण जे लाइ इन जे आसे पासे ज़मीन खे पुख़्तो करे रहिया आहिनि ऐं नर्सरियूं तयार करे रहिया आहिनि। हिन साल हेलीवार खे पद्म अवार्ड सां नवाज़ियो वियो आहे। हुन पंहिंजे ज़िंदगी जा 50 खां बि वधीक साल इन्हनि रूट ब्रिजिस जे संभाल में लॻाया आहिनि। साथियो, तव्हां जेकॾहिं इन्हनि रूट ब्रिजिस खे ॾिठो आहे त इन जा फोटोज़ सोशल मीडिया ते ज़रूर शेयर कंदा। तव्हां जा शेयर कयल फोटोज़ ॿियनि माण्हुनि खे मेघालय जी यात्रा करण लाइ हिमथाईंदा। मुंहिंजा प्यारा देशवासियो, असां सभई चाहींदा आहियूं त असांजा ॻोठ ऐं शहर साफ़ सुथरा हुजनि ऐं सुहिणा ॾिसण में अचनि, पर असां कॾहिं बि सोचींदा न आहियूं त असांजे आसे पासे जेको कचरो आहे तंहिंखे केरु साफ़ कंदो आहे। घणा माण्हू त इहो ई सोचींदा आहिनि त इहा कंहिं ॿिए जी ज़िमेवारी आहे, सोई अची करे सफ़ाई कंदो। पर असांजे विच में के अहिड़ा माण्हू पिण आहिनि जेके पंहिंजे सोच खां हटके कार्रवाई था कनि ऐं असांखे उत्साहिन था। मध्य प्रदेश जे राजगढ़ ज़िले जे ब्यावर जे कुझु भेनरुनि इन कचरे खे दूर करण जो महकम इरादो कयो ऐं पूरे शहर भर मां प्लास्टिक जे कचरे ऐं खाली बोतलुनि खे जमा करण जो कम शुरू कयो। सां गॾु ॿिया माण्हू पिण शुमार थींदा विया। इहे प्लास्टिक खे इको ब्रिक्स में तब्दील कयो वियो ऐं इन्हनि इको ब्रिक्स खे वरी अवामी हंधनि खे बहितरीन बणाइण लाइ कदम आंदो वियो। जेका प्लास्टिक शहर जो कचरो हूंदी सां हाणे अवामी हंधनि खे बहितरीन बणाए रही आहे ऐं माहौल जी गंदगी खे दूर पिण कयो पियो वञे। मां ब्यावर जे सभिनी भेनरुनि ऐं इन कार्रवाई सां जुड़ियल सभिनी माण्हुनि खे सभिनी साथियुनि खे वाधाई थो ॾियां। मुंहिंजा प्यारा देशवासियो, घणनि माण्हुनि मूंखे चिठी लिखी करे हिकु ख़ासि मौज़ू ते ॻाल्हाइण लाइ चयो आहे। सो मौज़ू आहे गणेश उत्सव। जेतोणीक गणेश उत्सव में अञा घणो वक़्तु आहे, पोइ बि माण्हुनि अपील कई आहे त इन विषय ते, इन मौज़ू ते हाणे ॻाल्हि थियणु घुर्जे। छाकाणि त गणेश जूं मूर्तियूं तयारु करण जो कमु घणो अॻु में शुरू थी वेंदो आहे। मूर्तियूं तयार कंदड़, मूर्तियुनि सां वापार कंदड़ माण्हू हाणे खां ई चुस्त थी विया आहिनि। तंहिं करे मुंहिंजी तव्हां सभिनी खे हिकु अपील आहे त तव्हां पंहिंजे घर, सोसाइटी या आसे पासे किथे बि गणपति बप्पा जी मूर्ति रखो त उहा असांजे देश जे मिटी मां तयारु थियल हुजे, तंहिंखे असांजे कुंभारनि पंहिंजे हथनि सां तयारु कयो हुजे। ऐं जेके गणेश जूं मूर्तियूं तयार था कनि उन्हनि सां मुंहिंजी अपील आहे त उहे मिटीअ खे अवलियत ॾियनि ऐं जेके मूर्तियूं ख़रीद था कनि इहे ॾिसनि त गणपति बप्पा जूं मूर्तियूं असांजे कारीगरनि जूं ऐं असांजे देश जूं तयार थियल आहिनि। प्लास्टर ऑफ पेरिस मां तयार थियल मूर्ति बिल्कुलु ख़रीद न कंदा, छाकाणि त मिटीअ मां तयार थियल मूर्तियूं असांजे पाणीअ में परवान करण खां पोइ नदियुनि, तालाबनि ऐं माहौल खे सलामती बख़्शनि थियूं। इन सां असांजी आस्था बि बरक़रार थी रहे ऐं माहौल ॾांहुं असांजी ज़िमेवारी पिण पूरी थी थिए। मकानी कारीगरनि जूं मूर्तियूं ख़रीद करण सां असां वोकल फॉर लोकल जे मुहकम इरादे खे वधीक पुख़्तो था करियूं। मूंखे उमीद आहे त हिन भेरे गणेश उत्सव में तव्हां इन्हनि ॻाल्हियुनि ते ज़रूर ध्यानु कंदा ऐं देश जे फ़ाइदे में कदम खणंदा। दोस्तो, असांजे देश जी वॾे में वॾी ताक़त असांजा भारतवासी आहिनि ऐं देश जे अलॻि अलॻि हिसनि में नंढियुनि नंढियुनि कारवायुनि ज़रिए इहे माण्हू घणो कुझु असांखे सेखारे रहिया आहिनि। मुंहिंजी तव्हां सभिनी खे अपील आहे त तव्हां जे आसे पासे जेकॾहिं के अहिड़ियूं कारवायूं थी रहियूं आहिनि त इन बाबति मूंखे ज़रूर ॼाण ॾींदा ऐं पंहिंजा वीचार वंडींदा, छाकाणि त तव्हांजे आसे पासे थींदड़ का नंढी कोशिश पूरे देश लाइ सिख्या थी सघंदी आहे। ईंदड़ महीने तव्हां सां वरी गॾिजाणी थींदी। देशवासियुनि जे कुझु नयनि हासिलातुनि ते असां चर्चा कंदासीं। तेसीं ताईं तव्हां पंहिंजे ऐं पंहिंजे कुटुंब जो ध्यानु रखंदा ऐं हा, पाणी खे बचाइण तमामु ज़रूरी आहे। बरसाति जे पाणी जे हिकु हिकु बूंद खे असांखे बचाइणो आहे। कैच द रेन अभियान खे पिण बरक़रार रखणो आहे ऐं मुंहिंजी तव्हांखे ख़ासि अपील आहे त पाणी जी हर हिकु बूंद खे असांखे गॾिजी करे बचाइणो आहे। तव्हांजी घणी घणी महिरबानी। नमस्कार।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जे महीनेवार प्रोग्राम मन की बात जे किस्त 135 जो सिंधी तर्शम ॿुधी रहिया हुआ।

हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधरा यहाँ पेश हैं खास खास खबरों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सेचल्स के पंजाह आजादी के ईं के जश्न में खास मेहमान तौर हिस्सो वरतो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर राम गुलाम सा सेचल्स में मुलाकात कई ए मुख्य बाहमी प्रोजेक्ट्स से थियल वाधारे जो जायजो वरतो। तिजारत ए हुनर वजीर पीयूष गोयल एक ऊंची समझ जो भारतीय मेड़ ग्रीस डां वठी वो है तंहिंमें मुख्य ध्यान वापार सीड़प ए हिकमत अमली माशी ताउन के पुख्तो बनाइण ते आहे। सऊदी अरब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के मगरब में रास तनूरा में एक हेलीकॉप्टर हादसे में 14 माण्हू मारिजी विया आहिनि। यूरोप अञा ताईं मौतमार लू के मुंह ॾेई रहियो आहे। फ्रांस में 1000 खां बि वधीक मौत थी चुका आहिनि ऐं फीफा वर्ल्ड कप में कैनेडा ॾखण अफ्रीका खे पहिरीं नॉकआउट में 1-1 तां मात ॾिनी आहे।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधरा हिंसर असाजे प्रोग्राम जो वक्त पुरोसी रहा है वरी तवा सा गजानी थी सुन भारतीय वक्त मुताबिक साढ़े चे तेसी तीन इजाजत सदाई कर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स को करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इच्छक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हामनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हामनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। अमरीका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमरीका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किये। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरूआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में एफआईएच प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर आप प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीतिका। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे प्रभाकर नारायण पाठक के गाए हुए भजन।

3.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

अभी आप कार्यक्रम संगीतिका सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366।

दोस्तों, गीतों भरी गुड मॉर्निंग प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त निधि वर्मा। दोस्तों, आज हम 30 मिनट के लिए, जी हाँ, आज हम 30 मिनट के लिए टाइम मशीन में बैठकर 90s में वापस चल रहे हैं। दोस्तों, वो जमाना याद है ना, जब प्यार का मतलब था लेटर लिखना। जी हाँ, लास्ट बेंच पर बैठकर उसका नाम लिखना और दोस्तों से प्रपोज करवाना। उस समय माना कि मोबाइल नहीं था, पर उस वक्त में दिल के जो कनेक्शन हुआ करते थे ना, वो फुल सिग्नल वाले आते थे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं उसी डॉर्स के सबसे आइकॉनिक गाने से, जो गाना सुनते ही शाहरुख और काजोल आंखों के सामने आ जाते हैं।

क्या बात है, तुझे तो देखा तो ये जाना सनम, ये गाना सुनते ही दिल गार्डन गार्डन हो जाता है ना। 90s के दिनों में कॉलेज क्रश का मतलब ही कुछ और था, कैंटीन की चाय, लाइब्रेरी की बेंच और उसकी एक झलक के लिए दो दो घंटे वेट करना, है ना, उसे प्रपोज करना। अगर उसको प्रपोज करना हुआ करता था ना तो हम लोग सीधा दोस्तों को आगे क्या कर दिया करते थे, और अगर धोखे से उसकी हाँ हो जाती थी तो लगता था कि सारी दुनिया ही जीत ली हो। उस कॉलेज वाले पहले नशे के लिए ये एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

पहला नशा पहला खुमार है। आमिर खान साइकिल पर कौन नहीं दीवाना हुआ था इस गाने का। कॉलेज के बाद दोस्ती का जमाना आया, गोवा की ट्रिप हो और वो भी बिना प्लान के और दोस्तों के साथ और साथ में थोड़ा सा प्यार।

दोस्तों अब बात करते हैं हम दिल्ली की बारिश की। जी हाँ, 90s में दिल्ली में बारिश हो और आप खिड़की के पास खड़े ना हो, ये हो ही नहीं सकता। 90s में बारिश का मतलब था उसका वेट करना और दिल बस यही कहता था आज वो आएगी, उसी का इंतजार वाले

मैं मर जाऊं।

चलिए अब चलते हैं उस दौर में जब दोस्त ही प्यार बन जाता था और राहुल और अंजलि हर कॉलेज की कहानी।

होता है राहुल और अंजलि। अंजलि वाली दोस्ती से प्यार तक का सफर सबसे खूबसूरत होता है ना। बोलने में देर लगती है पर नजरों से सब कुछ कह देते थे, और जब बात शादी तक पहुंच जाती थी तो सीन ही अलग हो जाता था ना। करण अर्जुन वाली फैमिली, ढोल नगाड़े और ये गाना।

तीस मिनट का सफर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। 90s का प्यार सच में खास हुआ करता था, न स्टेटस था न रील्स, बस दिल से दिल तक। प्रोग्राम में अपना साथ बनाए रखने के लिए शुक्रिया, इसी वादे के साथ कि जल्दी होगी आपसे नए टॉपिक पे मुलाकात। तब तक के लिए गीतों भरी गुड मॉर्निंग प्रोग्राम से अपनी दोस्त निधि वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमरीका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान सम्पन्न किया। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमरीका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मोज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार

0: प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल दैथेन स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वीं सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरूआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4वां वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
1: 200 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, यूएई, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय एमएसएमई, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं जीएफएससी जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खोट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
2: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गयी। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉ वत्सल अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। ओडिशा के पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
3: सदैव पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ बंधन के व्यापक इंतजाम किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाय नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
4: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्धभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता जाने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई

0: हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश धोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो से तीन दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नम्बर है 0112371 07 01123717106 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नवभारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बड़ी चिंता। हिन्दुस्तान ने मॉनसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मॉनसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्ता ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा। बहरीन, कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फार्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, मां के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, मां को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमरीका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के कौमी दिन की तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। उन्होंने मॉरिशस के अपने हम मनसब नवीन चंद्र राम गुलाम से भी बातचीत की। अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोकने

0: और कल से बातचीत दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दिफा से मुतालिक एक तकरीब में बहादुरी इनामात अदा करेंगी। भारत के महकमा मौसमियात ने आज जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। और हॉकी में भारत ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग की अपनी मुहिम जीत के इशारे के साथ मुकम्मल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर वहां के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने इस तकरीब में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस तरह वो भारत के पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्हें ये एजाज दिया गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस परेड में भारतीय बहरिया और फौज की टीमों पर मुश्तमिल एक दस्ते ने शिरकत की। भारत की एक बहरी बहन ने भी शिरकत की है, जिससे भारत और सेशल्स के दरमियान करीबी शराकतदारी का इजहार होता है। एक खसूसी इशारे के तौर पर INS तरकश और INS अक्षक को पोर्ट विक्टोरिया पर लंगरअंदाज किया गया है, जिससे सेशल्स के साथ भारत की देरीना दोस्ती का अंदाजा होता है। वज़ीर आज़म मोदी ने इस तारीखी मौके पर सेशल्स के आवाम को भारत की नेक ख्वाहिशात पेश की। जनाब मोदी सेशल्स के सदर पैट्रिक हार्मनी की दावत पर हफ्ते के रोज सेशल्स पहुंचे थे। वजीर खारजा एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और मॉरिशस के वजीर आजम नवीन चंद्र राम गुलाम भी इस मौके पर मौजूद थे। वजारत खारजा के मुताबिक भारत और सेशल्स के दरमियान देरीना दोस्ती है, जिसकी जड़ें मुश्तरका तारीखी, सकाफती और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों से वाबस्ता है। भारतीय बहर हिंद खित्ते में एक अहम समुद्री पड़ोसी के तौर पर सेशल्स का मकाम भारत के विजन महासागर और आलमी जुनूब के तहत भारत के अहद में खसूसी हैसियत का हामिल है। वजारत खारजा ने बताया कि जनाब मोदी के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत और पायदार दोस्ती का इरादा होता है और मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताल्लुकात को फरोग देने में दोनों मुल्कों के मुश्तरका अहद का भी इरादा होता है। आशीष इब्राहिम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शगुफ्ता यास्मीन।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के अपने हम मनसब डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और मॉरिशस के दरमियान मौजूदा तआवुन और इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने भारत की जानिब से दिए गए खसूसी मुआशी पैकेज के निफाज में हुई पेशरफ्त का भी जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी मुकदम की पॉलिसी के तहत भारत मॉरिशस की बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की अहमियत से इतफाक किया और आलमी खित्ते जनूब के तहत अपने मुश्तरक अहद से भी इतफाक किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सेशल्स का माहौलियाती तहफ्फुज़ और मुस्तकिल तरक्की के मैदान में आला तरीन क़यादत पर गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइज़न अवार्ड से नवाजा गया है। यह अवार्ड सेशल्स के सदर पैट्रिक हर्मीनी के हाथों दिया गया है, जिसके तहत मुस्तकिल तरक्की और जनाब मोदी के माहौल के लिए साजगार तसव्वुर का एतराफ किया गया है। जनाब मोदी ने इस अवार्ड से नवाजे जाने के बाद सेशल्स के अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। अमरीका और ईरान कतर की राजधानी दोहा में इस बात पर रजामंद हो गए हैं कि एक दूसरे के खिलाफ हमले रोक दिए जाएं और कल से बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए। इस कदम का मकसद कई दिन से जारी इस फौजी कार्रवाई को रोकना है, जिसकी वजह से जंगबंदी को खतरा लाहिक हो गया था और आबनए हुरमुज से मुतालिक तनाजे को हल करना है। यह ऐलान आबनए हुरमुज के आसपास कई हमलों के बाद किया गया है। अमरीका ने ईरान पर इल्जाम लगाया था कि उसने तजारती जहाज पर हमला करके जंगबंदी की खिलाफवर्जी की है, जिसके बाद उसने ईरान के फौजी ठिकानों पर हमले किए। इधर ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए। दोनों ही मुल्कों की तरफ से मजीद कशीदगी पैदा हो जाने के तहत नए सिरे से खबरदार किया गया है। एक अमरीकी अफसर ने बताया कि अब दोनों ही मुल्क एक दूसरे पर हमले करने से बाज रहेंगे और मुजाकरात के दौरान इन जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त जारी रहेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बहादुरी से मुतालिक 2026 की दिफा की दूसरी तकरीब में बहादुरी इनामात अदा करेंगी। वो दिफाई अफवाज, मरकजी मुसल्ला पुलिस दस्तों और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम पुलिस के अमले को बहादुरी के इनामात शाम 5 बजे अदा करेंगी। ये इनामात मुसल्ला दस्तों, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेस और दीगर हिफाजती एजेंसियों के अमले के बहादुरी के खैर मामूली कारण

0: आर्थिक तौर पर रूकावट आ गई है। समझा जाता है कि ये रूकावट बड़े पैमाने पर जमीनी तौदे खिसकने की वजह से आई है। खत्ते में तौदे खिसकने का ये हादसा कई दिन की शदीद बारिश की वजह से पेश आया है। एक रिपोर्ट।
1: धेमाजी जिला इंतजामिया ने लोगों के लिए एक फौरी हिदायत जारी की है और उन्हें खबरदार किया है कि जो पानी यहां जमा हो गया है अगर उसे आगे जाने दिया जाए तो अचानक सैलाब आ सकता है। यहां दरिया, झरनों, दलदली जमीनों, पानी के जखीरों और दीगर नशीली इलाकों के पास रहने वालों से कहा गया है कि वह चौकन्ना रहें। कुदरती आफत की सूरत में बंदोबस्त से मुतालिक जिला अथॉरिटी ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वह सरकार की तरफ से जारी की गई हिदायत पर सख्ती से अमल करें, मकामी हुक्काम के साथ तआवुन करें और अगर जरूरी हो तो महफूज तर जगहों पर मुंतकिल हो जाएं। इसी दौरान पहाड़ी इलाकों पर मूसलाधार बारिश की वजह से जिले के कुछ इलाके पानी में डूब गए हैं और यहां पानी कौमी शाहरा नंबर 515 के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त में रूकावट आ गई है। इस बढ़ते हुए सैलाब से घर और खेत पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से इमलाक और खड़ी फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: कल लंदन में खेले गए एफआईएच हॉकी प्रो लीग के मुकाबले में भारत ने शानदार दिफाई मुजाहिमत का मुजाहिरा करते हुए इंग्लैंड को 3-2 से शिकस्त दी। इससे पहले मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ था, जिसके बाद मस्कूरा गोल पेनल्टी शूटआउट में किए गए। इस जीत के साथ ही आइंदा हॉकी आलमी कप से कबल भारतीय टीम के एतमाद में इजाफा हुआ है। फीफा आलमी कप के नॉकआउट मरहले में अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त दी। ये कनाडा की किसी फीफा आलमी कप के किसी नॉकआउट मुकाबले में सबसे पहली जीत है। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे छोटे कारोबारियों के लिए बढ़ते हुए छोटे कारोबार और मौके के मौजू पर एक तफसीली मुजाकिरा नश्र करेगा। ये मुजाकिरा एमएसएमई की वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर डॉ दशमीश के साथ किया जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं शगुफ्ता यास्मीन।
2: शुक्रिया नितिका। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले अहम उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेन्द्र मोदी के सेशल्स दौरे को अपने सफाई अव्वल की नुमाया खबर के तौर पर शाया किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम मोदी के बयान को अपनी शहसुर्खी बनाया है कि बहरुलगाही की सलामती और खुशहाली हमारी मुश्तरक जिम्मेदारी। सेशल्स के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का वक्त, दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दद अहम माहदों पर दस्तखत। रोजनामा प्रताप की शहसुर्खी है, पीएम मोदी को सेशल्स ने मुल्क के आला तरीन एजाज से नवाजा। रोजनामा इनकलाब ने प्रोग्राम मन की बात के ताल्लुक से वजीर आजम के इस बयान को नुमाया अहमियत के साथ शाया किया है कि समंदर से आसमान तक हिंदुस्तान महफूज और आत्मनिर्भर बन रहा है। कुछ अहम बैन अलावामी खबरें इस तरह हैं, जंगबंदी माहदे की दोबारा खिलाफ वर्जी, ईरान अमरीका फिर आमने सामने, कशीदगी में इजाफा। साबिक वजीर आजम शेख हसीना का बांग्लादेश वापसी का ऐलान। कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब ने 3 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद की।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने सेशल्स के कौमी दिन की तकरीबात में इजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। उन्होंने मॉरिशस के अपने हम मनसब नवीन चंद्र राम गुलाम से बातचीत की। अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोकने और कल से बातचीत दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दफा से मुतालिक एक तकरीब में बहादुरी इनामात अदा करेंगी। भारत के महकमा मौसमियात ने आज सैनी हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। और हॉकी में भारत ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग की अपनी मुहिम जीत के इशारे के साथ मुकम्मल कर ली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे दिव्यांश श्रीवास्तव से संतूर वादन राग बसंत मुखरी।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम सुबह का ही
1: हमद शरीफ पेश कर रहा हूं।
2: अज़ीम रब दुआलम

کوثر، یہ دریا یہ گلشن و صحرا، یہ دریا یہ گلشن و

रसातम तेरी सना के लिए वो सलामी देती है तेरी रबूबियत।

रसा कम तेरी सना के लिए। नात शरीफ पेश कर रहा हूं। या सरवर आलम तेरी चौखट पे पड़ा हूं,

ناز کے میں بھی خواجہ کے غلاموں کے غلاموں

어로제께 까야무메 스레 무스지데 나부비 로제께 까야무메 스레 무스지데 나부비 मैं खुद से ही खुद अपना पता पूछ रहा हूँ, मैं खुद से ही खुद अपना पता पूछ रहा हूँ, और हासिल है मुझे तुर्बत जहरा की जियारत, हासिल है मुझे

लिए मक्ता समाज फरमाया बस इश्क मोहम्मद की है मेरा जो है अफूदल बस इश्क

0: अभी आपने सुना प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: शगुफ्ता यास्मीन से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिशेल्स के कौमी दिन की तकरीबात में मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने मॉरिशस के अपने हम मनसब नवीन चंद्र रामभोलाम से बातचीत की। अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोकने और कल से बातचीत दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दिफा से मुतालिक एक तकरीब में बहादुरी इनामत अता करेंगी। भारत के महकमे मौसमियात ने आज जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। और हॉकी में भारत ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग की अपनी मुहिम जीत के इशारे के साथ मुकम्मल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर वहां के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने इस तकरीब में मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत की। इस तरह वो भारत के पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्हें ये एजाज बख्शा गया है।

वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के अपने हममंसब डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और मॉरिशस के दरमियान मौजूदा ताउन और इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने भारत की जानिब से दिए गए खसूसी मुआशी पैकेज के नफाज में हुई पेशरफ्त का भी जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी मुकदम की पॉलिसी के तहत भारत मॉरिशस की बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की अहमियत से इत्तेफाक किया और आलमी खित्ते जनूब के तहत अपने मुश्तरका अहद से भी इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सेशल्स के माहौलियाती तहफ्फुज़ और मुस्तकिल तरक्की के मैदान में आला तरीन क्यादत पर गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड से नवाजा गया है। यह अवार्ड सेशल्स के सदर पैट्रिक हरमेनी के हाथों दिया गया है, जिसके तहत मुस्तकिल तरक्की और जनाब मोदी के माहौल के लिए साजगार तस्वीर का एतराफ किया गया है। जनाब मोदी ने इस अवार्ड से नवाजे जाने के बाद सेशल्स के अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। अमरीका और ईरान कतर की राजधानी दोहा में इस बात पर रजामंद हो गए हैं कि एक दूसरे के खिलाफ हमले रोक दिए जाएं और कल से बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए। इस कदम का मकसद कई दिन से जारी इस फौजी कार्रवाई को रोकना है, जिसकी वजह से जंगबंदी को खतरा लाहक हो गया था और आबनाई हुरमुस से मुतालिक तनाजे को हल करना है। यह ऐलान आबनाई हुरमुस के आसपास कई हमलों के बाद किया गया है। अमरीका ने ईरान पर इल्जाम लगाया था कि उसने तिजारती जहाजों पर हमला करके जंगबंदी की खिलाफवर्जी की है, जिसके बाद उसने ईरान के फौजी ठिकानों पर हमले किए। इधर ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए। दोनों ही मुल्कों की तरफ से मजीद कशीदगी पैदा हो जाने के तहत नए सिरे से खबरदार किया गया है। एक अमरीकी अफसर ने बताया कि अब दोनों ही मुल्क एक दूसरे पर हमला करने से बाज रहेंगे और मुज़ाकरात के दौरान इन जहाजों की बिला रूकावट आमदोरफ्त जारी रहेगी। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बहादुरी से मुतालिक 2026 की दिफा की दूसरी तकरीब में बहादुरी इनामात अता करेंगी। वो दिफाई अफवाज, मरकजी मुसल्ला पुलिस दस्तों और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम पुलिस के अमले को बहादुरी के इनामात शाम 5 बजे अता करेंगी। ये इनामात मुसल्ला दस्तों, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेस और दीगर हिफाजती एजेंसियों के अमले के बहादुरी के गैरमामूली कारनामों को तस्लीम करते हुए दिए जाते हैं। इन इनामात से पूरे जम्मू कश्मीर, शिमाल मशरक और मुल्क की सरहदों पर दहशतगर्दी, शोरिश पसंदी और मुखासिमाना धमकियों की रोकथाम के लिए भारत की लगातार जद्दोजहद की अक्कासी होती है। नीज एविएशन, समुद्री कार्रवाइयों और इंसानी हमदर्दी वाले मिशनों में गैर मामूली हौसले के इकदाम उजागर होते हैं। सदर मुर्मू ने इससे पहले इस तकरीब के पहले मरहले में भी बहादुरी इनाम अदा किए थे। ये तकरीब राष्ट्रपति भवन में इस माह की 8 तारीख को मुनद की गई थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में आज जीएसएफसी यूनिवर्सिटी में चौथी दरख्शां गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस का आगाज होगा, जिसका उन्वान है रीजनल एस्पिरेशन ग्लोबल एम्बिशन। मरकजी वुजरा राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर, मनसुख मांडविया, अहम रियासती वुजरा और आलमी सफारतकार इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद वस्ती गुजरात के खत्ते में सनअती तरक्की की रफ्तार को तेज करना है। इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस में 30 से ज्यादा सेमिनार मुनक्कद किए जाएंगे, जिनमें जापान, सिंगापुर, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूक्रेन और रवांडा समेत शराकतदार मुल्कों के 151 माहिरीन और मंदूबीन शिरकत करेंगे। मरकजी गुजरात की इकतसादी तरक्की पर मरकूज इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के लिए तैयार शोबों पर तवज्जो दी जाएगी, जिनमें सेमी कंडक्टर, लॉजिस्टिक्स, माहौलियात के लिए साजगार हाइड्रोजन, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ज़राअत, खला, दफा और मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। भिवंडी में एक सेशंस अदालत ने उन तीन मुलजिमों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जिन्हें महाराष्ट्र टीचर अहलियत इम्तिहान टीईटी के पेपर लीक केस में गिरफ्तार किया गया था। तफ्तीशकारों को शक है कि ये लोग इम्तिहान के बैन रियासती रैकेट में मुलविस हैं। ओडिशा में आज सुबह लाखों लोगों की तादाद में अकीदतमंद पुरी पहुंचे। आज श्री जगन्नाथ मंदिर में पवित्र

इस गजल के साथ ही आज का हुस्ने गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। अब सुनिए जनाब इजहार असर का तहरीर करदा ड्रामा, उनवान है टूटा सितारा, पेशकश प्रेम वोहरा की है।

0: बेटा लाएंगे बड़ी अजीब अजीब चीजें, ऐसी चीजें जो इंसानों ने कभी भी नहीं देखी होंगी।
1: वो क्या चीजें होंगी मम्मी?
0: ये तो मुझे पता नहीं बेटे। अच्छा अब जरा चुप हो जाओ और कॉमेंट्री सुनो।
2: काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मैं देख रहा हूँ अब सिगार की शक्ल के इस खलाई जहाज के नीचे लिफ्ट के करीब सिर्फ वो शहरी खड़े हैं जो इस सफर पर रवाना होने वाले हैं, और मैं देख रहा हूँ प्रेस रिपोर्टर्स जो इनसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, और फोटोग्राफर जो इनके फोटो खींच रहे हैं। मैं अपने सामाइन से इनका तारुफ कराता हूँ। लिफ्ट के दाहिनी जानिब खड़े हैं तकरीबन 6.5 फीट कद और काले रंग के साहब मशहूर नीग्रो गुरुकार मिस्टर जोटा डारा। इनके बिल्कुल बराबर में बहुत छोटे कद के जापानी सहाफी मिस्टर याको नाशा हैं, और इनके बराबर में गोरे चिट्टे ब्राजीली शायर जूलियस हैं। मिस्टर जूलियस के साथ खड़े हैं हमारे मुल्क हिंदुस्तान के नुमाइंदे मशहूर कहानीकार मिस्टर रोशी, और मिस्टर रोशी के बराबर ऑस्ट्रेलिया के अरबपति स्टीफन हैं, और लाइन के आखिर में नजर आ रहे हैं फ्रांसीसी मुसव्विर मिस्टर आंद्रे। कोशिश ये की गई है कि हर तबके के लोगों का एक नुमाइंदा इस सफर पर भेजा जाए। लीजिए अब प्रेस रिपोर्टर्स वापस जा रहे हैं और खलाई मुसाफिर लिफ्ट में दाखिल हो रहे हैं।
1: मम्मी डैडी भी इसी लिफ्ट में है?
0: हाँ बेटी।
1: ये खलाई जहाज कितना बड़ा होता है मम्मी? क्या जितनी बड़ी रेल होती है?
0: उससे भी बड़ा बेटे, जैसे 8-10 मंजिल की कोई बिल्डिंग हो, और उसकी शक्ल सिगार की तरह होती है।
1: तो रात को डैडी का जहाज भी सितारों की तरह हमें नजर आएगा मम्मी?
0: नहीं बेटे, सितारे तो सूरज की तरह बड़े होते हैं, इसलिए हमें चमकते हुए नजर आते हैं। खलाई जहाज इनके मुकाबले में बहुत छोटा है, इसलिए हमें नजर नहीं आ सकेगा। अच्छा अब जरा खामोश होकर कमेंट्री सुनो।
2: अब सब मुसाफिर खलाई जहाज में जा चुके हैं, जहाज के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। जहाज के खला में दागने में सिर्फ 1.5 मिनट बाकी रह गया है। मैं देख रहा हूँ लोगों को अब जहाज से दूर हटाया जा रहा है, अब सिर्फ चंद लम्हे रह गए हैं। धमाका होने वाला है और अजीम सिगार की शक्ल का ये खलाई जहाज तीर की तरह आसमान की गहराइयों में घुसता चला जाएगा। इस वक्त यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबके जैसे सांस रुक गए हैं, कोई आवाज नहीं सिवाय काउंट डाउन के।

0: मम्मी मम्मी आप रो रही हैं? आप रो क्यों रही हैं मम्मी?
1: सॉरी विशाल बेटे, मुझे इस वक्त वाकई रोना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे डैडी 1.5 साल के लिए एक अनजान सफर पर गए हैं, इसलिए दिल भर आया है।
0: क्या जहाज उड़ गया?
1: हाँ बेटे, हवाई जहाज अपने सफर पर रवाना हो गया है। चलो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो तुम्हारे डैडी को जिंदा और सही सलामत वापस हम तक पहुंचा दें।

जेंटलमैन, खलाई जहाज स्पेस मास्टर कमांडर आपसे मुखातिब है। इस वक्त हम चांद से कई लाख मील आगे आ चुके हैं। आप पोर्ट होल यानी बाहर का मंजर देखने वाली खिड़कियों से खला का मंजर देख सकते हैं। आप देखेंगे यहां से हमारी जमीन सब चांद की तरह नजर आ रही है और जमीन का गोला चांद के गोले से कई गुना बड़ा लगता है। जेंटलमैन, ये ऐलान आपको चंद मालूमात देने के लिए किया जा रहा है। पहली बात तो यह है कि इस वक्त हम खला में हैं और बेवजनी की हालत में हैं। आप जरा सी जुम्बिश से खलाई जहाज की छत पर जाकर अटक सकते हैं।

इसलिए जो जूते आपको सप्लाई किए गए हैं उनमें मकनातीस लगा हुआ है। इस मकनातीस की वजह से आप खलाई जहाज के फर्श से चिपके रहेंगे और आपको हल्का सा जमीन की कशिश का एहसास रहेगा। दूसरी बात यह कि खलाई जहाज में दुनिया की तरह रात दिन नहीं होते, इसलिए आपको हर काम घंटों के हिसाब से करना होगा। घंटों के हिसाब से सोना, घंटों के हिसाब से काम करना और तफरी करना होगा। खलाई जहाज में तफरी के लिए मुख्तलिफ खेलों का भी बंदोबस्त है, जिनमें जिस्मानी वर्जिश के भी खेल हैं। आखिर में आपको खुशखबरी सुना दूं, खलाई जहाज में एक क्लब भी है जिसमें हम हर चीज सप्लाई करते हैं, विस्की, बियर, वाइन, कॉफी, चाय, सब कुछ। लेकिन अफसोस, सिर्फ एक चीज पेश नहीं कर सकते और वो है डांस पार्टनर। अब मैं ऐलान खत्म करता हूं। हाँ, अगर आपको कोई उलझन या शिकायत हो तो आप जगह जगह लगे इंतजाम के जरिए 200 नंबर पर फोन करके अपनी शिकायत बता सकते हैं। इस नंबर से आपको सही मशवरा मिल जाएगा। गुड बाय, प्लीज एंजॉय योरसेल्फ।

0: इज अ लार्ज पैक।
1: वेटर, क्या तुम्हारे कलम में कोकोनट वाटर नहीं मिलता?
2: नो सर, इस जहाज में सिर्फ नट्स मिलते हैं, और आप जानते हैं अंग्रेजी में नट्स पागलों को कहा जाता है। और बाय द वे सर, मैं वेटर नहीं हूँ, मेरा उधर यहाँ कमांडर था।
1: पत्ता डालो यार, या सोना चाह।
3: प्लीज मे आई हैव लाइट।
4: वो दोनों अभी तक किस संजीदगी से नक्शे पर झुके हुए हैं, जैसे महबूबों की तस्वीरें देख रहे हो।
5: वो दोनों नेविगेटर हैं और खला का नक्शा देख रहे हैं।

0: अरे ये औरत की आवाज कहाँ से आई?
1: दोस्तों ये मेरी बीवी रचना की आवाज है। हमें खला में 1.5 साल रहना है, इसलिए मैं अपने माइक्रो टेप रिकॉर्डर में अपनी बीवी और बच्चे की आवाजें टेप कर लाया हूँ, ताकि जब मुझे घर याद आए तो उनकी आवाजें सुन लिया करो। ये टेप हर वक्त अपनी जेब में रखता हूँ। दिल में रहती है मेरे तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। इसी तरह अपनी जेब में अपनी महबूबा की आवाज रखता हूँ, जब जरा बटन दबाया आवाज सुन ली।
0: अरे क्या जमीन पर आप लोगों की महबूबाएं और बीवियां नहीं है जो आप मेरी बात सुनकर इस तरह हंस पड़े?
1: क्यों मिस्टर स्टीफन, यकीनन आप किसी से मोहब्बत तो जरूर करते होंगे। क्या मोहब्बत के बगैर जिंदगी का तसव्वुर किया जा सकता है?
2: फ्रेंड्स, मोहब्बत नाम की कोई चिड़िया हमारी जमीन पर नहीं रहती। मोहब्बत एक दिमागी बीमारी का नाम है, या महदूद जराए में जिंदगी में रंगीनी पैदा करने का एक फरेब, इल्यूजन। आप किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं, उसे हासिल कर लीजिए, एक हफ्ता या एक साल बाद ही मोहब्बत खत्म हो जाएगी। जिंदगी का सही नाम दौलत है, असल चीज है पैसा। आपके पास पैसा है तो दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत और जहीन से जहीन नाजनीन आपसे मोहब्बत करने को तैयार हो जाएगी और आखिरी सांस तक करती रहेगी।
1: क्यों मिस्टर जोटा डारा, आप तो फनकार हैं, मशहूर गुलकार हैं, आपका मोहब्बत और जिंदगी के बारे में क्या नजरिया है?
3: जिंदगी ना सिर्फ मोहब्बत का नाम है, ना सिर्फ दौलत का। जिंदगी का असली लुत्फ जिस्मानी ताकत में है। अगर आप करोड़पति हैं और आपकी सेहत खराब है तो जिंदगी में क्या लुत्फ बाकी रह जाता है? मोहब्बत करने के लिए भी

0: और रुपया कमाने के लिए भी। सेहत और कुव्वत का होना बेहद जरूरी है, यही जिंदगी है।
1: और मिस्टर आंद्रे, आपके मुल्क फ्रांस के लोग जिंदगी और मोहब्बत के बारे में किस तरह सोचते हैं?
2: हाँ सरोजी, सच्ची मोहब्बत इस दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे ही देखिए, मैं हकीकी मोहब्बत की तलाश में 6 शादियां कर चुका हूँ और अभी तक नाकाम हूँ।
3: यह गलत है। हमारी ब्राजीली जबान के एक शायर की नज़्म है जिसने उसने कहा है कि प्यार ही जिंदगी का नाम है और जिंदगी प्यार है। वो कहता है हर प्यार सच्चा होता है, चाहे वो चंद दिन के लिए हो या जिंदगी भर के लिए। मुझे ही देखिए, मैं अपने मुल्क में 10 लड़कियों से एक साथ प्यार करता हूँ और हर लड़की से मुझे सच्चा इश्क है।
1: मिस्टर याकून आशा
4: जी,
1: अब सिर्फ आप रह गए। जरा आप ही बता दीजिए कि आपके मुल्क जापान में मोहब्बत को क्या समझा जाता
4: है? वल, मुझे दूसरों के बारे में तो कोई इल्म नहीं। मैं तो 5 साल से एक ही लड़की से प्यार कर रहा हूँ। हम दोनों 5 साल से शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे लिए सारी दुनिया उसी लड़की के गर्भ होती है।
5: नॉनसेंस, ऑल नॉनसेंस। आप सब लोग शायर, अदीब, मौसीकार और जर्नलिस्ट हैं। आपकी आमदनी महदूद है, इसलिए अभी आपको पता ही नहीं कि रुपया आपके नाम नेहाद मोहब्बत को क्या बना देता है। दुनिया का कौन सा ऐसा बड़ा शहर है जिसमें मेरी एक दास्ता नहीं रहती, जिसे तुम लोग महबूबा कहकर पुकारते हो? जिंदगी सिर्फ ऐशो इशरत का नाम है। मेरे दोस्तों, दौलतमंद बनने की कोशिश करो। जिस रोज दौलतमंद बन जाओगे, तुम्हारे लिए इन तमाम लफ्जों के माने बदल जाएंगे।
4: आप जवाब दीजिए मिस्टर रोशी, आप कहानीकार हैं, क्या आपके ख्याल में भी जिंदगी सिर्फ पैसे का नाम है?
1: असल बात यह है दोस्तों, जिंदगी का सबसे ज्यादा लुत्फ सही तौर पर जीने में है। जिंदगी दुखों से भरी है, इस दुख भरी जिंदगी में जो लम्हे हम खुशी के गुजार लेते हैं वही असल जिंदगी है। इसीलिए मेरा नजरिया ये है कि दुखों की परवाह किए बगैर जो लम्हे खुशी के मिले उनसे पूरा पूरा लुत्फ उठाओ, सबसे प्यार करो, अपने आप से, अपने परिवार से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से। इसी का नाम जिंदगी है। और
6: कुछ मुश्किल गड़बड़।
7: मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। आपके जहाज का कमांडर आपसे मुखातिब है। इस वक्त हम लोग खतरे में हैं। जहाज के इंजन की एटमी भट्टी में कुछ खराबी हो गई है। हम कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह मुमकिन है कि खलाई जहाज एक धमाके से फट जाए। आपसे दरखास्त है कि घबराएं नहीं, सिर्फ खलाई सूट पहन लें। मैं फिर कहूंगा कि घबराइए नहीं, घबराने से कोई फायदा नहीं होगा। अपने आप को पुरसकून रखने की कोशिश कीजिए।
6: क्या होगा?
7: खलाई सूट फौरन पहन लीजिए। हम लोग खलाई जहाज को बचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं।
8: Let's try.

0: मैं कैसे बच गया? अपने इस वक्त कहाँ हूँ? लगता है जबरदस्त धमाके ने मुझे खलाई जहाज के टुकड़ों में से उछाल कर खला में फेंक दिया और अब मैं किसी नामालूम सिमत में गिरता जा रहा हूं। नहीं, मुझे घबराना नहीं चाहिए। अब तो सब कौन है, मुझे बहुत जल्द जरूरत का मुकाबला करना चाहिए। आखिर में मुझे बस दिल नहीं दिखानी चाहिए। किसी तरह मुझे पता चल सकता कि मैं किस तरफ गिर रहा हूं। काश मैं अपनी जमीन पर जाकर गिरूं ताकि मेरा जिस्म मेरी धरती के फजल में दाखिल होते ही जलकर खाक हो जाए और मेरे जिस्म के एटम बिखर कर मेरी जमीन के जर्रों में मिल जाए। अरे ये कैसी आवाज थी? मेरे कानों में ये खराब दूसरी इंसानी आवाज कैसे सुनी? हालांकि तो कोई भी आवाज नहीं सुनी जा सकती। हाँ, सिर्फ ट्रांसमीटर के जरिए सुनी जा सकती है। याद आया, ये आवाज मेरे खलाई सूट में लगे ट्रांसमीटर के रिसीवर में से मेरे कानों में आई होगी। माय गॉड, इसका मतलब है कोई और शख्स भी मेरी तरह बच गया है। उसी खलाई सूट में ट्रांसमीटर है जिससे ये आवाज मुझे सुनाई दे रही है। कौन हो सकता है ये, मुझे पूछना चाहिए।
1: हेलो हेलो, मैं जोरदारा बोल रहा हूं। मैं खलाई जहाज के हादसे में बच गया हूं। अगर कोई और भी मेरी तरह बच गया है तो प्लीज जवाब दे। हेलो, प्लीज, अगर कोई शख्स खलाई जहाज स्पेस मास्टर के हादसे से बच गया है। हेलो हेलो, मैं जोरदारा बोल रहा हूं। ओवर,
2: मैं बच गया हूं।
1: प्लीज अपना नाम बताओ। मैं जोटाडारा बोल रहा हूं।
2: मैं स्टीफन बोल रहा हूं। मुझे अभी अभी होश आया है। क्या सचमुच हमारे हवाई जहाज को हादसा पेश आ गया है, मिस्टर जोटा?
1: हाँ मिस्टर स्टीफन, जहाज तबाह हो चुका है। इस वक्त हम खला में हैं। हम दोनों हादसे में बच तो गए हैं मगर हमारी जिंदगी भी आरजी है। हेलो हेलो, क्योंकि इस खलाई सूट में सिर्फ 72 घंटे के लिए ही ऑक्सीजन होती है और हमें यह भी पता नहीं कि हम इन सूट में कितने घंटे गुजार चुके हैं। शायद हादसे में हम सिर्फ 2 ही मुसाफिर बचे हैं। आप कौन हैं?
2: रोशी, कालिका रोशी।
1: मिस्टर रोशी, थैंक गॉड, इस लामहदूद तारीख और सद खला में हम अकेले नहीं हैं। अगरचे हमारी मौत यकीनी है और सब एक साथ मरने वाले हैं, फिर भी जब तक जिंदा हैं एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। कम से कम तन्हाई से घबराकर हम वक्त से पहले नहीं मरेंगे।
2: क्या हमें बचाने के लिए दुनिया से मदद नहीं आ सकती? जमीन पर मैं करोड़ों रुपए का मालिक हूं। मैं अपने बचाने वाले को आधी नहीं नहीं सारी दौलत दे सकता हूं। काश कोई मुझे बचा ले।
3: मिस्टर स्टीफन, ये ऐसा मकाम है कि सारी दुनिया के खजाने भी हमारी मदद नहीं कर सकते। अब हमारी मौत यकीनी है।
2: तो मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मुझे बताओ मैं खुदकुशी किस तरह कर सकता हूं? मौत का इंतजार नहीं नहीं कर सकता।
1: मिस्टर स्टीफन, इस वक्त मरना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अपने

0: लड़ाई सूट का हेलमेट उठा दो, तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि कम मर गए।
1: लेकिन मेरे दोस्त, ये बुजदिली जब तक जिंदा है हमें अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हात को याद करना चाहिए ताकि हम सुकून के साथ मौत को खुशामदीद कह सके। मिस्टर स्टीफन, आप कहते थे दुनिया के हर बड़े शहर में आपकी एक दास्तां रहती है।
2: हाँ रहती है, मगर अब सब खत्म हो गया है। अरे अरे, इस समय पर आने से पहले मैं खूबसूरत इतालवी मारिया से मिला था। हमने सिर्फ एक रात साथ गुजारी थी। सुबह थी, मुझे बिजनेस के सिलसिले में न्यूयॉर्क जाना था। मारिया के साथ गुजारी हुई वो एक रात मुझे अभी तक याद है।
0: इस वक्त रोने और अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं। जिंदगी के ये गिने चुने लम्हे रोकर गुजारने की बजाय उसकी लज्जतों और रंगीनियों को याद करो। अपने आप को खुश नसीब समझो कि एक ऐसी खूबसूरत लड़की के साथ तुमने रात गुजारी। स्टीफन, इसलिए आखिरी लम्हों को दुखों से मत भरो, अच्छे लम्हों को याद करो और हंसी खुशी मौत का स्वागत करो। मगर यार, हम लोग किस सिंह जा रहे हैं? मेरा ख्याल है धमाके की कुव्वत ने मुझे सूरज की तरफ उछाल दिया है, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ कि सूरज बड़ा होता जा रहा है।
2: मेरे सामने मेरे कसुफ गोला चांद के बराबर नजर आ रहा है, उसके बराबर ही जुपिटर भी दिखाई दे रहा है। मेरा ख्याल है कि मेरी इसकी कशिश ने मुझे अपनी तरफ नहीं खींचा तो मैं शायद जुपिटर पर जाकर गिरूंगा। और मेरा ख्याल है मैं धरती की तरफ गिर रहा हूं।
0: फिर तो यार तुम खुश नसीब हो। मेरी ख्वाहिश थी काश मैं अपनी जमीन पर गिरता।
3: क्या होगा,
0: तुम खुश नसीब हो स्टीफन। हमारी मंजिल मरीख सैयारा ही था। तुम अपनी मंजिल को छू लोगे या इस मंजिल को देखते हुए आगे बढ़ जाओगे?
1: हम तीनों में सबसे ज्यादा खुश नसीब मैं हूं। जमीन का सब्ज गोला हैरान बड़ा होता जा रहा है। मैं बहुत तेजी से अपनी धरती की तरफ जा रहा हूं। शायद मेरे गिरने की रफ्तार एक सेकंड में 100 मील से भी ज्यादा हो गई है। ये धमाके की कुव्वत का असर है। अब मुझे अपने भाई जानक चांद भी नजर आने लगा है। जिस रफ्तार से मैं जमीन पर गिर रहा हूं, मुझे यकीन है 10-12 घंटों में ही मैं अपनी जमीन की फजा में दाखिल हो जाऊंगा। और फिर तुम जानते हो क्या होगा। फजा को छूते ही मेरा खलाई सूट और मेरा जिस्म शोले की तरह भड़क उठेगा और मैं रोशनी की एक लकीर बनाता हुआ आसमान से जमीन की तरफ गिरता हुआ नजर आऊंगा। जब किसी शब्द नजर आए कोई रोशन सी लकीर, तुम समझ लेना कहीं टूट गया हूं मैं भी। तुम्हें एक दिलचस्प बात बताऊं दोस्तों?
0: क्या बात है बताओ।
1: कि जब हम गर्मियों में मकान की खुली छत पर लेटते थे, रचना मेरे सीने पर सर रखे लेटी रहती थी और हम दोनों सितारों को देखते रहते थे। उस वक्त अगर कोई सितारा टूटता था और रोशनी की लकीर नजर आती थी तो जानती हो रचना क्या कहा करती थी?
0: क्या कहा करती थी?
1: ठहरो, मैं टेप बजाता हूं, सुनो मेरी रचना की आवाज।
4: शुक्रिया, देख रहे हो फितरत कितनी हसीन है। आसमान में कहकशा इस तरह चमक रही है जैसे तुमने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया हो।
5: हाँ रचना, ये सितारे जब मैं रोशनी के नन्हे नन्हे नुक्ते नजर आ रहे हैं, दरअसल हमारे सूरज की तरह ही सूरज है। मेरा जी चाहता है काश मैं रोशनी की रफ्तार से उड़ सकता और इन सितारों तक पहुंच सकता। अरे देखो रचना, کوئی ستارہ

0: बड़ा टूटा है। रोशनी की लकीर तारीख रात में बिल्कुल तुम्हारे बाग में भरी अक्षरा की तरह लग रही है।
1: उठकर बैठ जाओ और भगवान से कोई दुआ मांगो। जब कोई सितारा टूटता है ना, उस वक्त अगर कोई दुआ मांगी जाए तो जरूर पूरी होती है।
2: सुना दोस्तों तुमने, ये थी मेरी रचना की आवाज।
3: मेरी ख्वाहिश है काश जब मैं अपनी धरती की फजा में दाखिल होकर टूटे हुए सितारे की तरह भड़क उठूं, रोशनी की लकीर बनाता हुआ गायब हो जाऊं, उस वक्त रचना और विशाल मुझे देख रहे हो, यह मेरी आखिरी ख्वाहिश है।
4: मम्मी मम्मी, क्या डैडी की कोई खबर मिली?
5: अभी नहीं बेटे, शायद सुबह पता चल सके। तुम सो जाओ, रात के 11 बज चुके हैं।
4: मम्मी मम्मी, वो देखो आसमान की तरफ, वो रोशनी कैसी है? कैसी तेज रोशनी है मम्मी, ये क्या है?
5: जल्दी से उठकर बैठ जाओ, लगता है कोई सितारा टूटा है। भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारे डैडी सही सलामत वापस पहुंच जाए। जब कोई भी सितारा टूटता है, उस वक्त कोई भी दुआ मांगो जरूर पूरी होती है।

अभी आप सुन रहे थे जनाब इजहार असर का तहरीर करदा ड्रामा टोटा सितारा, पेशकश थी प्रेम वोहरा के। हिस्सा लेने वाले फनकार थे रईस मिर्जा, हरि कपूर, आर के शर्मा, अजीज हसन, एल एन भारद्वाज, मोहम्मद इलियास, कृष्णा आहूजा, ललिता शर्मा, नीरज शर्मा और राम मैनी। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

जितने अशक्ति गति सीना बच्चा मेरा जितने अशक्ति गति

लता मंगेशकर की आवाज में पाकीज़ा फिल्म से ये नगमा भी आपने सुना। प्रोग्राम के अगले पेशकश आशा भोसले की आवाज में है। फिल्म का नाम है तीसरी कसम।

मेरा सर फिल्म का नगमा अभी आपने आशा भोसले की आवाज में सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश सीआईडी फिल्म से है, आवाज है गीता दत्त की।

0: इस नगमे के साथ ही आज का मेरे पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ AIR और DD फ्रेडिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब सुनिए रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम के गुज़श्ता शुमारे की रिकॉर्डिंग। अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के एक और अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक नया दिन है और एक नया रेडियो डॉक्टर का अंक है और आप सबकी भागीदारी जो इसमें है वो हर बार की तरह बहुत जरूरी है, लेकिन विषय जरूर सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिए। आज का हमारा विषय बहुत जरूरी है आप सबके लिए जानना। आज हम बात करेंगे क्लब फुट पर, क्या होता है क्लब फुट और किस तरह से इसको पहचाना जा सकता है और फिर इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये सारी बातें आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनने को मिलेंगी, लेकिन पहले आपको इंट्रोड्यूस करा दूं हमारे आज के जो रेडियो डॉक्टर हैं उनसे। तो विषय है क्लब फुट कॉजेज सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट और हमारे आज के रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस। आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल 30 हजारी दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मैथ्यू आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में।
1: नमस्कार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को यहाँ बुलाने के लिए।
0: सर धन्यवाद आपका, आप समय निकालकर आए हैं, अति व्यस्त आपका शेड्यूल है हम जानते हैं, बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, आपकी ओपिनियन चाहते हैं और वो ओपिनियन आप सबको देते हैं, पर यहाँ इस मंच के माध्यम से रेडियो डॉक्टर के माध्यम से बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और हम ये भी चाहते हैं कि वो जो भी हमें सुन रहे हैं अगर इस विषय पर कुछ पूछना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब इसके एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे लोगों का इलाज कर चुके हैं। तो सबसे पहला प्रश्न डॉक्टर साहब, बहुत सारे श्रोता ऐसे होंगे जो इस विषय को नहीं समझ पा रहे होंगे कि किस विषय पर हम आज बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्लब फुट होता क्या है।
1: ये आमतौर पर लोगों को मालूम

0: नहीं है इसके बारे में। और हमने ये भी देखा है कि हिंदुस्तान के कई जगहों पे हमने देखा है कि इसका नाम अलग हिंदुस्तानी नाम नहीं है,
1: अच्छा
0: हिंदी में नाम नहीं है और किसी और भाषा में नाम नहीं है। इसको क्लब फुट या अंग्रेजी शब्द है क्लब, जो कि गोल्फ का क्लब होता है, वैसा पैर टेढ़ा हो जाता है।
1: अच्छा
0: तो जब बच्चा पैदा होता है, एक या दोनों पैर हो सकते हैं, दोनों टेढ़े होते हैं जैसे गोल्फ का क्लब हो। अब उदाहरण के लिए गोल्फ क्लब तो सारे जानते नहीं है, गांव वाले तो भी देखा होगा उन्होंने, तो हॉकी स्टिक जैसे टेढ़ा हो जाता है पैर, उसको पैदाइशी होना चाहिए, तभी हम इसको क्लब फुट के श्रेणी में मानते हैं। तो क्लब फुट ऐसी बीमारी है पैदाइशी पैर के टेढ़ेपन की, जिसमें पैदाइशी एक या दोनों पैरों में टेढ़ापन होता है।
1: ये बताइए कि ये जो हम क्लब फुट की बात कर रहे हैं कि ये कितनी प्रेविलेंट है ये बीमारी?
0: स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर 1,000 बच्चे जन्मते हैं तो उनमें से एक बच्चा क्लब फुट में हो सकता है, 1,000 में से एक में क्लब फुट हो सकता है। तो ये काफी प्रेविलेंट है अगर देखा जाए। तो अगर हिंदुस्तान के आंकड़े अगर देखे जाएंगे तो जो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में बर्थ डिफेक्ट, जो पैदाइशी जो डिफेक्ट हम देखते हैं, उनमें से सबसे कॉमन डिफेक्ट में से एक है। और भी डिफेक्ट्स हैं जैसे क्लेफ पैलेट है, जैसे क्लेफ पैलेट है, और स्पाइना बाइफिडा स्पाइन का एक प्रॉब्लम है, वो काफी प्रेवलेंट है। लेकिन जो सबसे कॉमनली एक ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में जाता है वो क्लेफ पैलेट है।
1: काफी कॉमन है जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन अभी भी इसकी संपूर्ण जानकारी हमारे पास नहीं है, और जानकारी या यूं कहें अवेयरनेस नहीं है, और इसीलिए आज इस कार्यक्रम को हमने रखा है कि हमारे श्रोता जो दूर दूर से जुड़ते हैं इस कार्यक्रम के साथ, वो जाने इसको, समझें इसको। और आप जैसा बता रहे हैं, हम आगे बात करेंगे इसका इलाज कैसे संभव है, इस पर भी हम बात करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो होता है ये कैसे हो जाता है, क्या कोई कारण होता है?
0: ये इसका पहले सोचते थे कि जेनेटिक है, हालांकि सारे फैमिलीज में नहीं होता, कुछ में फैमिलीज में निकल आते हैं। एग्जैक्ट कारण जेनेटिक नहीं है ये। जब बच्चा माँ के पेट में होता है और बढ़ रहा होता है तो बढ़ते वक्त कुछ हो जाता है जिसकी वजह से पेट टेढ़ा हो जाता है। अब एक जमाने में ये माना जाता था, अभी माना जाता है कि पैकेजिंग डिफेक्ट है, यानी कि अंदर पेट में जगह कम था इसलिए बच्चे का पेट टेढ़ा हो गया। ये भी होता है और ये कुछ बच्चों में बहुत मामूली सा डिफेक्ट होता है और मैनिपुलेशन से, फिजियोथेरेपी से और कुछ एक दो प्लास्टर से सही हो जाते हैं। लेकिन ये अलग है, पोस्टुरल क्लब फुट इसको बोलते हैं, जो पैकेजिंग डिफेक्ट की वजह से बोलते हैं। दूसरा है कि बच्चे का पैर एक या दो दोनों टेढ़े हैं, और ये जरूरी नहीं है कि पैकेजिंग की वजह से हो, डेवलपमेंट के यानी कि बढ़ते वक्त बच्चे के पैर में कहीं कुछ कमी आ जाती है जिससे ये होता है। पूरा कारण नहीं मालूम है अभी तक, डेवलपमेंट पार्ट पे लोगों ने पहचाना है लेकिन सारे बच्चों में नहीं देखा जाता है। तो इसलिए दावे के साथ कहना कि ये कारण है और ये उपचार है, नहीं ऐसा
1: नहीं हो सकता। पर सर, क्या कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, बिकॉज रिसर्च हर फील्ड में चल रही है, तो कहीं कुछ ऐसा पता लगा हो कि ये रिस्क फैक्टर्स बन सकते हैं, तो वो थोड़ा सा हम जाने।
0: हाँ, तो उसमें जहां तक आंकड़े अगर देखेंगे, लोग कहते हैं कि स्मोकिंग, अब स्मोकिंग अगर माँ तो स्मोक नहीं करती, हो सकता है कि घर पे कोई परिवार का सदस्य स्मोक करता होगा, पति स्मोक करते होंगे या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई स्मोक करता होगा। तो ये हमें जानना जरूरी है कि माँ को जहां तक हो सके कोई भी एनवायरमेंटल जो पोल्यूटेंट्स हैं या ऐसी दवाइयां जो कि कई बार दौरों की दवाई होती है, इन सबसे हमें संभल के इनका प्रयोग करना चाहिए।
1: जी जी, तो ये कारण बन सकता है, जैसा पैसिव स्मोकिंग भी कारण बन सकता है,
0: पैसिव स्मोकिंग भी कारण बन सकता है।
1: जी, यहाँ पर हम इसके बारे में और बात करेंगे। एक हमारे लिसनर है जो फोन लाइन के जरिए हमसे जुड़ गए हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं?
2: हाँ जी, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा दिल्ली से ही।
1: हाँ जी, बताएं अपने प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं।
2: हाँ, पहले तो शालिनी मैम को, शालिनता से ही नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
2: और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, आभार।
0: नमस्कार।
2: हाँ डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल तो ये है कि जो की जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ आप टकने तक या सिर्फ टकने टकने तक ही मानी जाती है? पहला सवाल तो मेरा
0: टकने तक ही मानी जाती है।
2: ठीक है
0: जी, टकने के ऊपर नहीं होती।
2: अच्छा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, और मैंने बहुत से लोग देखा कि वो बचपन में प्रॉब्लम नहीं होती है पर बाद में चलती है, जैसे पैर में मोच आ गई या मतलब से और प्रॉब्लम हो गई।
0: मैंने हेरिडिटरी प्रॉब्लम नहीं बताया, हेरिडिटरी नहीं होता, ये प्रॉब्लम पैदाइशी है, लेकिन हेरिडिटरी यानी कि

0: से बच्चे को, वो बहुत कम होते हैं, वो उनकी अलग कैटेगरी होती है, सब में ऐसा नहीं होता। आमतौर पर हमें हेरिडिटरी कुछ नहीं मिलता है।
1: अब मैं जानना ये चाहूंगा, दूसरा सवाल मेरा है कि कुछ लोगों को तो आपने कहा बचपन में पैदाइश ही होती है, कुछ लोगों का पैर बचपन में सही रहते हैं, पर जो बड़े होते हैं वो तो कुछ
0: क्लबफुट नहीं होता, वो क्लबफुट नहीं आता, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा।
1: इसकी मतलब ट्यूरेबल है, रिवर्सिबल
0: है। हाँ, ये तो प्रोग्राम हम इसलिए कर रहे हैं, लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम, तो इसका पूरा जो है आज की तारीख में नए तरीके से इलाज है, जिससे कि पैर अच्छी तरह से देखने में बराबर बना सकते हैं।
2: जी धन्यवाद राजेंद्र जी प्रश्न करने के लिए, और इसी पर आप इस कार्यक्रम को सुनिए, अभी हम बात ट्रीटमेंट पे भी करेंगे, और डॉक्टर साहब जैसा बता रहे हैं अगर इसको अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है तो ये पूरी तरह से डॉक्टर साहब क्योर हो सकता है ना।
0: इडियोपैथी क्लबफुट होता है, ये कैटेगरी होता है, 85 से 90% क्लबफुट इडियोपैथी क्लबफुट होते हैं, जिसमें और कोई और तकलीफ नहीं होती, तो उनको हम पूरी तरह से इलाज से कर सकते हैं, बशर्ते बच्चा जल्दी आ जाए।
2: जल्दी आ जाए,
0: देर हो जाए तो दिक्कत है।
2: जल्दी कितना जल्दी डॉक्टर साहब,
0: कितना जल्दी? अब मेरे पास माए आती है, पेरेंट्स आते हैं कि अल्ट्रासाउंड लेके आ जाते हैं, अब क्या करें, इसको गिरवाएं क्या? नहीं, वो नहीं होना चाहिए।
2: क्या जन्म से पहले भी इसका पता लग सकता
0: है? जन्म से पहले भी पता चल सकता है, आमतौर पर 14-16 हफ्ते के बीच में हम पता कर सकते हैं
2: अल्ट्रासाउंड से।
0: 14 और 16 हफ्ते के बीच में तो पता चल सकता है, और ये देखा गया कि 90% लोगों में ये अल्ट्रासाउंड की डायग्नोसिस सही होती है। तो ये देखना होता है कि क्या केवल यही प्रॉब्लम है या कुछ और भी बच्चे में प्रॉब्लम है कि नहीं, वो बहुत जरूरी है। अल्ट्रासाउंड का पूरा रिपोर्ट देखना जरूरी है कि और कोई प्रॉब्लम है।
2: जैसा आपने बताया कि अगर अल्ट्रासाउंड में पता लग गया है, और आपने बोला कई बार लोग कहते हैं कि हम बच्चा ना रखें क्योंकि इस तरह का है, ये सही डिसीजन
0: बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक जान बेकार में आप लूज करोगे, गवाओगे, नहीं होना चाहिए ऐसे। अच्छा। क्योंकि उसका इलाज
2: ठीक हो सकता है, बिल्कुल आपको खुश होना चाहिए कि जल्दी पता लग गया है, जैसे ही बच्चा पैदा हो
0: आप जल्दी इलाज के ले जाए, प्लान करके जल्दी इलाज के ले।
2: बिल्कुल बिल्कुल। ये मैसेज हमको लिखकर भेजा है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, पर डॉक्टर साहब लिखा है कि मैं एक विलेज में रहता हूँ और मुझे विलेज में ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा इस बीमारी का, क्या मुझे सिटी आना पड़ेगा ट्रीटमेंट लेने के लिए?
0: बहुत ही जटिल प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी एक संस्था है क्योर इंटरनेशनल इंडिया ट्रस्ट, उसके तहत हम पार्टनर करते हैं, कोशिश हमारी है कि कोई भी बच्चा जिसको क्लबफुट हुआ है उसको इसकी वजह से विकलांगता ना हो। तो गांव में लोग, दूर दराज के लोग, जब हम मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं डॉक्टरों को ट्रेनिंग के लिए, इसके लिए खास ट्रेनिंग की जरूरत होती है, इसके ट्रीटमेंट के लिए जब जाते हैं, तो गांव के लोग जो आते हैं वो दूरियां मीलों में नहीं बताते होते हैं, वो दूरियां घंटों में नहीं बताते, कितने घंटे का सफर है नहीं बोलते होते हैं। अच्छा। वो दूरियां बताते हैं रुपये में, 500 रुपये दूरी से आए हैं डॉक्टर साहब।
2: अच्छा।
0: तो ये जो है ना, रुपए की दूरी वो सबसे अधिक दूरी होती है। तो अगर गांव का व्यक्ति अगर किसी तरीके से एक ऐसा तजुर्बा कर जिसने ट्रेनिंग ली है इस विधि में, उसके पास पहुंच जाए तो सबसे अच्छा है। जो प्रोग्राम है हमारा सरकार की तरफ से है, और हर मेडिकल कॉलेज में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में जहां तक हो सके क्लबफुट के ट्रेनिंग है, जहां तक हमारी कोशिश है, हम डिस्ट्रिक्ट में भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी इसके लिए पूरी सपोर्ट कर रही है।
2: बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने यहां बोली कि पैसे की दूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आपका हेल्थ, और इससे आपका पूरा फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको लगता है ऐसा कुछ है, थोड़ा सा समय निकालना होगा, थोड़ा सा पैसा जो आपका लगेगा आपको, लेकिन बहुत दूरी भी नहीं,
0: इसका इलाज मुफ्त होता है,
2: इलाज भी मुफ्त है, बस आपको अपने डिस्ट्रिक्ट या जहां पर भी है आपको इन्फॉर्मेशन आजकल मिल जाती है, आप जरूर पहुंच जाए।
0: डिस्ट्रिक्ट में हिन्दुस्तान में 800 के करीब डिस्ट्रिक्ट
2: है,
0: 800 के करीब डिस्ट्रिक्ट है, हम 400 के करीब जगह पे है।
2: जी जी, तो बिल्कुल आपको ये सुविधा मिल सकती है। हेलो, हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं। हेलो जी, आप अपना नाम बता दीजिए।
3: मेरे से बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी बताएं।
3: डॉक्टर, ऐसा मेरे पैरों में तलवों बहुत ज्यादा जलन दे रही थी।
2: आपको अपने लिए पूछना है,
3: तलवों में जलन नहीं बहुत।
0: देखिए, ऐसा है, जलन वाली वो क्लबफुट वाली तकलीफ नहीं है,
2: नहीं।
0: जलन वाली तकलीफ आम तौर पे शुगर के मरीजों में होता है, जलन वाली तकलीफ आम तौर पे उनमें होता है जिनमें की जो विटामिन की कमी होती है, विटामिन बी ग्रुप की कमियां होती है, बी ग्रुप की कमी से हो सकती है, कई और कारणों से भी जलन हो सकती है, कमर में तकलीफ की वजह से हो सकती है, तो वो जांच करके और बगैर देखे नहीं बता पाऊंगा।
2: डॉक्टर साहब ने आपको बताया, बीमार यह है, आपको जाकर अपना टेस्ट कराना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ये एक मैसेज आया है कि ये जानना चाहते हैं कि अगर पूरा इलाज हो जाता है तो क्या उसके बाद भी इलाज कंटिन्यू रहता है या कुछ फॉलो अप होता है?
0: हाँ, बहुत जरूरी है फॉलो अप। इसका ट्रीटमेंट में हम प्लास्टर लगाते हैं जो कि हर हफ्ते प्लास्टर बदला जाता है।
2: अच्छा।
0: और आम तौर पे 6 से 8 प्लास्टर के अंदर अंदर पूरा हो जाता है, पैर टेढ़ा पैर पूरा सीधा हो जाता है। और 6 प्लास्टर के बाद आम तौर पे जो देख के दिन के नहीं होता, जो डॉक्टर मुआयना करके देखते हैं कि अब जो है ऑपरेशन के लिए तैयार है, तो उस वक्त मामूली ऑपरेशन करके पूरा पैर सीधा कर देते हैं और प्लास्टर लगता है 3 हफ्ते का, यानी कि 6 हफ्ते का हर हफ्ते प्लास्टर बदलते हैं, उसके बाद 3 हफ्ते का एक प्लास्टर लगता है, कई बार बीच में बुला के प्लास्टर बदलते भी है। कुल 9 हफ्ते में ये पैर जो टेढ़ा है पूरा सीधा हो जाता है। उसके पश्चात स्पेशल जूते पहनने होते हैं और ये स्पेशल जूते खास लोगों को पसंद नहीं है क्योंकि दोनों पैर बंधे हुए होते हैं, बीच में एक डंडा होता है।
2: अच्छा।
0: वो लोगों को पसंद नहीं होता, इसलिए लोग समझते हैं कि असुविधा है, ये तंग करता है, एक पैर का जूता पहन लेते हैं, वो गड़बड़ है। एक पैर के जूते से कामयाबी नहीं आती, एक पैर से बीच में पैर सीधा नहीं रहेगा। तो ये जो है पहले 3 महीने के लिए 23 घंटे, 1 घंटा सफाई के लिए, धोने के लिए, सब
2: मतलब
0: के लिए
2: पूरा दिन ही लगभग
0: पूरा दिन लगाना है, और 23 घंटा 3 महीने के लिए, और उसके पश्चात दिन में खुला और रात को या दिन में जब भी बच्चा सो रहा होता है। अब घंटे देखेंगे कितने बजे, वो छोटे बच्चे होते हैं नन्हे जो 6 महीने के होते हैं, वो कम से कम 12-14 घंटा सोते होते हैं,
2: तो खोला जा सकता
0: है, उतने देर तक जूता लगेगा, बाकी टाइम जब बच्चा जागा हुआ है तो वो उसको खुला रख सकते हैं।
2: अच्छा।
0: कोई दिक्कत नहीं। पहले होता था कि स्पेशल जूता, एक पैर का जूता, उल्टे जूते पहनाए जाते थे, एक पैर का जूता स्पेशल जूता बनता था, वो अलग बनवाए जाते थे, आजकल ऐसा नहीं है।
2: जी, बहुत कुछ बदलाव आया है,
0: बदलाव आया इसमें,
2: जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो सुविधाएं बढ़ रही हैं। और यहाँ पर एक मैसेज मैं और लेना चाहूंगी, रंजना लिख रही है कि एक क्वेश्चन है मेरा कि किस उम्र में इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। वैसे ये बात आप कर चुके हैं लेकिन क्योंकि रंजना जी ने बाद में शायद रेडियो सेट खोला होगा तो ये पहले उन्होंने
0: उम्र का जहां तक, जब मैं MBBS में ट्रेनिंग ले रहा था, हमें क्लब फुट सिखाया जाता था, ये बताया जाता था रीच डिलीवरी है, यानी कि पैर से बच्चे की डिलीवरी हो रही है तो पहला पैर जब निकलता है उसका प्लास्टर लगाना शुरू करो, इतना जल्दी शुरू करने के लिए बताते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, वेल बेबी क्लिनिक है, वहां माएं जाती हैं, वैक्सीनेशन होता है उनका, डॉक्टर मुआयना होता है, बच्चे का डॉक्टर चेक करते हैं और वहां पे काफी कुछ वहां पे चलता होती है, स्पर्धा चल रही होती है माओं के बीच में, मेरा नन्ना अब बैठने लग गया, मेरा नन्ना खड़ा होने लग गया, तो वो सब देखते रहते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि अगर एक माँ जिसके क्लबफुट का बच्चा है, दोनों पैर में है और जूता लगा हुआ है दोनों में, और जब वो जाता है क्लिनिक में, माँ को भी बुरा लगेगा कि मेरा बच्चा अभी भी इसी में है, मेरा बच्चा अभी तक खड़ा नहीं हो पाया। इसलिए कोशिश हमारी रहती है कि बच्चे का इलाज इतना जल्दी करें कि माँ के लिए दिक्कत ना हो, जब तक बच्चा खड़े होने लग जाएगा, यानी कि आम तौर पे 7-8 महीने में बच्चा खड़े होने लगता है, तब तक पैर सीधा हो जाना चाहिए और उसकी 23 घंटे की जूते की पीरियड भी खत्म हो जानी चाहिए, ये जरूरी है। हाँ, ये भी है समझना कि गांव में कुआं पूजा होता है, कई जगह काफी रीति रिवाज है, उसकी भी एक अहमियत होती है, उसको भी अहमियत देते हुए अगर 6 हफ्ते में है तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 हफ्ते में भी इलाज हो सकता है और पूरा सही हो सकता है। बट ये नहीं कि आप उसको 1 साल के बाद ला रहे हैं, आप 1.5 साल के, वो नहीं होना चाहिए,
2: वो नहीं होना चाहिए,
0: जहां तक हो सके जब तक बच्चा खड़ा हो तब तक पैसा हो जाना चाहिए।
2: तो आपने जैसे बताया कि जितना जल्दी होगा उतना ही जल्दी ट्रीटमेंट असर भी दिखाएगा और उतना ही आसान भी होगा ट्रीटमेंट करना। हमारे पास एक मैसेज और आया है, देवदत्त पारसोलिया जी लिख रहे हैं प्रताप विहार गाजियाबाद से, आप दोनों आपकी पूरी टीम को सादर प्रणाम, नाइस टॉपिक, सुपर प्रोग्राम, एक्सलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू आवर प्रोग्राम एंड फॉर राइटिंग टू अस। सर ये बताइए कि अगर जैसे प्रश्न तो बहुत सारे हमारे पास आ चुके हैं लेकिन मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर कि आपने बताया जितना जल्दी इलाज होगा उतना ही बेहतर है, माँ के लिए भी, बच्चे के लिए भी, सभी के लिए, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई नहीं पहुंच पाया समय पर और डिले हो गया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर क्लबफुट को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए?
0: तो देखिए, जब एक बच्चा होता है तो उसकी हड्डियां जो है वो अलग किस्म की होती है, कार्टिलेजिनस होती है पैर की हड्डियां, कार्टिलेजनस होती है। अगर आप एक्सरे लेंगे, एक्सरे नहीं लेना चाहिए बच्चों का, एक्सरे छह महीने तक हम कोशिश करते हैं कोई एक्सरे नहीं लेना चाहिए।

0: और इसकी डायग्नोसिस के लिए एक्सरे की कोई अहमियत नहीं है। हम रेकमेंड नहीं करते, मैं किसी भी बच्चे का ऐसे में इन्फेंसी में एक्सरे नहीं करते हम, पैर के लिए क्लबफुट के लिए नहीं करते, जरूरत नहीं है। लेकिन अगर करें किसी भी कारणवश तो उसमें देखेंगे दो या तीन हड्डियां ही दिखेंगी। तो ये समझना जरूरी है कि बच्चे की हड्डी कार्टिलेज होती है, जो कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो हड्डी बनती है, कार्टिलेज हड्डी बन जाती है। तो जब बच्चा चलता है, चलने लगता है और कार्टिलेज हड्डी बनने लगती है, शुरू में अगर ठीक कर दिया तो कार्टिलेज नॉर्मल हड्डी बनती है। अगर आपने देर कर दी और बच्चा 3-4 साल का चलता हुआ दौड़ता हुआ गांव से लेके आए हैं, तो उसकी हड्डियां बड़ी हो जाती हैं और वो टेढ़ी बनती हैं और उनको ठीक करना मुश्किल होता है, उनमें ऑपरेशन की जरूरत अधिक पड़ती है। इसलिए जरूरी है कि पहले 6 महीने के अंदर अंदर जहां तक हो सके पैर को सीधा कर दिया जाए।
1: बहुत अच्छी बात। और डॉक्टर साहब, आपने ये भी अभी बताया कि एक्सरे नहीं करना चाहिए, जब एक्सरे की जरूरत ना हो छोटे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसे आप एक एक्सपर्ट है, आप पहचान सकते हैं कि एक क्लब फुट है, पर जो एक नॉर्मल है उसको तो नहीं समझ में आएगा, तो ये टेढ़ापन क्या सिर्फ क्लब फुट के कारण होता है या कोई और बीमारी में भी टेढ़ापन हो सकता है?
0: बहुत बीमारियां हैं जिनकी वजह से पैर का टेढ़ापन हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि गांव में लोग, कुछ लोग तो इसको क्लब फुट को भी पोलियो कहते हैं, क्योंकि पोलियो से भी ऐसा टेढ़ा हो जाता है। और वो भी जैसे एक हमारे सज्जन ने सवाल करा कि बच्ची का पैर बाद में टेढ़ा हुआ, अगर बाद में टेढ़ा हुआ है तो वो पोलियो से हो सकता है, पर आजकल पोलियो तो है नहीं। उसके अधिक कॉमन कारण आजकल सर्वल पैल्सी है, उससे भी टेढ़ापन हो सकता है। और भी काफी जेनेटिक कंडीशन है जिसमें कि नर्व की प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से पैर बाद में टेढ़े हो जाते हैं या शुरू में टेढ़े हो सकते हैं। तो उनकी बारीकियां देख के एक तजुर्बेकार पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हो या एक तजुर्बे वाला, बच्चों को देखने वाला पीडियाट्रिशियन भी, वो उसको पहचान सकता है, उनको अलग कर सकता है। और अगर आप पहचान लेते हैं तो मदर्स को और पेरेंट्स को समझाने में भी आसानी रहती है कि वो जो 6 प्लास्टर से 8 प्लास्टर जो मिलता है जिससे कि ठीक हो जाता है और माइनर ऑपरेशन से ठीक हो जाता है, ये बच्चे हो सकता है कि इनमें ज्यादा प्लास्टर लगे। जैसे और बीमारियां आत्म में कई नाम है, आर्थ्राइटिस है, स्पाइना बिफिडा, इन सब में ज्यादा प्लास्टर लग सकते हैं और ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, बार बार फॉलोअप की जरूरत पड़ सकती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम समझे कि इसकी बारीकियां हैं और जो कि समझ के ही हम आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आपने नहीं करा समय पे तो पैर टेढ़ा बनेगा और उसके लिए मेजर ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है
1: जी, और लाइफ लॉन्ग ये
0: लाइफ
1: भी बन सकती है। डॉक्टर साहब, आपने बात की कि जल्दी आना चाहिए, लेकिन कई बार इस तरह की जो बीमारियां होती हैं उनसे बहुत सारे स्टिग्मास भी जुड़े होते हैं, मिथ कहें चाहे स्टिग्मा कहें चाहे, क्योंकि क्या होता है कि जब इस तरह का बच्चा पैदा होता है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है और जो हम अवेयरनेस के जरिए चाह रहे हैं कि ये चीज हम क्लियर करें, तो लोग कहते हैं अरे ये कोई प्रकोप हो गया हमारे ऊपर, पता नहीं कुछ कर्मों का फल हो गया या पुराने जन्मों का कुछ हो गया, तो उस कारण से वो उस चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अरे अपने आप ही ठीक हो जाएगा, कुछ हुआ होगा, मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस तरह के केसेस आपके पास आते होंगे?
0: बिल्कुल आते हैं। तो उस तरह से हर ओपीडी में जब ऐसे बच्चे आते हैं मेरे पास, मदर या ग्रैंड मदर या जो भी है मेरे से पूछे, डॉक्टर साहब ये किसी गलती से हुआ है, मदर की वजह से हुआ या फादर की वजह से हुआ या हम दोनों की वजह से हुआ या किसी और के कारण हुआ है?
1: जी, जी।
0: ऐसा कुछ अभी तक नहीं है, कोई किसी को स्टिग्मेटाइज करने की जरूरत नहीं है, कलंकित करने की जरूरत नहीं है। हम ये जान के चले कि बच्चे का डेवलपमेंटल उसमें प्रोसेस में कहीं कुछ हुआ है, माँ की गलती नहीं है, पिताजी की गलती नहीं है और दादा परदादा की भी गलती नहीं है, वो जेनेटिक कंडीशन अलग है, वो एडियोपैथिक क्लबफुट में अलग चले जाते हैं
1: जी। तो किसी की गलती नहीं है, ये सब जो है स्टिग्मा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टिग्मा जब होता है तो लोग उसकी बीमारी के उपचार की
0: छिपाते हैं।
1: सही बोला सर आपने। ये हमें मैसेज किया है नरदेव सिंह चौहान ने कोटद्वार उत्तराखंड से कि डॉक्टर साहब आपको नमस्ते कह रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि माँ बाप को जागरूक होना चाहिए और मैंने देखा है कि लोग कहीं कहीं भी बच्चों को लेकर जाते हैं, डॉक्टर को के पास नहीं ले जाते हैं, उन्होंने लिखा है कि पहलवान के पास ले जाते हैं जो कि बहुत गड़बड़ भी कभी कभी हो जाती है, बच्चा विकलांग भी हो जाता है। तो जैसा हम बात कर रहे थे स्टिग्मा की, शायद कहीं ना कहीं लोग छुपा रहे हैं उसको, अपने तरीके से उसको ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, तो क्या कहेंगे सर?
0: लोगों को डर लगता है और डर के कारण वो छुपाते हैं। मदर्स आप मेरे पास आते हैं पेशेंट, कहते हैं कि ये डॉक्टर साहब ये जो जूता

0: है ना, ये हम बाहर जा रहे हैं शादी है तो वहां पे हम ले जाए नहीं ले जाए,
1: अच्छा।
0: तो वो दिखाना नहीं चाहते कि
1: दिखाना
0: उनके
1: नहीं चाहिए।
0: बच्चे में कोई प्रॉब्लम है।
1: जी जी
0: तो मानो या ना मानो वो कलंक जो है वो लोग सोचते हैं कि अपने परिवार पे नहीं लेना चाहते
1: जी
0: हैं, तो इसलिए वो छुपाते हैं। ये जो है डरने की कोई बात नहीं, किसी की गलती नहीं है, और मेरे कहने पे ऐसे कलंक जाएगा भी नहीं, बट हमें सतर्क होना है कि कलंक की वजह से, कलंक के डर से पूरी तरह से इलाज जिस चीज का हो सकता है
1: उसको
0: उससे हम बच्चे को वंचित ना
1: बिल्कुल
0: करें, ये बहुत जरूरी है समझना। और अगर हम इसका इलाज सही कर देते हैं, और ये जो विधि है ये पॉन्सेटी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट बोलते हैं, पॉन्सेटी, इग्नेशियो पॉन्सेटी एक सर्जन थे यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में, यूएसए में, उनकी विधि है, 1946 में निकली थी, लेकिन लोगों ने इसको अडॉप्ट नहीं करा। वो अडॉप्शन इसका केवल 90 के दशक में ही हुआ। डॉक्टरी जो पॉपुलैरिटी जो आई है वो 90 के दशक में ही। अब जो है हम रिकमेंड करते हैं कि पॉन्सेटी मेथड से, और ये पहलवान के पास से नहीं हो सकता, बारीकियां हैं इसकी, इसमें खास ट्रेनिंग होती है, एक दो दो दिन की ट्रेनिंग। इनफैक्ट वहां पे आयोवा यूनिवर्सिटी वाले बताते हैं कि आपको वहां रह के सीखना चाहिए, तभी भी इसकी बारीकियों से आप अच्छी तरह से, अगर आप पूरी तरीके से पैर को अच्छी तरीके से सीधा करना चाहते हैं तो उसकी बारीकियों को समझ के तभी इलाज करना चाहिए। पॉन्सेटी रेजिम
1: जी, इसके बारे में हम पुनः एक बार लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं वो कई ऐसे भी श्रोता हैं जो वही वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो हम एक्चुअल बात कर चुके हैं, तो कहीं देर से जुड़े हैं या किसी और कार्य में व्यस्त होंगे। हम चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम को शुरू से सुने तो बहुत सारी जानकारी आपको ऐसे ही मिल जाएगी। कोई बात नहीं, आप सुन रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। ये हमें मैसेज लिखा है, उन्होंने थैंक यू कहा है हमें प्रोग्राम के लिए, और साथ ही लिखा है व्हेन आर वी एबल टू फाइंड आउट द चाइल्ड इज हैविंग क्लब फुट ओनली आफ्टर बर्थ। तो ये क्वेश्चन क्योंकि हम ले
0: जवाब दे चुके हैं,
1: जी,
0: 14 से 16 हफ्ते में,
1: हाँ जी,
0: प्रेगनेंसी के 14 से 16 हफ्ते में, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर, दूसरी तिमाही में हम इसको पहचान सकते हैं।
1: एक प्रश्न और आया है मैसेज के माध्यम से, रमेश लिख रहे हैं नोएडा से, गुड आफ्टरनून डॉक्टर वर्गीस एंड शालिनी मैम, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मैनेज अ क्लब फुट विद कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, का प्रश्न है।
0: बहुत बहुत कम बच्चों में ये दोनों चीजें साथ साथ
1: अच्छा,
0: होती हैं। तो हम हिप का अगर डिसलोकेशन और ये भी है तो हिप जो है प्रायोरिटी लेता है, लेकिन अगर बच्चे की शुरू से ही हमने इसकी पहचान कर ली, जैसे बच्चा जन्मा नियोनेटल नर्सरी बोलते हैं, नर्सरी में नियोनेटल यूनिट में इसकी डायग्नोसिस अगर हो जाए, अल्ट्रासाउंड से हो जाती है, डॉक्टर मुआयने से हो जाती है, पीडियाट्रिक नियोनेटल स्क्रीनिंग से हो जाती है, डीडीएच की जो डिसलोकेशन हिप की स्क्रीनिंग अगर शुरू शुरू में हो जाए तो उसका एक हार्नेस होता है वो डाल दिया जाए, और बच्चे को ऐसा कर सकते हैं क्लब फुट का प्लास्टर लगा दिया, और अपने पैडलिक हार्नेस, एक हार्नेस होता है जो कि बेल्ट होती है जो बच्चे को डाल के डिसलोकेशन हम सही कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: और कई बारी नहीं होता तो उसमें प्लास्टर लगाना पड़ता है। तो डीडीएच जो है डिसलोकेशन हिप जिसको बोलते हैं वो प्रायोरिटी लेती है, लेकिन दोनों का साथ साथ चल सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मेरे दिमाग में इस समय आ रहा है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपने एक क्लब फुट बताया तो इसके साथ हिप डिसलोकेशन की बात हो रही है, और भी कोई ऐसी बीमारी है जिसमें वो प्रोन हो जाता है अगर किसी को क्लब फुट है तो?
0: एक जैसे मैंने बोला कि आर्थ्रोग्लाइपोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेनिटा एक बीमारी है।
1: अच्छा।
0: और एक और बीमारी है जिसमें कि हम जो सिंड्रोम्स होते हैं, स्पाइना बाइफिडा है, एक्सटीरियर डिस्प्लेसिया है, कई और बीमारियां हैं जिससे कि देखने में पैर क्लबफुट जैसा दिखता है लेकिन बच्चे को कई और तकलीफें होती हैं।
1: अच्छा।
0: हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रेन की प्रॉब्लम होती है, स्पाइन की प्रॉब्लम होती है, तो वो सब शुरू शुरू में ही पकड़ लेनी चाहिए, और वो सारी बीमारियां अगर जल्दी पकड़ लोगे तो उनका जल्दी उपचार हो सकता है और बच्चे को विकलांगता से आप बचा सकते हैं।
1: तो आज हम बहुत सारी हमने जानकारी डॉक्टर मैथ्यू से प्राप्त की है कि क्लबफुट क्या है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, पहचानना, जल्दी इसका पहचान कर पहुंचना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, हमारे बहुत सारे श्रोता जो मैं कह रही हूं अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं, देर से जुड़ रहे हैं और प्रश्न कर रहे हैं, आप चलने से पहले इतना समय हमारे पास है कि आप शॉर्ट में हमें बता दें कि ये ट्रीटमेंट जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, जिससे कि हमारे लिसनर्स ने अगर कुछ छोड़ दिया हो तो समझ पाए उसको।
0: हाँ, तो जो अगर बच्चे को जन्म के 5-6 हफ्ते के अंदर अंदर हमने पकड़ लिया, उसको हर हफ्ते प्लास्टर लगता है और एक तरीका है जिसको पॉन्सेटी ट्रीटमेंट मेथड बोलते हैं, उससे प्लास्टर, उस विधि से प्लास्टर लगाते हैं। इसकी खासियत है कि जांग से पंजे तक पूरा पैर और घुटने को 90 डिग्री तक मोड़ के रख के प्लास्टर लगता है और हर हफ्ते इस प्लास्टर को बदलते हैं। और प्लास्टर लगाते वक्त डॉक्टर थोड़ा सा उसको थोड़ा सा मालिश करते हैं, मसाज करते हैं, उसको करेक्ट करने के लिए, सीधा करने के लिए मैनिपुलेट करके फिर प्लास्टर लगाते हैं। हर हफ्ते ऐसे 5 प्लास्टर लगते हैं, कई बार 6 लगते हैं। उसके बाद एक छोटा सा कट वाला सुन करके ऑपरेशन होता है और उसके बाद 3 हफ्ते का प्लास्टर लगता है और यानी कि 6 से 9 हफ्ते के अंदर अंदर ये पैर सीधा हो जाता है और सीधा उसको रखने के लिए जूते की जरूरत होती है। दो पैर जुड़े हुए जिसमें बीच में डंडा हो, बीच में बार हो, जुड़े हुए पैर होते हैं, वैसा वाला जूता होता है, वो जरूरी होता है। 3 महीने के लिए 23 घंटे के लिए, 1 घंटा सफाई के लिए, बाथरूम के लिए, और उसके पश्चात 5 साल तक जब भी बच्चा सोए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ये जूता जरूर पहनना है। अगर छोड़ देंगे तो वापस आएगा, देर से आएंगे तो बच्चे की हड्डी टेढ़ी बनती है और अगर हड्डी टेढ़ी बन गई तो उसको सही करने में ऑपरेशन वगैरह की जरूरत पड़ती है, उससे बचना है।
1: मैसेजेस अभी भी हमारे पास आ रहे हैं। कर्नाटका से हमें प्रिस्किला जी ने लिखा है कि क्या इलाज के बाद फिर टेढ़ापन लौट सकता है? तो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने अभी बता दिया है कि किस स्थिति में अगर छोड़ दिया जाए तो वापस आ सकता है। और बहुत सारी बातें आज, बहुत नई चीजें हमें पता चली हैं। डॉक्टर साहब, आपके यहां आने से हमारे बहुत सारे श्रोता सजग हुए होंगे, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। और बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ रहे हैं जो धन्यवाद दे रहे हैं डॉक्टर साहब की, इस बीमारी के बारे में हमें नहीं पता था, आपने बहुत विस्तार और बहुत स्पष्ट और बहुत अच्छे शब्दों में हमें समझा दिया है इस बीमारी के बारे में, तो वो आपको धन्यवाद दे रहे हैं। तो हम भी अब धन्यवाद देंगे, आप हमारे साथ रहे और हमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। क्या फूट कॉजेज सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, आज इस पर बात हुई। हमारे विशेषज्ञ रहे डॉक्टर मैथ्यू वर्गिस, आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स सेंट स्टीफन हॉस्पिटल 30,000 दिल्ली में। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर के गुजश्ता शुमारे की रिकॉर्डिंग। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी। शगुफ्ता यास्मीन से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के कौमी दिन की तकरीबात में मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने मॉरिशस के अपने हम मनसब नवीन चंद्र राम गुलाम से बातचीत की। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोकने और कल से बातचीत दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दिफा से मुतालिक एक तकरीब में बहादुरी इनामात अदा करेंगी। वेनेजुएला में 2 ताकतवर जलजलों में मरने वालों की तादाद 1,450 हो गई है। और हॉकी में भारत ने इंग्लैंड को पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग की अपनी मुहिम जीत के इशारे के साथ मुकम्मल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर वहां के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने इस तकरीब में मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत की। इस तरह वो भारत के पहले वजीर आजम हैं जिन्हें यह एजाज दिया गया है। इस परेड में भारतीय बहरिया और फौज की टीमों पर मुश्तमिल एक दस्ते ने शिरकत की। भारत के एक बहरी बैंड ने भी शिरकत की है, जिससे भारत और सेशल्स के दरमियान करीबी शराकतदारी का इजहार होता है। एक खसूसी इशारे के तौर पर आईएनएस तरकश और आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया पर लंगरअंदाज किया गया है, जिससे सेशल्स के साथ भारत की देरीना दोस्ती का अंदाजा होता है। वजीर आजम मोदी ने इस तारीखी मौके पर सेशल्स के आवाम को भारत की नई ख्वाहिशात पेश की। जनाब मोदी सेशल्स के सदर पैट्रिक हरमिनी की दावत पर हफ्ते के रोज सेशल्स पहुंचे थे। वजीर खारजा एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और मॉरिशस के वजीर आजम नवीन चंद राम गुलाम भी इस मौके पर मौजूद थे। वजारत खारजा के मुताबिक भारत और सेशल्स के दरमियान देरीना दोस्ती है, जिसकी जड़ें मुश्तरका तारीखी, सकाफती और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों से वाबस्ता है। भारतीय बहरे हिंद खित्ते में एक अहम समुद्री पड़ोसी के तौर पर सेशल्स का मकाम भारत के विजन महासागर और आलमी जनूब के तई भारत के अजायम में खसूसी हैसियत का हामिल है। وزارت خارجہ نے بتایا کہ جناب مودی کے اس دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط اور پائیدار دوستی کا اعادہ ہوتا ہے اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے میں دونوں ملکوں کے مشترکہ عہد کا بھی اعادہ ہوتا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل سیشلز میں موریشس کے اپنے ہم منصب ڈاکٹر نوین چندر رام غلام سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت اور موریشس کے درمیان جاری تعاون پر بات چیت کی۔ انہوں نے بھارت کی طرف سے پیش کیے گئے خصوصی اقتصادی پیکج پر عمل درآمد پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ دونوں وزیراعظم نے بھارت کے ویژن، مہاساگر اور پڑوس مقدم پالیسی اور عالمی جنوب کے تئیں اپنے مشترکہ عزم کے تحت بھارت موریشس فروغ شدہ دفاعی شراکت داری کی اہمیت سے اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو سیشلز کے ماحولیاتی تحفظ اور مستقل ترقی کے میدان میں اعلی ترین قیادت پر گارڈین آف دا بلو ہورائزن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمینی کے ہاتھوں دیا گیا، جس کے تحت مستقل ترقی اور جناب مودی کے ماحول کے لیے سازگار تصور کا اعتراف کیا گیا۔ جناب مودی نے اس ایوارڈ سے نوازے جانے کے بعد سیشلز کے عوام اور حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ امریکہ اور ایران قطر کی راجدھانی دوحہ میں اس بات پر رضامند ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف حملے روک دیے جائیں اور کل سے بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے۔ اس قدم کا مقصد کئی دن سے جاری اس فوجی کارروائی کو روکنا ہے، جس کی وجہ سے جنگ بندی کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا، اور آبنائے ہرمز سے متعلق تنازع کو حل کرنا ہے۔ یہ اعلان آبنائے ہرمز کے آس پاس کئی حملوں کے بعد کیا گیا ہے۔ امریکہ نے ایران پر الزام لگایا تھا کہ اس نے تجارتی جہازوں پر حملہ کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے بعد اس نے ایران کے فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے۔ ادھر ایران نے بحرین اور کویت میں امریکی فوجی ٹھکانوں پر بیلسٹک میزائلز اور ڈرون سے حملے کیے۔ دونوں ہی ملکوں کی طرف سے مزید کشیدگی پیدا ہو جانے کے تئیں نئے سرے سے خبردار کیا گیا ہے۔ ایک امریکی افسر نے بتایا کہ اب دونوں ہی ملک ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے باز رہیں گے اور مذاکرات کے دوران ان جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت جاری رہے گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں بہادری سے متعلق 2026 کے دفاع کی دوسری تقریب میں بہادری انعامات عطا کریں گی۔ وہ دفاعی افواج، مرکزی مسلح پولیس دستوں اور ریاست اور مرکز کے زیر انتظام پولیس کے عملے کو بہادری کے انعامات شام 5 بجے عطا کریں گی۔ یہ انعامات مسلح دستوں، مرکزی مسلح پولیس فورسز اور دیگر حفاظتی ایجنسیوں کے عملے کے بہادری کے غیر معمولی کارناموں کو تسلیم کرتے ہوئے دیے جاتے ہیں۔ ان انعامات سے پورے جموں کشمیر، شمال مشرق اور ملک کی سرحدوں پر دہشت گردی، شورش پسندی اور مخاصمانہ دھمکیوں کی روک تھام کے لیے بھارت کی لگاتار جدوجہد کی عکاسی ہوتی ہے۔ نیز ایویشن، سمندری کاروائیوں اور انسانی ہمدردی والے مشنوں میں غیر معمولی حوصلے کے اقدامات اجاگر ہوتے ہیں۔ صدر مرمو نے اس سے پہلے اس تقریب کے پہلے مرحلے میں بھی بہادری انعامات عطا کیے تھے۔ یہ تقریب راشٹرپتی بھون میں اس ماہ کی 8 تاریخ کو منعقد کی گئی تھی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل برطانیہ کے اپنے دورے کے بعد یونان کے ایتھنز کے لیے بھارت کے ایک اعلی سطحی کاروباری وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ اس وفد کی توجہ تجارت، سرمایہ کاری اور اسٹریٹجک معاشی اشتراک کو مستحکم کرنے پر مرکوز رہے گی۔ تجارت اور صنعت کی وزارت نے بتایا کہ یونان کے اس دورے کے دوران مذکورہ وفد ایتھنز اسٹارٹ اپ بزنس انکیوبیٹر میں ہونے والی پریزنٹیشنز اور اسٹارٹ اپ سے متعلق تجاویز کے پروگرام میں شرکت کرے گا۔ گجرات کے وڈوڈرا شہر میں آج جی ایس ایف سی یونیورسٹی میں 4th درخشاں گجرات علاقائی کانفرنس کا آغاز ہوگا، جس کا عنوان ریجنل ایسپیریشنز گلوبل ایمبیشن ہے۔ مرکزی وزراء راجناتھ سنگھ، منوہر لال کھٹر، منسوخ مانڈویا، اہم ریاستی وزراء اور عالمی سفارتکار اس دو روزہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ کانفرنس کا مقصد وسطی گجرات کے خطے میں صنعتی ترقی کی رفتار کو تیز کرنا ہے۔ اس دو روزہ کانفرنس میں 30 سے زیادہ سیمینار منعقد کیے جائیں گے۔ جموں کشمیر میں سالانہ شری امرناتھ جی یاترا 3 جولائی کو شروع ہوگی۔ اس خوشگوار یاترا کے لیے سبھی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ آکاشوانی جموں کے نامہ نگار نے بتایا کہ حفاظتی انتظامات، قافلے کی پیش رفت اور یاترا باقاعدہ شروع ہونے سے پہلے تمام تر تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے آج ایک مکمل مشق انجام دی گئی۔ وینزویلا قومی اسمبلی کے صدر جارج روڈریگز نے کہا ہے کہ دو طاقتور زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد 1450 تک جا پہنچی ہے۔ वेनेजुएला में ये जिलसिले बुध के रोज आए थे। इन जिलसिलों की शिद्दत 7.2 और 7.5 थी। जनाब रोड्रिक्स ने मुल्क में

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। प्रोग्राम जारी है, वक्त हो गया है तारीख साज का। आज का मौजू है कांगड़ा।
1: हिन्दुस्तान में तहजीबी तहरीकात का मेवर सिर्फ शहरी जिंदगी तक महदूद नहीं रहा। वो इलाके जो मैदानी सरगर्मियों से दूर दराज पहाड़ियों में वाकई है, उनके जरिए भी हमारी तहजीबी तारीख को बहुत सा जहनी सरमाया मयसर आया है। हिन्दुस्तानी मुसव्वरी में एक तर्ज पहाड़ी मुसव्वरी के नाम से मशहूर है। इस तर्ज मुसव्वरी का इर्तिका गैर मारूफ पहाड़ी इलाकों में हुआ। खसूसियत के साथ मुसव्वरी का कांगड़ा स्कूल ऐसा मुनफरद है जिसके शाहकार आज भी सदियों पहले जैसी जाज़िबियत रखते हैं।

0: زمین فلم کے اس نغمے کے ساتھ ہی فلمی نغموں کا آج کا یہ پروگرام میری سر میرا تمہارا اب ختم ہوتا ہے. آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات آپ سن رہے ہیں. اب پیش ہے پروگرام سرخیوں میں. आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में. इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 135वें संस्करण पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर. कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी. शेखर जी, हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महीने के आखिर में होने वाला मन की बात कार्यक्रम कई तरह के विषयों को कवर करता है, तो आज के संबोधन की आपके लिए मुख्य बातें क्या थी?
1: प्रधानमंत्री ने देश के सामने कई बातें रखी, उसमें खास करके कैसा ये महीना में कई उपलब्धियां भारत को मिला है, किस तरह हमारे सुरक्षा के लिए क्या क्या नई चीजें हुई है, और साथ ही जो विश्व योग दिवस जो मनाया गया जून 21 को, उसको भी उन्होंने जिक्र किया है. और साथ में उन्होंने ये कहा है कि ये देश जब संकट आते हैं किस तरह एकजुट होकर हम कैसे सामना करते हैं, विकास करिए जब खाड़ी क्षेत्र में युद्ध के बाद जिस तरह संकट पैदा हुआ उनकी आवाम को सुनकर किस तरह काम किया, उसको भी उन्होंने जिक्र किया है.
0: धन्यवाद जी. आपने जैसे कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा की बात की, जून के महीने में जो हमारी उपलब्धियां थी उनको भी गिनवाया, तो डिफेंस सेक्टर की उपलब्धियों के बारे में प्रधानमंत्री ने बात की और उन्होंने बताया कि कैसे समुद्र से लेकर आसमान तक हमारा भारत आज ज्यादा सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है. तो सबसे पहले चलिए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा.
2: INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया. इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है. साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई. C-295 ये विमान मेड इन इंडिया और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं.
0: शेखर जी, भारत की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस के लिए रक्षा क्षेत्र की जो ये उपलब्धियां प्रधानमंत्री ने बताई हैं, ये कितनी अहम है?
1: नौसेना को लेकर ये बातें प्रधानमंत्री ने सामने रखा. भारत नौसेना के जो आज आत्मनिर्भरता किस तरह बढ़ती जा रही है, खास करके 3 जहाजे जो फ्लीट में शामिल किया गया उसमें डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सारा कुछ देश के अंदर ही हुआ है. वैसे ही C-295 यानी मेड इन इंडिया वाला जो एयरबस का फ्लाइट है उसका मेडन फ्लाइट हुआ है और अभी 40 ऐसे विमान बन रहे हैं. साथ में जो हमारे एरोस्पेस सेक्टर है उसमें कैसे मीडियम स्केल स्मॉल इंडस्ट्री एंटरप्राइजेस किस तरह उसमें शामिल हो रहे हैं
0: जी,
1: और जिसकी वजह से आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहे हैं और साथ में हमारी जो डिफेंस रिसर्च है उसका भी कैसे आगे हो रहा है मामला, जिसको इन्होंने बताया है.
0: शिखर जी, देश में स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की बातों में जो दो पहलू थे, एक का तभी आपने जिक्र किया कि इससे कैसे MSME सेक्टर को फायदा हो रहा है और जो रोजगार की जो मौके हैं वो बढ़ रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने संबोधन था उसमें एक बात और जो भरकर आई वो थी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा मिल रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं?
1: जब डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की लक्ष्य रखकर जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उस प्रोजेक्ट में हम देख रहे हैं कि डिफेंस मामले में प्राइवेट सेक्टर को शामिल किया जा रहा है, यानी जितने नए नए जो फैक्ट्रीज आ रहे हैं जिसमें प्राइवेट अपने कैपिटल लगा के और डिफेंस लैब के साथ ज्वाइंट वेंचर भी कई हो रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी चीज बनेगी तो उसमें स्पेयर पार्ट्स होंगे
0: जी,
1: लोकलाइज्ड कंटेंट होंगे. ये सारी चीजें आप हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने इन्होंने शुरू कर दिया है, इसकी वजह से स्कोप बढ़ गया है. और आत्मनिर्भरता का असली मतलब अब वाकई हम देख रहे हैं देश में डिफेंस सेक्टर में.
0: इसके साथ ही आपने विश्व योग दिवस के बारे में बात की थी, तो प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में भारत की उपलब्धियों की तारीफ की. जब प्रधानमंत्री इस तरह की उपलब्धियों की बात करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो इस तरह की जो पहचान है वो युवा एथलीटों को किस तरह प्रेरित कर सकती है?
1: जब प्रधानमंत्री ने पहले विश्व योग दिवस के लिए जो इनिशिएटिव लिए उसके बाद विश्व भर में आप देख रहे हैं, न केवल जून 21 तारीख को, साल भर लगातार योग का जिस प्रकार पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, सऊदी अरेबिया से लेकर चाइना तक
0: जी,
1: रशिया से लेकर साउथ अफ्रीका तक, आप देख रहे हैं कि अब विश्व भर में योग न केवल फिटनेस है और इस बार योग 2500 लोकेशंस पे किया गया था 21 तारीख को, जिसमें लोग शामिल हुए। और आपने जिक्र किया ये जो योग आसना चैंपियनशिप हुआ था जिसमें भारत को 114 मेडल्स मिली है, उसमें 102 गोल्ड मेडल्स है। और इस बार भी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने योग दिवस पर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। ये मैसेज यही था कि एज विद फिटनेस
3: जी,
1: कि जब आपको उम्र बढ़ता जा रहा है आपकी फिटनेस भी बढ़नी चाहिए, जीवन में आपको और भी आनंद मिलेगा और फिटनेस मिलेगा। यही मैसेज था इस बार प्रधानमंत्री का योग दिवस पर।
3: श्री मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ के एक ऐसे परिवार की प्रेरणापद घटना शेयर की। उनके यहाँ एक शादी थी और उन्होंने उस मौके पर अपने गांव के लोगों के लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस का इंतजाम किया। और इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री ने सरकार की दो बहुत अहम इंश्योरेंस योजनाओं का भी उल्लेख किया। चलिए पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेटकर परिवार रहता है। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रूपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल 1 साल के 20 रूपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रूपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं।
3: शिखर जी, सरकार की ये जो बीमा योजनाएं, ये तो एक हमने बीमा योजना के बारे में सुना, प्रधानमंत्री ने एक और बीमा योजना की भी उल्लेख किया था। तो ये बीमा योजनाएं समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ऐसी सरकारी योजनाओं की जानकारी और लोगों से साझा करना क्यों जरूरी है।
1: जो एक परिवार की जो उन्होंने बात किया
3: जी,
1: पेटकर फैमिली का, जो नांदेड़ में देखिए सब लोग अपनी शादियां धूमधाम से मनाते हैं, काफी पैसा खर्चा कर, लेकिन ये एक अलग प्रकार से था कि जो गरीब परिवार के लिए बीमा योजना में उनको शामिल करने के लिए जो पहला प्रीमियम देने का जो काम किया, ये इसके बहुत बड़ी सेंटिमेंट है। क्योंकि हम जानते हैं कि परिवारों में कुछ ना कुछ चैलेंज आता रहता है, कभी कोई दुर्घटना, कभी लाइफ थ्रेटनिंग कोई डिसीज आ जाता है तो उसके लिए भी खर्चा होता है। तो ऐसे में एक ऑटो की तरह से जो एक प्रकार से आप देख सकते हैं चैरिटी भी है, लेकिन साथ में जिस तरह सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में केवल 20 रूपये एनुअल प्रीमियम में पूरे साल का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर 2,00,000 तक, जो 58 करोड़ लोगों को इन्होंने जो उपलब्धि करवाई है
3: जी,
1: उसका भी जिक्र किया। और सबसे बड़ी बात, उस 58 करोड़ में आप देख रहे हैं कि 28 करोड़ लोग जो है वो महिला है, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनों हैं, हमारी बेटियां हैं। और अभी तक इस स्कीम में 3,700 करोड़ का असिस्टेंस दिया गया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और साथ में आप देख रहे हैं बाकी जीवन ज्योति बीमा योजना
3: जी,
1: वो भी चल रहा है, जिसमें भी आप देख रहे हैं कि 2,00,000 का कवर है और प्रीमियम भी ज्यादा नहीं है, 436 है। और इसमें भी कई लोग जो मिले अभी तक कम से कम 27 करोड़ लोग इसमें शामिल हुए। देखिए बीमा कवर बहुत जरूरी है, एक प्रकार से सोशल सुरक्षा है ये।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने आज के संबोधन में देश के पूर्वोत्तर की भी काफी चर्चा की। उन्होंने असम, नागालैंड और मेघालय में प्रकृति संरक्षण और खेलों से जुड़ी 3 खेलों का जिक्र किया। इसके अलावा भी आप प्रधानमंत्री द्वारा भारत के उस हिस्से पर ध्यान दिलाने को कैसे देखते हैं जिसके बारे में आज भी देश के बाकी हिस्सों को ज्यादा जानकारी नहीं है।
1: प्रधानमंत्री ने असम के उस क्षेत्र की बात की जहाँ पे पहले अंधविश्वास के कारण हमेशा एक भय रहता है, भाई ये चीजों से हमारी कोई दुर्घटना हो जाएगी, इससे कोई डर लगा जाएगी। ऐसे उन्होंने उस गांव की बात की जहाँ पे हरगीला करके एक बर्ड है जो एक प्रकार से एनवायरमेंट को क्लीन करता रहता है। जैसे वल्चर को भी लोग कभी कभी मानते हैं कि वो एक कोई अशुभ है, लेकिन उसका भी पर्यावरण में बहुत भूमिका। नेचर में जितने आप प्रकृति देख रहे हैं सबका कुछ ना कुछ रोल है, एक प्रकार से एक साइकिल बैलेंस करता है
3: जी।
1: तो असम में ये जो पक्षी है हरगीला, ये बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है, लेकिन लोगों को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो सारे एक प्रकार से जैसे वल्चर है, हमारी कौवा भी वही है
3: जी।
1: इसमें यहाँ पे गांव वालों ने खास करके एक बायोलॉजिस्ट की जिन्होंने जिक्र किया, प्रतिभा देवी बर्मन, उन्होंने एक मुहिम चलाने की एक इनिशिएटिव लिया जिसमें लोगों के अंदर जो भय है, एक अंधविश्वास है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए कोई बुराई हो जाए, उस मानसिकता को बदल के उन्होंने महिलाओं से बात करके, प्रतिभा जी ने, और धीरे धीरे मेरे उन्होंने उनको एक कैंपेन में शामिल किया, जिसकी वजह से पहले जब ये बर्ड को देके मार देते थे
3: जी,
1: आज वहां पे क्या हो रहा है, उस बर्ड की रक्षा हो रही है और इसकी वजह से अंधविश्वास खत्म हो गया और पर्यावरण का सुरक्षा बढ़ना शुरू हो गया और ये सारे जो सृष्टि है ये सब और मनुष्य का जीवन भी इसका भी बहुत असर पड़ता है, सुरक्षा देना भी हमारी कर्तव्य बन गया है।
3: जिसमें आपसे पूछा कि हमने बात की कि नागालैंड की भी उन्होंने कुछ पहल का जिक्र किया जो खेलों से जुड़ी हुई थी और उन्होंने मेघालय में जो रूट ब्रिजेस है, जो लिविंग ब्रिजेस है, उनका भी जिक्र किया। पूर्वोत्तर एक ऐसा क्षेत्र है हमारे देश का जिसके बारे में, जैसा मैंने कहा, आज भी लोगों को बहुत कम जानकारी है। जब प्रधानमंत्री उस क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है।
1: हमें किसी को पता नहीं था कि नागालैंड में बेबी लीग है
3: जी,
1: यानी फुटबॉल हमने सुना है कि फुटबॉल प्रीमियर लीग है, लेकिन नागालैंड में बच्चों की एक फुटबॉल लीग है जिसमें 5 साल से लेकर 10-12 साल तक उनके एक टैलेंट को ये करने के लिए एक लीग चलती है जिसमें कई बच्चे नागालैंड में उसमें शामिल हो जाते हैं। बच्चे मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जिसकी वजह से बच्चों में अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट हुई है।
3: प्रधानमंत्री ने प्राचीन भारतीय परंपरा के बारे में भी बात की जिसे नालंदा यूनिवर्सिटी ने फिर से शुरू किया है। पहले सुनते हैं कि ये कौन सी परंपरा है जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने बात की।
2: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। साथियों, भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य से मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं।
3: शिखर जी, भी हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने भारत में स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी की एक पहल की बात की जिससे एक हमारी प्राचीन परंपरा दोबारा चालू हुई है और उन्होंने कई हजारों किलोमीटर दूर डोमिनिकन रिपब्लिक की एक पहल की बात की। तो अगर हम इन दोनों चीजों को देखें तो इस तरह के जिक्र से भारत की जो एक समृद्ध विरासत है, हमारी जो एंशियंट हेरिटेज है, उससे लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने में कैसे मदद मिलती है।
1: तो ये परंपरा अब रिवाइव हो रही है सरकार की कोशिश और दूसरा प्रधानमंत्री का आह्वान, विकसित और विरासत दोनों मिलकर हमें आगे बढ़ना है। इस लक्ष्य लेकर जो बात इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की जिक्र की, खास करके स्वास्थ्य
3: जी,
1: इसका मतलब है कि एक प्रकार से वार्तालाप यानी डायलॉग
3: जी,
1: और ये जो हमारी परंपरा रही है तो कोई विचार हो, कोई ज्ञान हो, इसको लेकर हम आपस में डिबेट करके, एक्सपर्ट्स की एक दूसरे की बात सुनकर उसका आज फिर इसके रिवाइवल हो रहा है। कि एक तो आपने नालंदा यूनिवर्सिटी की जिक्र किया, दूसरा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो है उन्होंने कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ भी काम कर रहे हैं। जैसे अभी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने बीटेक प्रोग्राम शुरू किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, डेटा साइंस पे। ये हमेशा माना जाता है कि संस्कृत एक साइंटिफिक लैंग्वेज है जिसमें मैथमेटिकल सोल्यूशन, मैथमेटिक ये सब लेकर भी कई ये हुई है इसे। इस तरह की जो इनिशिएटिव है इसका अपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
3: शिखर जी, प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम हमेशा प्रेरणादायक संदेशों और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों से जुड़ी जानकारी का एक मिश्रण होता है। इसके पीछे क्या सोच है और जिस हम बैलेंस की बात कर रहे हैं, इसे बनाए रखना क्यों जरूरी है?
1: पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं कि ये डायलॉग हर महीने के आखिरी रविवार को जो हो रही है, एक लगता है जैसा प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत रिसर्च होता है। कई बातों को प्रधानमंत्री सामने ले आते हैं, प्रेरणादायक वाले बातें कहते हैं जिससे बहुत लोग उसको फॉलो करके फिर अपनाते हैं उसको। मैं उदाहरण के दे सकता हूँ, आप स्वस्थ भारत मिशन हो या खादी को प्रमोट करने की बात हो
3: जी,
1: या वाटर कंजर्वेशन हो, पर्यावरण की रक्षा हो, या पशु पक्षियों को गर्मी में पानी का व्यवस्था करने का काम हो, ऐसी कई बातों को प्रधानमंत्री ने अपनी स्टाइल में इससे बहुत लोगों को जोड़ा है। दूर दूर इलाके में जो परिवर्तन हो रहा है उसको सामने लाके एक एग्जाम्पल के तौर पर देश के सामने पेश किए हैं उन्होंने।
3: शेख अय्यर जी, आप आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 135वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशरियात का सिलसिला जारी है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
4: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप असेंबलिया से आलमी खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के कौमी दिन की तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। उन्होंने मॉरिशस के अपने हम मनसब नवीन चंद्र राम गुलाम से बातचीत की। अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोकने और कल से बातचीत दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दिफा से मुतालिक एक तकरीब में बहादुरी इनामात अदा करेंगी। वेनेजुएला में दो ताकतवर जलजलों में मरने वालों की तादाद 1450 हो गई है। और हॉकी में भारत ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपनी मुहिम की शुरुआत की है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर वहां के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की। जहां मोदी ने इस तकरीब में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस तरह वो भारत के पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्हें ये एजाज दिया गया है। इस परेड में भारतीय बहरिया और फौज की टीमों पर मुश्तमिल एक दस्ते ने शिरकत की। भारत के एक बहरी बैंड ने भी शिरकत की है, जिससे भारत और सेशल्स के दरमियान करीबी शराकतदारी का इजहार होता है। एक खसूसी इशारे के तौर पर एनआईएस तरकश और आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया पर लंगर अंदाज किया गया, जिससे सेशल्स के साथ भारत की देरीना दोस्ती का अंदाजा होता है। वज़ीर आज़म मोदी ने इस तारीखी मौके पर सेशल्स के अवाम को भारत की नई ख्वाहिशात पेश की। जहां मोदी सेशल्स के सदर पैट्रिक हरमेनी की दावत पर हफ्ते के रोज सेशल्स पहुंचे थे। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और मॉरिशस के वज़ीर आज़म नवीन चंद्र राम गुलाम भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक भारत और सेशल्स के दरमियान देरीना दोस्ती है, जिसकी जड़ें मुश्तरका तारीखी, सकाफती और आवाम से आवाम के दरमियान रिश्तों से वाबस्ता हैं। भारतीय बहरे हिंद खित्ते में एक अहम समुद्री पड़ोसी के तौर पर सेशल्स का मुकाम भारत के विजन महासागर और आलमी जुनूब के तहत भारत के अहद में खसूसी हैसियत का हामिल है। वज़ारत ख़ारिजा ने बताया कि जनाब मोदी के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत और पायदार दोस्ती का इरादा होता है और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने में दोनों मुल्कों के मुश्तरका अहद का भी इरादा होता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सेशल्स का माहौलियाती तहफ़ुज़ और मुस्तकबिल तरक्की के तहत आला तरीन क्यादत पर गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन अवार्ड से नवाजा गया है। यह अवार्ड सेशल्स के सदर पैट्रिक हरमेनी के हाथों दिया गया, जिसके तहत मुस्तकिल तरक्की और जनाब मोदी के माहौल के लिए साजगार तसव्वुर का एतराफ किया गया है। जनाब मोदी ने इस अवार्ड से नवाजे जाने के बाद सेशल्स के अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के अपने हम मनसब डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और मॉरिशस के दरमियान जारी तआवुन पर बातचीत की। उन्होंने भारत की तरफ से पेश किए गए खसूसी इक्तिसादी पैकेज पर अमल दरामद पर पेशरफ्त का जायजा लिया। दोनों वज़ीरे आज़म ने भारत के विजन महासागर और पड़ोस मुकदम पॉलिसी और आलमी जुनूब के तहत अपने मुश्तरक आज़म के तहत भारत मॉरिशस फरोगशुदा दिफाई शराकतदारी की अहमियत से इत्तेफाक किया। अमरीका और ईरान कतर की राजधानी दोहा में इस बात पर रजामंद हो गए हैं कि एक दूसरे के खिलाफ हमले रोक दिए जाएं और कल से बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए। इस कदम का मकसद कई दिन से जारी इस फौजी कार्रवाई को रोकना है, जिसकी वजह से जंगबंदी को खतरा लाहक हो गया था और अबनाए हुरमुज से मुतालिक तनाजे को हल करना है। यह ऐलान अबनाए हुरमुज के आसपास कई हमलों के बाद किया गया है और अमरीका ने ईरान पर इल्जाम लगाया था कि उसने तजारती जहाजों पर हमला करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है, जिसके बाद उसने ईरान के फौजी ठिकानों पर हमले किए। इधर ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए। दोनों ही मुल्कों की तरफ से मजीद कशीदगी पैदा हो जाने के तई नए सिरे से खबरदार किया गया है। एक अमरीकी अफसर ने बताया कि अब दोनों ही मुल्क एक दूसरे पर हमला करने से बाज रहेंगे और मुज़ाकरात के दौरान इन जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त जारी रहेगी। सिविल जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बहादुरी से मुतालिक 2026 की दिफा की दूसरी तकरीब में बहादुरी इनामात अदा करेंगी। वो दिफाई अफवाज, मरकजी मुसल्लह पुलिस दस्तों और रियासतों मरकज के जेर इंतजाम पुलिस के अमले को बहादुरी के इनामात शाम 5 बजे अदा करेंगे। ये इनामात मुसल्लह दस्तों, मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेज और दीगर हिफाजती एजेंसियों के अमले के बहादुरी के गैर मामूली कारनामों को तस्लीम करते हुए दिए जाते हैं। सिविल जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इससे पहले इस तकरीब के पहले मरहले में भी बहादुरी इनामात अदा किए थे। ये तकरीब राष्ट्रपति भवन में इस माह की 8 तारीख को मुनाकिद की गई थी। वेनेजुएला कौमी असेंबली के सदर जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि दो ताकतवर जल्जलों में मरने वालों की तादाद 1450 तक जा पहुंची है। वेनेजुएला में ये जल्जले बुध के रोज आए थे। इन जल्जलों की शिद्दत 7.2 और 7.5 थी। जनाब रोड्रिगेज ने मुल्क में इमरजेंसी की ताजा तरीन सूरत हाल बताते हुए कहा कि वेनेजुएला में इन जल्जलों के बाद हल्के से औसत दर्जे के 430 झटके भी महसूस किए गए थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कॉमर्स और सन्नत के वजीर पीयूष गोयल बरतानिया के अपने दौरे के बाद यूनान के एथेंस के लिए भारत के एक आला सतही कारोबारी वफद की क्यादत कर रहे हैं। इस वफद की तवज्जो तिजारत, सरमायाकारी और स्ट्रेटेजिक माशी इश्तराक को मुस्तहकम करने पर मरकूज रहेगी। तिजारत और सन्नत की वजारत ने बताया कि यूनान के इस दौरे के दौरान मजकूरा वफद एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में होने वाली प्रेजेंटेशन और स्टार्टअप से मुतालिक तजावीज के प्रोग्राम में शिरकत करेगा। गुजरात के वडोदरा शहर में आज GSFC यूनिवर्सिटी में 4वीं दरअशां गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस का आगाज होगा, जिसका उन्वान है रीजनल एस्पायरिंग ग्लोबल एम्बिशन। मरकजी वजरा राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर, मनसुख मांडविया, अहम रियासती वजरा और आलमी सिफारतकार इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद वस्ती गुजरात के खित्ते में सनअती तरक्की की रफ्तार तेज करना है। इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में 30 से ज्यादा सेमिनार मुनक्किद किए जाएंगे, जिनमें जापान, सिंगापुर, मुत्तहिद अरब अमारात, यूक्रेन और रवांडा समेत शराकतदार मुल्कों के 151 माहिरीन और मंदुबीन शिरकत करेंगे। 150 से ज्यादा स्टॉल्स पर मुश्तमिल इस बड़ी नुमाइश में इलाकाई MSMEs, तरक्की याफ्ता टेक स्टार्टअप्स और कुछ बड़ी कंपनियां जैसे अमूल और GSFC वगैरह हिस्सा लेंगे। आसाम के धीमाजी जिले में बड़े पैमाने पर सैलाब आने के खतरात बढ़ गए हैं। खबरें हैं कि अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके में गाई नदी के बहाव में आर्जी तौर पर रुकावट आ गई है। समझा जाता है कि यह रुकावट बड़े पैमाने पर जमीनी तोदे खिसकने की वजह से आई है। खित्ते में तोदे खिसकने का यह हादसा कई दिन की शदीद बारिश की वजह से पेश आया है। धीमाजी जिला इंतजामिया ने लोगों के लिए एक फौरी हिदायत जारी की और उन्हें खबरदार किया है कि जो पानी यहां जमा हो गया है, अगर उसे आगे जाने दिया जाए तो अचानक सैलाब आ सकता है।

0: पहाड़ी इलाकों पर मूसलाधार बारिश की वजह से जिला के जुनाई इलाके पानी में डूब गए हैं और यहां पानी कौमी शाहराह नंबर 515 के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियों के आमदोरफ्त में रुकावट आ गई है। इस बढ़ते हुए सैलाब से घर और खेत पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से इमलाक और खड़ी फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी। इस खुशगवार यात्रा के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। आकाशवाणी जम्मू के नवा निगार ने बताया कि हिफाजती इंतजाम, काफिले की पेशरफ्त और यात्रा बाकायदा शुरू होने से पहले तमाम तर तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज एक मुकम्मल मशक अंजाम दी गई है। हॉकी में कल लंदन के ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर में खेले गए मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 3-2 से शिकस्त दी। मुकाबला डरा रहा था, जिसके बाद ये गोल पेनल्टी शूटआउट में किए गए अभिषेक शीलानंद लड़का और हार्दिक सिंह ने ये गोल किए। संजय को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के कौमी दिन की तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। उन्होंने मॉरिशस के अपने हमनसब नवीन चंद्र गुलाम से बातचीत की। अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोकने और कल से बातचीत दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। सभी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दिफा से मुतालिक एक तकरीब में बहादुरी इनामात अदा करेंगे। वेनेजुएला में दो ताकतवर जल्जलों में मरने वालों की तादाद 1450 हो गई है। हॉकी में भारत ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपनी मुहिम की शुरुआत की है। इसी के साथ आलमी खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी हैं।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के कौमी दिन की तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। उन्होंने मॉरिशस के अपने हम मनसब नवीन चंद्र रामगुलाम से बातचीत की। अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोकने और कल से बातचीत दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दफा से मुतालिक एक तकरीब में बहादुरी इनामात अता करेंगी। वेनेजुएला में दो ताकतवर जलजलों में मरने वालों की तादाद 1450 हो गई है। और हॉकी में भारत ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपनी मुहिम की शुरूआत की है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से अभी तक आप सुन रहे थे उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात। हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दिन के 1:15 होने को है। हमारी पहली मजलिस यहीं खत्म होती है। दिन में 3 बजे दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

यहाँ श्रोताओं, कहो ना प्यार है ये आज की फिल्म है और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। तो श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और आपको बताते हैं एक दिलचस्प किस्सा जिसने बॉलीवुड को एक नई सुपरस्टार हीरोइन और एक हीरो दिया। जब इस फिल्म की तैयारी चल रही थी तब करीना कपूर को इसकी लीड एक्ट्रेस के तौर पर साइन किया गया था। उनकी और ऋतिक की जोड़ी को लेकर काफी उत्साह था। करीना ने फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी थी। राकेश रोशन ने मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो में बड़ा सेट लगवाया था और एक गाने की शूटिंग से शुरुआत करने वाले थे, लेकिन फिर कुछ मतभेद के कारण मुख्य शूटिंग शुरू होने से सिर्फ चार दिन पहले करीना ने फिल्म छोड़ दी। अब सोचिए, सेट तैयार था, लाखों रुपए खर्च हो चुके थे, टीम के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। इस बीच किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। एक शादी समारोह में राकेश रोशन की मुलाकात अपने पुराने दोस्त अमित पटेल से हुई। उनके साथ उनकी बेटी अमीषा पटेल भी थी। राकेश रोशन को अमीषा स्क्रीन के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगी। उन्होंने पूछा कि क्या वे फिल्मों में काम करना चाहेंगी और यहीं से अमीषा पटेल की बॉलीवुड यात्रा शुरू हो गई। अब बात करते हैं ऋतिक रोशन की। आज भले ही वे सुपरस्टार हो लेकिन उनका सफर बिल्कुल आसान नहीं था। वे काफी शांत और अंतर्मुखी स्वभाव के थे। खुद को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने घंटों डांस की प्रैक्टिस की, एक्टिंग की और अपनी आवाज पर भी खूब मेहनत की। इस फिल्म में ऋतिक के दो बिल्कुल अलग किरदार निभाने का मौका मिला था। एक तरफ मासूम और भावुक रोहित तो दूसरी तरफ आत्मविश्वासी और आकर्षक राज। राकेश रोशन चाहते थे कि दर्शक एक ही फिल्म में ऋतिक की एक्टिंग, डांस और एक्शन तीनों का पूरा जलवा देखे। अपने फिजिक पर काम करने के लिए ऋतिक ने सलमान खान की भी मदद ली थी और ऋतिक ने खुद को पूरी तरह बदल डाला। फिर जब फिल्म रिलीज हुई तो जो हुआ वो तो इतिहास ही बन गया। ऋतिक रोशन रातों रात देश भर के युवाओं के दिलों की धड़कन बन गए। कहा जाता है कि उन्हें लगभग 30,000 शादी के प्रस्ताव मिले थे, लेकिन लाखों दिलों की धड़कन बन चुके ऋतिक ने जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन खान से शादी कर ली और अपने फैंस का, खासकर महिला फैंस का दिल थोड़ा सा तोड़ दिया। और इसी तरह एक फिल्म में ने बॉलीवुड को दो नए सितारे दिए, ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल। वहीं सहायक कलाकारों की मजबूत टीम में दिलीप ताहिल, मोनीश बहल, आशीष विद्यार्थी, सतीश शाह और फरीदा जलाल जैसे अनुभवी कलाकार शामिल थे, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से फिल्म को और भी प्रभावशाली बनाया। तो चलिए संगीत के सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं इसी फिल्म से एक और गीत।

0: अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है ब्लॉकबस्टर फिल्म कहो ना प्यार है, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, बात करते हैं फिल्म की कहानी की। फिल्म की कहानी कोई बहुत अनोखी नहीं थी, लेकिन इस फिल्म को पर्दे पर पेश करने का जो तरीका था वो अनोखा था, और इसका जो हीरो था वो बिल्कुल अनोखा था। कहानी में एक जैसी शक्ल वाले दो युवक रोहित और राज एक ही लड़की सोनिया की जिंदगी में अलग अलग समय पर आते हैं, और जैसा कि अक्सर कहा जाता है, इंसान को जिंदगी में प्यार कई बार हो सकता है, लेकिन हर बार उसकी वजह और एहसास अलग होते हैं। सोनिया के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। रोहित उसकी जिंदगी में मासूम मोहब्बत बनकर आता है, जबकि राज उस समय उसका सहारा बनता है जब वो अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही होती है। इसके बाद कहानी प्यार, रहस्य और रोमांच के ऐसे सफर पर निकलती है जहां कई छिपे हुए राज सामने आते हैं। तो श्रोताओं, अगर ये राज आपको भी जानना है तो ये फिल्म जरूर देखिएगा। ये आपको उस दौर में ले जाएगी जब फिल्मों में रोमांस की मासूमियत, गीतों की मिठास और कहानियों का जादू कुछ अलग ही हुआ करता था। तो चलिए इसी जादू को महसूस करते हैं इस सॉन्ग के साथ।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। दोस्तों, किसी भी फिल्म की सफलता में उसकी कहानी और कलाकारों का योगदान तो होता ही है, लेकिन कहो तो प्यार है कि कामयाबी में इसके संगीत ने भी उतनी ही अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म का संगीत तैयार किया था मशहूर संगीतकार राजेश रोशन ने। वहीं इसके गीत इब्राहिम अश्क, सावन कुमार टाक और विजय अकेला ने लिखे थे। खास बात यह थी कि फिल्म का संगीत उस दौर के युवाओं की पसंद और भावनाओं को बेहद ही खूबसूरती से छुआ था। राकेश रोशन ने इस फिल्म के जरिए अपने पुराने दोस्त महमूद के बेटे लकी अली को भी बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर के तौर पर एक बड़ा मौका दिया। उस समय लकी अली अपने पॉप एल्बम की वजह से युवाओं के बीच में बेहद लोकप्रिय थी। फिल्म में उन्होंने दो गाने गाए और दोनों ही गाने लोगों के दिलों में बस गए। खास तौर पर उनका सूफियाना अंदाज फिल्म के संगीत को एक अलग ही पहचान देता है। इसके अलावा उदित नारायण, कुमार शानू और बाबुल सुप्रियो जैसे शानदार गायकों ने भी ऋतिक रोशन के किरदार को अपनी आवाज दी। गीतों के बोल और धुनों का ऐसा मेल बना कि एल्बम का लगभग हर गाना सुपरहिट साबित हुआ। फिल्म के संगीत को लॉन्च करने का कार्यक्रम भी खास रहा। राकेश रोशन के करीबी दोस्त जितेंद्र और ऋषि कपूर ने अंधेरी के द क्लब में इसका म्यूजिक रिलीज किया था और फिर जब फिल्म रिलीज हुई तो इसके गाने हर तरफ सुनाई देने लगे। साल 2000 में कई बड़ी फिल्मों के म्यूजिक एल्बम को पीछे छोड़ते हुए कहो ना प्यार है के लगभग 1 करोड़ म्यूजिक एल्बम और कैसेट बिके थे। ये अपने आप में एक बड़ा ही रिकॉर्ड था। तो आइए अब सुनते हैं इसी फिल्म का एक ऐसा ही गीत जिसने लाखों दिलों को धड़कना सिखाया।

का मेल आ गया है, उसे हम पढ़ लेते हैं। ये मेला है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का, शांति नगर सोनीपत से। और हम आगे बढ़ते हैं और ये मेला है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का। स्वर्ण सिंह, दलजीत, राजदीप, गुन्नूर, गुलराल और अविराज जी का आया है ठाकुरावाला से। और ये है वीरमगांव गुजरात से अजीत कुमार भावसार, प्रमिला भावसार। और ये है कुमकुम जी, विजय रतनमाला, मोताला महाराष्ट्र से। और संदीप मक्कर जी का आया है ज्योति मन्नत भारत, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, जालंधर पंजाब से। और ये हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ पलियारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी। और इंद्रानगर भवरपुर से राधेश्याम और राजू, चंपा और जगदीश का। दंतरेगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा का।

ये मेल आया है राकेश रोशन, ये लिखते हैं राकेश रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है बेहद सुपरहिट फिल्म है और आपकी प्रस्तुति लाजवाब है। धन्यवाद आपका सुरेश यादव, अनीता यादव, सोनल प्रसाद यादव और नेहरू चौक से। और ये मेल आया है हमारे पास पीएस निर्मला विशाल, नारायण सोपान और आशीष का और ये है महाराष्ट्र से।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और अब हम पहुंच चुके हैं फिल्म के आखिरी पड़ाव पे। श्रोताओं, अब वक्त हो रहा है कहो ना प्यार है से जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प बातों को बताने का। फिल्म की कहानी का अंत कैसे हो, इसे लेकर मेकर्स काफी सोच विचार कर रहे थे। यही वजह है कि फिल्म के लिए दो अलग अलग एंडिंग शूट की गई, और एक एंडिंग में राज की मौत हो जाती है और सोनिया अकेली रह जाती है, जबकि दूसरी एंडिंग में राज बच जाता है और दोनों की प्रेम कहानी खुशी खुशी पूरी होती है। आखिरकार राकेश रोशन और उनकी टीम ने दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए हैप्पी एंडिंग को चुना, और शायद यही फैसला दर्शकों के दिलों तक फिल्म को और गहराई से पहुंचाने में कामयाब रहा। श्रोताओं, साल 2000 में रिलीज हुई कहो ना प्यार है सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा सिनेमाई अनुभव बन गई जिसने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लगभग 10 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 80 करोड़ रुपए का कारोबार किया और उसी साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। पुरस्कारों की बात करें तो इस फिल्म ने एक नया इतिहास रच दिया। ऋतिक रोशन को इसी फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दोनों पुरस्कार मिले, जो अपने आप में एक अनोखी उपलब्धि थी। इतना ही नहीं, कहो ना प्यार है ने कुल 92 पुरस्कार जीते। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज कराया। ये अपने दौर की सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। आज भी ये फिल्म अपनी बेहतरीन कहानी, डांस और संगीत के लिए भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है। तो चलिए, अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के लास्ट सॉन्ग की तरफ।

हमारे कुछ श्रोता अभी भी हैं, वो है संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से। तो इसी के साथ ही आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम फिर हाजिर होंगे दिन के 2:30 पर एक ही कलाकार प्रोग्राम लेके। तब तक आप अपने दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए।

0: और आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दिन के 1:40 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सचिव तरफ एक अजय दुनिया की यत्न की जिथे विकास वधेरे समावेशी हो अंतरराष्ट्रीय संस्था समकाली हकीकतों दर्शाई हो। श्री मोदी सचिव तरफ तीन दिन सफल दौरे तो बाद भारत लिये रवाना हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

नीट यूजी परीक्षा लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 10 मुलजमान की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। इस केस की जांच सीबीआई कर रही है। मुलजमान उन्होंने पिछली न्यायिक हिरासत की न्याय खत्म होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही राउस एवेन्यू अदालत में पेश किया गया। इस तो पहले 15 जून राउस एवेन्यू अदालत ने आज तक 10 मुलजमान की न्यायिक हिरासत दिखी थी। सीबीआई ने हम तक इस मामले में 13 मुलजमान गिरफ्तार किया।

Okay. अध्यापक योग्यता परीक्षा के प्रमुख मामले को गिरफ्तार करते कप्तान निर्माण देवंदी सेशंस अदालत ने 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच एजेंसी ने शाखा के मामला कई राज्यों के फैले एक प्रख्यात माफिया में जुड़े हो सकता है। योजना को पेश पेश करके नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। ये खबरों को सुनिए आकाशवाणी के सुनते हो साढ़े 8 घंटे और

क्या कि ऐसे सुधार का उद्देश्य कारोबार करने का आसानी बताना सिवा इच्छुक पालन में छाप करना बेलोड़ी मुकदमेबाजी को टाने और विश्वास आधारित रेगुलेटरी कंपनी मजबूत करना है। मंत्रालय ने कहा कि नई प्रणाली का कानूनी महत्व अधिकारी संबंधित संस्थानों

0: दिल्ली में तो वोटर कर कर जाके वोटर गवर्नर फॉर्म भरने का काम कल से शुरू हो गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ कल तो 29 जुलाई तक कर कर वोटर गणना फॉर्म भरेंगे तो योग वोटरों के पन्नों में अरसियां इकट्ठा करेंगे।
1: तो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओ एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनोग्रेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स है और सभी पे बीएलओ अपॉइंटेड है, तो सभी बीएलओ को उनके इनोग्रेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: श्री कुमार ने कहा कि दावत एतराज 5 अगस्त से 4 सितम्बर तक दायर किए जा सकते हैं। अंतिम वोटर सूची 7 अक्टूबर में प्रकाशित की जाएगी। असम के धेमाजी जिले में हड़ का खतरा बढ़ गया है, जिसके कारण अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में लगातार भारी मील कारण वही पद्धर के जमीन खिसकने मगरों गाई नदी के उपरी विभाग का अस्थायी तौर पर रुक जाना दसा जा रहा है। धेमाजी जिला प्रशासन ने एक जरूरी जनतक सलाह जारी करदे चेतावनी दी है कि जेकर इकट्ठा पानी हेठों वाल छड्डा जाता है तो पानी के फड़ आ सकते हैं। बांग्लादेश के सबका प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि कानूनी मामले मौत की सजा के अवामी लीगियां राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदी के बावजूद वो इस साल के अंत तक बांग्लादेश वापस जाएंगे।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असदुल्ला। जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बहादुरी से मुतालिक अवार्ड पेश करेंगी। हुकूमत ने कारोबार में सहूलत पैदा करने की गर्ज से तरीकेकार को बेहतर बनाने से मुतालिक एक नोटिस मुतारिफ कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने मफाद आमा की एक अर्जदाश्त पर फौरी समाप्त करने से इनकार कर दिया है, जिसमें राम मंदिर अतियात के केस में मुबैना माली बेजाब्तियों की छानबीन अदालत की निगरानी में कराने की दरख्वास्त की गई थी। हरियाणा और राजस्थान ने आज अमित शाह की मौजूदगी में जमुना के पानी की तकसीम से मुतालिक एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली में वोटरों की खुसूसी जामे नजरसानी मुहिम SIR के तहत वोटरों को इलेक्टोरल फॉर्म्स घर घर जाकर तकसीम किए जाने का अमल कल से शुरू होगा। बांग्लादेश के सबक वजीर आजम शेख हसीना ने कहा है कि वो जान से मारने की धमकियों के बावजूद इस साल के आखिर से पहले तक बांग्लादेश वापस चली जाएंगी। और फीफा वर्ल्ड कप में लॉस एंजलिस में खेले गए पहले नॉकआउट मैच में कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। तो खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बहादुरी से मुतालिक 2026 की दिफा की दूसरी तकरीर में बहादुरी इनामात अता करेंगी। जो दिफाई अफवाज मरकजी मुसल्ला पुलिस दस्तों और रियासत व मरकज के जेर इंतजाम पुलिस के अमले को बहादुरी के इनामात शाम 5 बजे अदा करेंगे। इनामात मुसल्ला दस्तों, मरकजी पुलिस फोर्सेज और दीगर हिफाजती एजेंसियों के अमले के बहादुरी के गैर मामूली कारनामों को तस्लीम करते हुए दिए जाते हैं। इनामात से पूरे जम्मू कश्मीर, शुमाल मशरक और मुल्क की सरहदों पर दहशतगर्दी, शोरिश पसंदी और मुखासिमाना धमकियों की रोकथाम के लिए भारत की लगातार जद्दोजहद की अक्कासी होती है। निज एविएशन, समुद्री कार्रवाइयों और इंसानी हमदर्दियों वाले मिशनों में गैर मामूली हौसले के इकदाम उजागर होते हैं। सदर मुर्मू ने इससे पहले इस तकरीब के पहले मरहले में भी बहादुरी इनामात अदा किए थे। ये तकरीब राष्ट्रपति भवन में इस माह की 8 तारीख को मुनाकिद की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के अपने दौरे के तीसरे दिन आज विक्टोरिया में नवाशक्ति विनय नगर मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां भारत निषाद अफराद से मुलाकात भी की। बाद में वज़ीर-ए-आज़म ने पीस पार्क में वाकई महात्मा गांधी के मुजस्मे पर गुलाए अकीदत नजर किए। जहां मोदी सेशल्स का अपना 3 रोजा कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद भारत रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने सेशल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर वहां के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की। जहां मोदी ने इस तकरीब में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस तरह वो भारत के पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्हें ये एजाज दिया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस परेड में भारतीय बहरिया और फौज की टीमों पर मुश्तमिल एक मार्चिंग दस्ते ने शिरकत की। इसके अलावा भारत के एक बहरी बैंड ने भी शिरकत की, जिससे भारत और सेशल्स के दरमियान करीबी शराकतदारी का इजहार होता है। खैर सगाली के एक खसूसी जज्बे के तौर पर INS तरकश और INS इश्क शाक को पोर्ट विक्टोरिया पर लगन अंदाज किया गया, जिससे सेशल्स के साथ भारत की देरीना दोस्ती का अंदाजा होता है। वज़ीर-ए-खारजा के मुताबिक भारत और

0: day, July the 4th. The Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. The Met Department also predicted heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala and Mahe till Wednesday. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. 3-decade pending Yamuna water sharing project between Haryana and Rajasthan gets approval today. Supreme Court refuses urgent hearing on PIL, seeking court-monitored probe into alleged financial irregularities in Ram Mandir donations case. CBSE exempts current class 10th batch from free language policy. Government introduces improvement notice mechanism to promote ease of doing business. FIR set to begin in Delhi tomorrow. And in FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in first knockout match at Los Angeles. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के 2रे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायकर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन्स से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मॉनसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा का अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शिलू नाग के बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरामतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री पी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
3: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओस एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स है और सभी पे बीएलओस अपॉइंटेड है, तो सभी बीएलओस को उनके इन्यूमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का आज वडोदरा से जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
4: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीषा।
0: बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
5: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्थान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कूप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव यौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन स्ट्राचो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है।

0: प्रदेश यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाले जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। दिन के 2:30 हो रहे हैं और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने दिन का आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ अपने दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए और स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसी गीतकार की जिनकी कलम ने कई सुंदर गीत लिखे। 1 अक्टूबर 1932 को कानपुर में इनका जन्म हुआ और इसी गंगा जमुनी तहजीब के माहौल में उनका बचपन बीता। स्कूल के दिनों से ही इन्हें शायरी और कविता लिखने का शौक था, फिर आगे चलकर ये एक बड़े फनकार बने।

जी हाँ श्रोताओं, शायद आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ गौहर कानपुरी साहब की। बचपन से ही इन्हें गीत और उर्दू शायरी लिखने की दीवानगी थी। यही दीवानगी इन्हें कानपुर से मुंबई लेकर गई, पर सपने पूरे करने का रास्ता आसान नहीं था। मुंबई पहुंचकर इन्होंने सालों तक संघर्ष किया। करीब 10 साल की मेहनत के बाद 1967 में पहला ब्रेक मिला। फिल्म प्यार की बाजी में अपना पहला गाना लिखा। संगीतकार जिमी के डायरेक्शन में इन्होंने हसीनों का दीदार करना बुरा है टाइटल से एक कव्वाली लिखी जो बहुत मशहूर हुई। गौहर साहब उर्दू शायरी से प्रेरित थे और फिल्मी गीतों में इसकी खुशबू भर देते थे। कानपुर से मुंबई तक का सफर आसान नहीं था, पर इनकी कलम कभी रुकी नहीं। तो चलिए सुनते हैं फिल्म जख्मी से इनका ये दिल को छू लेने वाला गाना।

सिनेमा श्रोताओं, आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं। और ये गीत बहुत ही खूबसूरत गीत है और अपने समय में ये गीत बहुत हिट भी हुई थी। श्रोताओं, गौहर साहब अपने कानपुर की पहचान को हमेशा अपने साथ रखने के लिए उन्होंने अपने नाम के आगे कानपुरी पेन नेम जोड़ा। गौहर साहब को शुरुआत में एक दो गाने ही मिलते थे। एक फिल्म के दौरान इनकी मुलाकात बप्पी लहरे से हुई। बप्पी लहरे उस समय बहुत सी फिल्मों में म्यूजिक दे रहे थे। दोनों की जोड़ी बाद में कई हिट गीतों की बनी, लेकिन असली सफलता 1975 में जख्मी फिल्म से मिली, जिसका गाना अभी आपने सुना। ये पहली फिल्म थी जिसमें गौहर साहब ने पूरे गाने अकेले लिखे थे। जलता है जिया मेरी भीगी भीगी रातों में, अभी अभी थी दुश्मनी, दोस्ती हो गई, जैसे गाने सुपरहिट हो गए। दोस्तों, सालों के संघर्ष के बाद एक फिल्म ने सब बदल दिया। गौहर साहब के गीतों में रोमांस था, दर्द था और जिंदगी की हकीकत भी थी। दूसरी तरफ बप्पी दा के साथ इनकी जोड़ी ने तो कमाल कर दिया। संग्राम, हैवान, फिर जन्म लेंगे हम जैसी फिल्मों के गीत लिखकर इन्होंने खुद को एक बेहतरीन गीतकार बनाया। तो चलिए अब सुनते हैं फिल्म सावन को आने दो का ये प्यारा सा गीत।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं गौहर कानपुरी और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, सावन को आने दो फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग जो था बहुत पॉपुलर हुआ। जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की आवाज में ये गाना सुनकर लोग भावुक हो जाते थे। गौहर साहब की कलम से जो प्यार और भावनाओं की खूबसूरती बयां होती थी, इनकी और बप्पी लहरी की जोड़ी ने 70 के दशक में कई यादगार गीत दिए। इसके अलावा इन्होंने नदीम श्रवण, राम लक्ष्मण और अनु मलिक के साथ भी काम किया। गौहर साहब का स्टाइल क्लासिक था, इनके गीतों में गहराई थी जो सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर देती थी। हालांकि बड़े नामों के साथ काम करने के बावजूद उनको उतना क्रेडिट नहीं मिला जिसके ये हकदार थे, लेकिन उन्हें मुशायरों के लाइव मंच पर ज्यादा सुकून और कामयाबी मिली। वे मुंबई की लाइमलाइट से ज्यादा मुशायरों के मंच पर जनता से सीधे जुड़ना पसंद करते थे। तो चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। और ये जो फिल्म है उसका नाम है दुल्हा बिकता है।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं गौहर कानपुरी। दोस्तों, आगे चलकर 80 के दशक में भी गौहर कानपुरी साहब ने गीत लिखने का काम जारी रखा। जख्मी इंसान, बेसहारा, फकीर बादशाह, आखिरी मुकाबला जैसी फिल्मों के गाने लिखे। फिर 90 के दशक में भी फिल्म जान तेरे नाम और बाजीगर फिल्म का ऐ मेरे हमसफर, ऐ मेरी जाने जान जैसे अमर गीत लिख डाला। शाहरुख खान की फिल्म का ये गाना आज भी लोग सुनते हैं। गौहर साहब ने करीब 300 गाने 120 फिल्मों के लिए लिखे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में वे लाइमलाइट से दूर ही रहते थे। बावजूद इसके गौहर साहब ने ये साबित किया कि अच्छे शब्द हमेशा याद रहते हैं। चलिए इन्हीं की याद में सुनते हैं अगला गीत फिल्म जान तेरे नाम से, जिसे इनकी कलम से लिखा था इन्होंने। कुमार शानू की आवाज में गाया ये गीत उस दौर का सबसे बेहतरीन रोमांटिक और दर्द भरे गानों में गिना जाता था।

जी हाँ दोस्तों, इन गानों में जो खूबसूरती थी, जो लफ्जों को बयां करने का तरीका था, वो बिल्कुल अलग था, निराला था। गौहर साहब का करियर 25 साल से ज्यादा चला। इन्होंने न सिर्फ फिल्मी गीत लिखे बल्कि भजन और गजलें भी लिखी। इनकी कलम से निकले शब्द सरल थे लेकिन गहरा असर छोड़ जाते थे। आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं जैसे गाने बच्चों को भी बहुत पसंद आए। ये एक मजबूत और मेहनती इंसान थे। 10 साल इंतजार के बाद ब्रेक मिला, फिर भी लगातार मेहनत करते रहे। गौहर साहब की जिंदगी सिखाती है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, धैर्य और मेहनत जरूरी है। इनके गीत आज भी रेडियो यूट्यूब पर सुनाई देते हैं। नई पीढ़ी को पता चलता है कि 70 और 80 के दशक का जो संगीत था वो कितना खूबसूरत था। तो चलिए इसी बात पर सुनते हैं जख्मी फिल्म का ये बेहतरीन सा गीत।

इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक से कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं गौहर कानपुरी। और आपके मेल हमारे पास आ चुके हैं, तो मेल भी हम साथ साथ पढ़ लेते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। और ये आया है अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्णलाल खत्री, मोहम्मद जफर सादिक, शंकर गुल शर्मा, और ये हैं हमें ईमेल करते हैं। और इनके साथ हैं बागपत से ममता और संजय ढींगिया मेरठ से, और नवाब खान हैं मुंबई से, नवाब खान, इशरत मास्टर, अजहर खान और अजीम खान। और साथ में है धनोरी तेलीवाल उत्तराखंड से, निसार सलामी, नौसा सलामी, बेबी आलिया, आयान बाबू।

हमारे साथ जुड़ चुके हैं एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, चैतन्य मेघा चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना, और ये है हीरामणि वर्मा दंतरेगी भाटापारा से, और ये लिखते हैं कि ये गौहर कानपुरी जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुन रहे हैं। गौहर कानपुरी जी के गीत और उनके फिल्मी सफरनामा पर रोचक जानकारी पसंद आ रही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है राजकुमार डुंडी जी, और ये है गांव नथाना पंजाब से हरिचंदर छिंदा, जसवीर, जसवी, सीता और गीता, और ये वनिंगा खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, और नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और गुरमंत कौर मनु, और ये हैं हमारे साथ कालानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं। हम आपको बता दें कि गौहर कानपुरी साहब वो राइटर थे जिन्होंने जीवन के लगभग हर रंग को कागज पर उतारा था। इनकी सबसे खास बात ये थी कि इनके लफ्ज बेहद आसान हुआ करते थे, पर कलम का ये जादूगर आज ही के दिन यानी 29 जून 2002 को हम सभी को छोड़कर चला गया, पर आज भी इनके गीत लोगों के दिलों में जिंदा है। गौहर कानपुरी जी की विरासत भारतीय साहित्य और सिनेमा में हमेशा अमर रहेंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले शो में आपको ऐसे ही किसी खास कलाकार के बारे में अनसुनी बातें बताएंगे, लेकिन तब तक के लिए अपने दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए और आप ये कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनने का मजा लीजिए, और कहीं मत जाइएगा क्योंकि 3 बजे होगा मैटिनी शो और वो पेश करेंगी हमारी साथी कला आरजे प्रीति त्यागी जी।

0: मेरे में भी 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बहादुरी से मुतालिक अवार्ड पेश करेंगी। हुकूमत ने कारोबार में सहूलत पैदा करने की गरज से तरीकाकार को बेहतर बनाने से मुतालिक एक नोटिस की शुरुआत की है। अमरीका और ईरान हमले और जवाबी हमले रोकने पर रजामंद हो गए हैं। दोनों ममालिक कल दोहा में आबनाए हुरमूज के बारे में बातचीत शुरू करेंगे। बांग्लादेश के साबिक वजीर आजम शेख हसीना ने कहा है कि वो जान से मारने की धमकियों के बावजूद इस साल के खत्म होने से पहले बांग्लादेश लौट जाएंगे। और फीफा वर्ल्ड कप में लॉस एंजलिस में खेले गए पहले नॉकआउट मैच में कनाडा ने पूर्वी अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया है। खबरें तफसील से। जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बहादुरी से मुतालिक 2026 के दिफा की दूसरी तकरीब में बहादुरी के इनामात अता करेंगी। वो दिफाई अफवाज, मरकजी मुसल्ला पुलिस दस्तों और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम पुलिस के अमले को बहादुरी के इनामात शाम 5 बजे अता करेंगी। ये इनामात मुसल्ला दस्तों, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज और दीगर हिफाजी एजेंसियों के अमले के बहादुरी के गैर मामूली कारनामों को तस्लीम करते हुए दिए जाते हैं। इन इनामात से पूरे जम्मू कश्मीर, शुमाल मशरक और मुल्क की सरहदों पर दहशतगर्दी, शोरिश पसंदी और मुखासमाना धमकियों की रोकथाम के लिए भारत की लगातार जिद्दोजहद की अक्कासी होती है। नेज एविएशन, समुद्री कार्रवाइयों और इंसानी हमदर्दी वाले मिशनों में गैर मामूली हौसले के इकदाम उजागर होते हैं। सदर मुर्मू ने इससे पहले इस तकरीब के पहले मरहले में भी बहादुरी के इनामात अता किए थे। ये तकरीब राष्ट्रपति भवन में इस महीने की 8 तारीख को मुनाकिद की गई थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के अपने दौरे के तीसरे दिन आज विक्टोरिया में नवाशक्ति विनायागार मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां भारत नजाद अफराज से मुलाकात भी की। बाद में वज़ीर आज़म ने पीस पार्क में वाकई महात्मा गांधी के मुजस्मे पर गुहाय अकीदत नजर किए। जनाब मोदी सेशल्स का अपना 3 रोजा कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद भारत रवाना हो गए हैं। कल वज़ीर आज़म मोदी ने सेशल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर वहां के पौने दिन की तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने इस तकरीब में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस तरह वो भारत के पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्हें यह एजाज दिया गया है। इस मौके पर परेड में भारतीय बहरिया और फौज की टीमों पर मुश्तमिल एक मार्चिंग दस्ते ने शिरकत की। भारत के एक बहरी बैंड ने भी शिरकत की, जिससे भारत और सेशल्स के दरमियान करीबी शराकतदारी का इजहार होता है। हरसगाली के एक खसूसी जज्बे के तौर पर INS तरकश और INS एक शक को पोर्ट विक्टोरिया पर लगनअंदाज किया गया, जिससे सेशल्स के साथ भारत की देरीना दोस्ती का अंदाजा होता है। जनाब मोदी सेशल्स के सदर की दावत पर हफ्ते के रोज सेशल्स पहुंचे थे। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और मॉरिशस के वज़ीर आज़म भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक भारत और सेशल्स के दरमियान देरीना दोस्ती है, जिसकी जड़ें मुश्तरका तारीखी, सकाफती और आवाम से आवाम के दरमियान रिश्तों से वाबस्ता हैं। भारतीय बहर हिंद में खत्ते में एक अहम समुद्री पड़ोसी के तौर पर सेशल्स का मकाम भारत के विजन महासागर और आलमी जनूब के तय भारत के अहद में खसूसी हैसियत का हामिल है।

और समझ लीजिए, सुनिए आशा भोसले, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गया, जिसे मौसीकी सजाया राहुल शर्मा ने। फिल्म है मुझसे दोस्ती करोगे,

और सुनिए जी, आज के मेरी पसंद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश शोले फिल्म का नगमा किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में, मुसिकार आर डी बर्मन।

सामूहिक नर्म के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है कहकशां प्रोग्राम। आज इस प्रोग्राम के तहत सुनिए फिल्म कभी कभी की कहानी और नगमे, जिसे तरतीब दिया है सरफराज अहमद ने।

नई कोपलें फूटेंगी, कल नए फूल मुस्काएंगे और नई घास के नए फर्श पर नए पांव इठलाएंगे।

की सुबहों और शामों का मैं एक भी लम्हा क्यों पाऊं। फिल्म साज यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी दो नस्लों के दरमियान मोहब्बत के रिश्तों की कहानी है। इस फिल्म की एक नस्ल वो है जो माँ बाप के अरमानों और ख्वाहिशात के लिए अपनी मोहब्बत का गला घोट देते हैं। इस नस्ल की नुमाइंदगी अमित यानी अमिताभ बच्चन और पूजा यानी राखी करते हैं। दूसरी नस्ल उन नौजवानों की है जो माँ बाप और समाज पर अपनी मोहब्बत को मुकद्दम तसव्वुर करते हैं और अपनी मोहब्बत को पाने के लिए जान की बाजी तक लगा देते हैं। इस नस्ल की नुमाइंदगी विक्की यानी ऋषि कपूर और पिंकी यानी नीतू सिंह ने की है। फिल्म की इब्तिदा दिल्ली के एक कॉलेज में एक जलसे से होती है जिसमें अमित अपना गीत सुनाकर खूब खूब दादे तहसीन वसूल कर रहा है।

0: और जलसे के बाद ऑटोग्राफ लेने अमित के पास पहुंच गई।
1: ऑटोग्राफ प्लीज।
2: आप मुझसे ऑटोग्राफ मांगे?
1: आपने इतनी अच्छी नज़म लिखी है।
2: आपको पसंद आई?
1: बहुत। प्लीज
2: ऑटोग्राफ की आप ये नज़म ही रख लीजिए, शायद आपके लिए ही कही है।
1: लेकिन इस पर तो आपका नाम भी नहीं। नाम लिख दीजिए।
2: क्या नाम है मेरा? आपको देख के मैं अपना नाम भूल सके?
1: आप हमारे लिए कुछ लिखे ना।
2: आपका नाम?
1: पूजा।
2: मेरा नाम पुजारी नहीं हो सकता? आपने कभी अपनी आंखें देखी
1: जी? कोई खास बात है?
2: जहां देखती है एक रिश्ता काम कर लेती है।
0: ये अमित और पूजा की पहली मुलाकात थी। अमित भी पूजा के सहरंगेज हुस्न से मुतासिर हुए बगैर न रह सका और ये पहली मुलाकात दिलों के रिश्तों में बदल गई और दोनों की रोजाना मुलाकातें होने लगी।
2: तेरा हाथ हाथ में हो अगर,

अमित के इस गीत से न जाने कितने दिल घायल हुए, कितनों के अरमान जागे, ये तो नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता नीली आंखों वाली एक सहरा, जिसका नाम पूजा था, उसकी शायरी से मुतासिर

बात का मेरी हमनफर, मेरी बात का मेरी हमनफर, तू जवाब दे कि न दे मुझे, तेरी एक चुप में जो है छुपी, तेरी एक चुप में जो है छुपी, वो हजार बातों की बात है।

0: बड़ी असली हयात है। पूजा, कभी कभी ये सब एक सपना सा लगता है ना?
1: नहीं पूजा, नहीं नहीं।
2: हमारे हॉस्टल के हर लड़की तकिए के नीचे तुम्हारी कविता रखकर सोती है। देख ली तो तुम्हारी तस्वीर के साथ शादी भी कर ली। उन्हें अगर पता चल जाए कि तुम मुझे चाहते हो तो जहर खाकर मर जाए।
0: बेचारी लड़कियां।
2: बेचारी क्यों?
0: यही तो तारीफ है उनकी। तस्वीर किसी की रखेंगी, प्यार किसी और से, और शादी किसी तीसरे से।
2: इसमें उनका क्या कसूर है? माँ बाप लड़की की मर्जी कहाँ पूछते हैं, जहाँ जाते हैं शादी कर देते हैं।
0: तुम तो ऐसा नहीं करोगे?
2: अपने माता पिता से पूछ कर तुम्हें जरूर बताऊंगी।
0: शर्त लगा रही हो या मजाक कर रही हो?
2: तुम वादा ले रहे हो या मेरा इम्तिहान?
0: मैं अपनी जिंदगी संवारना चाहता हूं।
2: वो कैसे?
0: मैं हर सुबह इन कटोरों की हंसी पीऊंगा और हर शाम इन चिरागों से रोशन करूंगा।
2: और तारीफ करो ना मेरी, तुम्हारे मुझसे बहुत अच्छा लगता है।

0: और फिर उन दोनों की जिंदगी में एक दोराह आया। दोनों को फैसला करना था कि किस समत जाएं। एक तरफ उनके अपने जज्बात और दूसरी तरफ माँ बाप के अरमान। फैसला बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्हें फैसला करना ही पड़ा।
1: एक तरफ माँ बाप और दूसरी तरफ तुम। मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तुम बताओ अमित, मैं क्या करूं?
2: मेरे ख्याल में तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए।
1: तुम मुझे भुला दोगे?
2: जिस दिन तुम्हें भुला दूंगा, अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा।
1: कैसे गुजारेंगे जिंदगी?
2: तुम एक अच्छी पत्नी बनोगी, मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा।
1: एक वादा करोगे?
2: अच्छा तो यह है कि कोई वादा न करे।
1: मैं अपना अधिकार मांगती हूं। तुम शायरी नहीं छोड़ोगे?
2: शायरी कुछ ऐसे तो नहीं होती जैसे कोई मकान बनाता है, ईंट पत्थर सीमेंट गारा इकट्ठा करता है।
1: लेकिन लिखोगे तो मेरे दिल का कोई हिस्सा मुस्कुराता रहेगा।
2: पूजा।
1: हाँ अमित।
2: शायद तुम्हारा नाम मैं आखिरी बार पुकार रहा हूं।
1: सोच समझ कर फैसला किया ना।
2: ताकि हम अपनी खुशी के लिए अपने मां बाप के अरमानों का गला घोंट दें, उनकी लाशों पर अपने प्यार का महल बनाएं।
1: बस अब कुछ नहीं रह गया पूछने को, कहने को कुछ नहीं।
2: मैंने चांदनी के कुछ फूल इकट्ठे किए हैं, मेरी पहली किताब। सोचा था अपने प्यार का तोहफा समझकर तुम्हारी नजर करूंगा। क्या पता था वक्त के साथ साथ ये तुम्हारी शादी का तोहफा बन जाएगा।
0: इस तरह दोनों की राहें अलग हो गईं। पूजा ने एक आर्किटेक्ट विजय खन्ना से शादी कर ली और मिसेज विजय खन्ना हो गई।
3: मेरी तरफ से शादी का ये तोहफा कबूल कर लो। खुद शायर होता तो तुम्हारे लिए किताब लिखता। शायरी मेरी कमजोरी है, खासतौर पर ये शायर और इसकी नज़्म। कभी कभी ऐसा लगता है शायर का हर लफ्ज उसके दिल से निकला।

0: अगर मैं अपने चेहरे का ये पोस्टर दिया सीधे रिसेप्शन डेस्क चला जाऊं और उस बनी ठनी लड़की से कहूं गुड मॉर्निंग मिस, तो वो क्या कहेगी?
1: बेशर्म कहेगी। चलिए उठे ना, दिन चढ़ा है।
0: लोग तो कहते हैं हनीमून कभी सूरज नहीं निकलता, हमेशा रात रहती है।
1: पागल हुए बोलो।
0: और अगर सूरज माशा निकल भी आए तो आदमी आंखें बंद कर ले और फिर वही रात की रात।
1: और कोई काम नहीं है क्या आपको?
0: नहीं, हनीमून मीन्स लव, जस्ट सिंपल लव। एंड डार्लिंग, लव इज लाइफ। पता है शादी से पहले मैं सोचता था कि आदमी को शादी कभी नहीं करनी चाहिए, बस बस बड़ा इश्क कर ले आदमी। लेकिन उनसे शादी करने के बाद मेरी जिंदगी फिलोसफी बदल गई। शादी मीन्स बैंक अकाउंट, जब चाह चेक कैश करा लिया।
1: बैंक में प्यार की कैश भी जमा करानी पड़ती है, नहीं तो कभी कभी चेक वापस लौट आता है।
0: वही तो कर रहा हूँ सुरत।
2: और अमित अपने दिल के अंधेरों में गुम हो गया और शेर शायरी छोड़कर गुमनामी की जिंदगी बसर करने लगा, क्योंकि उसे पूजा के बिछड़ने का गम था। लेकिन पूजा अपनी पिछली जिंदगी को भूलकर एक हिंदुस्तानी औरत की तरह अपने शौहर की दिलजोई और खुशनूदी में गुम हो गई। उसके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम विक्की रखा गया। विक्की बचपन से ही शरीर और खिलंडरा था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसकी मुलाकात पिंकी से हुई और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे।

एक दिन पिंकी को मालूम हुआ कि जिन्हें वो अपने माँ बाप समझे हुए थी वो उसके माँ बाप नहीं है। इस खबर से उसे बहुत धक्का लगा और वो अपनी असली माँ से मिलने के लिए देहरादून चली गई। देहरादून पहुंचकर उसे पता चला कि उसकी माँ उसे अपनी बेटी मानने के लिए तैयार नहीं है। उसकी माँ यानी अंजू ने कसदन और मसलहतन पिंकी को टका सा जवाब दिया था। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि अमित पर यह राज फाश हो कि उसकी स्वीटी के अलावा भी कोई और बेटी है। दरअसल ये राज अंजू के माजी से वाबस्ता था। अंजू एक नौजवान पायलट से मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से एक हवाई हादसे में उसकी मौत हो गई। बदनामी के डर से अंजू ने पिंकी को जन्म देने के बाद दिल्ली के एक डॉक्टर आरपी कपूर को दे दिया था और पिंकी उन्हीं के घर पल बढ़कर जवान हुई थी। अंजू ने बाद में शिकस्ता दिल अमित से शादी कर ली थी और इस तरह स्वीटी उसकी दूसरी बेटी थी।

0: दिन की बड़ी उम्मीदें लेकर अपनी माँ के पास आई थी, लेकिन माँ के रवैये से उसका दिल टूट गया।
1: मैं अपनी माँ को माँ कह सकती हूँ? नहीं, अभी नहीं।

0: तुम्हारे आंसू बता रहे हो तुम मुझे याद करके बहुत रोई हो।
1: प्लीज रुकिए।
0: मेरी आंखें तुमसे कुछ नहीं कह रही, समझ नहीं सकती, तो कम से कम इतना तो पूछ लो मैंने अपना सफर कैसे तय किया।
1: मैं बहुत परेशान हूँ।
0: मुलाकात हो गई माँ से ना?
1: तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था विकी, आ गए हो तो मिलोगे नहीं, और अगर मिल गए तो पहचानोगे नहीं। तुम जानते हो कि मेरा एक पास है जिसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है।
0: कहा था बुझी हुई आग को हवा नहीं देते, राख उड़ती है। मैं भी यहां पतंग उड़ाने नहीं आया हूं। अब देखो विकी का फॉर्मूला 44।
2: पिंकी चूंकि खुद बुरी तरह परेशान थी इसलिए उसने विक्की की तरफ बेतवज्जोही का इजहार किया, और विक्की ने अपनी इस तजहीक का बदला लेने का फैसला किया और पिंकी के सामने ही सुईटी से इश्क की पींगे बढ़ाने लगा।
3: तेरा फूलों जैसा रंग, तेरे शीशे जैसे अंग, पड़ी जैसे ही नजर में तो रह गया दंग।

0: किसी तौर चाहे चले छुरिया, ये न होगा किसी तौर चाहे चले छुरिया।
1: अमित एक बात बताओ, तुमने लिखना हमारी वजह से बंद तो नहीं कर दिया? मैं स्वीटी, हमारी घर गृहस्थी, जब भी मैं सोचती हूँ मेरा दिल भारी सा हो जाता है, अपने आप को दोषी समझने लगती हूँ।
2: अंजू ये ख्याल

0: अपने दिल में कभी मत लाना कि मेरी इस हार इस शिकस्त का कारण तुम हो। शायद मेरे दिल का कोई हिस्सा मर गया है।
1: मैं दवा नहीं बन सकती अमित।
0: सोचता था दर्द ही दवा बन जाएगा।
1: ये भी तो हो सकता है कि दर्द को दर्द ही न समझो। अच्छी बुरी बीती हुई कोई घटना, कोई हंसता हुआ सब अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो उसे।
0: लाख कोशिश की अंजू, फिर सोचता हूं जिंदगी में सबको सब कुछ तो नहीं मिल जाता। जाने दो, सो जाओ।

0: क्या तुम स्वीटी से प्यार करते हो?
1: तुम्हारा क्या ख्याल है?
0: मेरे ख्याल में तुम नाटक कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो, और जानते हो लोग क्या सोच रहे तुम्हारे बारे में? वो तुम्हारी शादी स्वीटी के साथ करने का सोच रहे हैं।
1: शादी पर आओगी ना?
0: गॉड डैम यू, बी सीरियस। किसी की जिंदगी का सवाल है
1: तो इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ पिंकी बोलो। सब कसूर तुम्हारा है पिंकी। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं 1100 मील दूर यहाँ पत्थर तोड़ने आया था, घर बार छोड़ के स्वीटी से मिलने आया था? तुम बताओ पिंकी, तुम्हारे यहां से कौन खुश है? तुम खुश हो? मैं खुश हूं? तुम्हारे माँ बाप खुश है या तुम्हारी ये नई माँ खुश है तुम्हारे आने से? समेट लो अपनी माँ की ममता जितनी चाहे समेट लो पिंकी। अभी अमित साहब को पता नहीं चला ना, ये चुपड़ी चुपड़ी बातें, ये लाड प्यार सब नफरत में बदल जाएगा, नफरत में। और इस सब फसाद की जड़ तुम हो पिंकी, तुम।
0: कसूर मेरा है, तुम मुझसे बदला लो। किसी मासूम बेगुनाह की जिंदगी क्यों खराब करते हो? इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम किसी के घर में आग लगाओ? जिन लोगों ने तुम्हें सहारा दिया, विश्वास किया, घर में अपना आदमी समझ कर रखा, उसका बदला ये चुका रहे हो कि उनकी बेटी कल तुम्हारी झूठ की वजह से जान दे दे, क्या जहर खा ले?
1: तुम जिसे झूठ कहती हो वो सच भी तो हो सकता है विकी।
0: आई डिफाई यू विकी। हिम्मत है तो जाकर कह दो कि तुम स्वीटी से शादी करना चाहते हो।
1: तुम जानती हो मेरी जिंदगी की एक ही कमजोरी है, उसका फायदा ना उठाओ, उसका मजाक ना उड़ाओ, वो तुम हो तुम पिंकी।
2: उन्हीं दिनों विजय खन्ना अपनी बीवी पूजा के साथ अपने किसी कारोबारी काम के सिलसिले में देहरादून आया। यहाँ अमित विजय से मिलने उसकी कायमगाह पर पहुंचा तो पूजा से मुठभेड़ हो गई। अमित और पूजा अभी गिले शिकवे ही कर रहे थे कि विजय खन्ना वापस आ गया और एक ओट में खड़े होकर दोनों की बातें सुन ली।
3: बैठोगे नहीं?
2: कहाँ?
3: वो तैयार हो रहे हैं, उन्हें तैयार होने में मुझसे ज्यादा वक्त लगता है। तुम कैसे हो?
2: बस जिंदा हूं।
3: बस?
2: बस और क्या?
3: खुश हो?
2: दुनियादारी के पैमाने से देखो तो काफी खुश हूं। कैसी हो पूजा?
3: मेरा क्या है अमित, जिस तरह तुमने चाहा उसी तरह जी रही हूँ। अपना पति, अपना घर, अपना बच्चा, यही मेरी दुनिया है। मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। एक है, तुमने अपना वादा नहीं निभाया।
2: शेर कहने का मैंने वादा तो नहीं किया था,
3: लेकिन मैंने तो कहा था, इसरार था मेरा कि अगर तुम लिखोगे तो मैं तुम्हारे दिल के किसी हिस्से में जीती रहूंगी।
2: मेरे दिल का वो हिस्सा कमबख्त मेरा कब था? ये पूजा की जिंदगी का वो मोड़ था जहां अगर विजय चाहता तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। विजय की जगह अगर कोई दूसरा इंसान होता

अपनी बीवी को बच्चलन समझकर उसे तलाक दे देता, लेकिन विजय ने ऐसा नहीं किया। वो पढ़ा लिखा, जहीन और फराखदील इंसान था। वो ये भी जानता था कि शादी के बाद पूजा ने उसे हर किस्म का सुख दिया और उसका हर वो हक अदा किया जिसका वो हकदार था। बल्कि उसके दिल में पूजा के तई और भी इज्जत पैदा हो गई कि पूजा ने अपने शिकस्त दिल के संग्रेजों से उसकी इज्दवाजी जिंदगी को बचाए रखा। दिल में दर्द था, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट और होठों पर कहकहे थे। पूजा का ये इशार यकीनन काबिले सताइश था और विजय ने इसका एतराफ भी किया। दूसरी तरफ जब स्वीटी को यह मालूम हुआ कि विक्की उसका नहीं है बल्कि पिंकी का है, तो उसे सदमा हुआ और वो खुदकुशी करने की गरज से एक घने जंगल में चली गई जिसमें आग लगी थी। और बिलाखिर अमित, विजय और विक्की ने अपने अपने तौर पर दौड़ धूप करके स्वीटी को बचा लिया और फिर गलतफहमियां दूर हुई और विक्की की पिंकी से शादी हो गई।

ताकशा प्रोग्राम के तहत सामने भी आप सुन रहे थे फिल्म कभी कभी की कहानी, नगमे और डायलॉग। इसे प्रतिभा थे जनाब सरफराज अहमद ने पेश कर रहे थे एस एम शफीक। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 71 किलो हर्ट्स, मोबाइल एप न्यूज ऑन एयर और डीडी फिर डिश पर। फिल्मी नगमे प्रोग्राम की पहली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में गोपी फिल्म का ये नगमा। नगमा निगार राजेंद्र कृष्ण, मौसीकार कल्याण जी आनंद।

एक वजीर आजम शेख हसीना ने कहा है कि वो जान से मारने की धमकियों के बावजूद इस साल के आखिर तक बांग्लादेश वापस लौट जाएंगी। और फीफा वर्ल्ड कप में लॉस एंजेलिस में खेले गए पहले नॉकआउट मैच में कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बहादुरी से मुतालिक 2026 की दीफा की दूसरी तकरीब में बहादुरी इनामात अता करेंगी। वह दिफाई अफवाज, मरकजी मुसल्ला पुलिस दस्तों और रियासत व मरकज के जेर इंतजाम पुलिस के अमले को बहादुरी के इनामात अता करेंगी। ये इनामात मुसल्ला दस्तों, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज और दीगर हिफाजती एजेंसियों के अमले के बहादुरी के गैर मामूली कारनामों को तस्लीम करते हुए दिए जाते हैं। इन इनामात से पूरे जम्मू कश्मीर, शिमाल मशरक और मुल्क की सरहदों पर दहशतगर्दी, शोरिश पसंदी और मुखासिमाना धमकियों की रोकथाम के लिए भारत की लगातार जद्दोजहद की अक्कासी होती है। नीस एविएशन, समुद्री कार्रवाइयों और इंसानी हमदर्दी वाले मिशनों में गैर मामूली हौसले के इकदाम उजागर होते हैं। सदर मुर्मू ने इससे पहले इस तकरीब के पहले मरहले में भी बहादुरी इनामात अदा किए थे। ये तकरीब राष्ट्रपति भवन में इस माह की 8 तारीख को मुनक्किद की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के अपने दौरे के तीसरे दिन आज विक्टोरिया में नवा शक्ति बुनियादगढ़ मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां भारत नजाद अफराद से मुलाकात भी की। बाद में वज़ीर-ए-आज़म ने पीस पार्क में वाक महात्मा गांधी के मुजस्मे पर गुण-ए-अकीदत नजर किये। जनाब मोदी सेशल्स का अपना 3 रोजा कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद भारत रवाना हो गए हैं। कल वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सेशल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर वहां के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की थी। जनाब मोदी ने इस तकरीब में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की थी। इस तरह वो भारत के पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्हें ये एजाज दिया गया। जनाब मोदी सेशल्स के सदर पैट्रिक हरमीनी की दावत पर हफ्ते के रोज सेशल्स पहुंचे थे। वजीर खारजा एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और मॉरिशस के वजीर आजम नवीन चंद्र राम गुलाम भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को माहौलियाती तहफ़ और पायदार तरक्की के शोबे में क़यादत पर सेशल्स के आला तरीन अवार्ड गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से भी नवाजा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सेशल्स की कौमी असम्बली से भी खिताब किया, जहां उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सेशल्स और भारत ऐसी दुनिया के कायम के ख्वाहिशमंद हैं जहां तरक्की के फायदे सबको हासिल हों और जहां बैन-अल-अक़वामी इदारों में असर हाजिर के अकायद की अक्कासी होती हो। कॉमर्स और सनअत के वजीर पीयूष गोयल बरतानिया के अपने दौरे के बाद यूनान के एथेंस के लिए भारत के एक आला सतही कारोबारी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। इस वफ़द की तवज्जो तजारत, सरमायाकारी और स्ट्रेटेजिक मुआशी इश्तराक को मुस्तहकम बनाने पर मरकूज रहेगी। तजारत और सनअत की वजारत ने बताया कि यूनान के इस दौरे के दौरान मजकूरा वक्त एथेंस स्टार्टअप्स बिजनेस इंक्यूबेटर्स में होने वाली प्रेजेंटेशंस और स्टार्टअप से मुतालिक तजावीज के प्रोग्राम में शिरकत करेगा। ये वक्त यूनान के दौरे में मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के शोबे में दोनों ममालिक के दरमियान इश्तराक कर सकेगा। सानवी तालीम से मुतालिक मरकजी बोर्ड CBSE ने आज जबानों से मुतालिक नई गाइडलाइन जारी की है। बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि 10वीं जमात के मौजूदा बैच के तलबा इस नई पॉलिसी से मुस्तस्ना हैं। बोर्ड ने मजीद कहा कि 7वीं, 8वीं और 9वीं जमात के तलबा जब 10वीं जमात में पहुंचेंगे तो वो भी 3री जमात में बोर्ड इम्तहान देने के मजाज नहीं होंगे। CBSE ने यह भी कहा है कि 7वीं, 8वीं और 9वीं जमात के वो तलबा जिन्होंने पहले ही 2 गैर मुल्की जबानों का इंतखाब किया है उन्हें 1 मादरी जबान के इंतखाब की इजाजत होगी। जम्मू कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी। इस यात्रा के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने बताया कि हिफाजती इंतजाम काफिले के आगे बढ़ने और यात्रा बाकायदा शुरू होने से पहले तमाम तरकार तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज एक मुकम्मल मश्क अंजाम दी गई। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका और ईरान कतर की राजधानी दोहा में इस बात पर रजामंद हो गए हैं कि एक दूसरे के खिलाफ हमले रोक दिए जाएं और कल से बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए।
इस कदम का मकसद कई दिन से जारी इस फौजी कार्रवाई को रोकना है जिसकी वजह से जंगबंदी को खतरा लायक हो गया था और अब नए हुरमुज से मुतालिक तनाजे को हल करना

0: है। ये ऐलान अब नए हुरमुज के आसपास कई हमलों के बाद किया गया है। अमरीका ने ईरान पर इल्जाम लगाया था कि उसने तिजारती जहाजों पर हमला करके जंगबंदी के खिलाफ वर्जी की है, जिसके बाद उसने ईरान के फौजी ठिकानों पर हमले किए। इधर ईरान ने बहरेन और कुवैत में अमरीकी फौजी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए। दोनों ही मुल्कों की तरफ से मजीद कशीदगी पैदा हो जाने के तई नए सिरे से खबरदार किया गया है। एक अमरीकी अफसर ने बताया कि अब तक दोनों ही मुल्क एक दूसरे पर हमला करने से बाज रहेंगे और मुजाकरात के दौरान इन जहाजों की बिना रुकावट आमोदरफ्त जारी रहेगी। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना ने कहा है कि वो इस साल के खत्म होने से पहले बांग्लादेश वापस लौट जाएंगी। उन्होंने कहा कि अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों, सजाए मौत और अवामी लीग की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद किए जाने के बावजूद वो ये कदम उठाएंगी। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने अपने खिलाफ मुकदमात को सियासी अगराज पर मबनी करार दिया और मौजूदा हुकाम पर इल्जाम लगाया कि वो बांग्लादेश के सियासी मंजरनामे से अवामी लीग का वजूद खत्म करने के लिए अदलिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहतरमा हसीना का बयान ऐसे वक्त सामने आया है कि जब अवामी लीग ने अपना 77वां जौम तासीस मनाया, हालांकि इसकी सरगर्मियों पर मूलगिर पाबंदी आयद है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 10 मुलजिमान की अदालती तहवील में 11 जुलाई तक तौसी कर दी है। ये तफ्तीश जांच से मुतालिक मरकजी एजेंसी सीबीआई कर रही है। मुलजिमान को उनकी साबिका अदालती हिरासत की मियाद पूरी होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले 15 जून को राउस एवेन्यू अदालत ने 10 मुलजिमान की अदालती तहवील में आज तक की तौसी कर दी थी। सीबीआई ने अब तक इस मामले में 13 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है और वो एक मुबैना नेटवर्क की तहकीकात कर रही है, जो इम्तहान से पहले नीट यूजी के सवालनामे की खरीदारी में मुलविस थे। वेनेजुएला कौमी असम्बली के सदस्य जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि दो ताकतवर जलजलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 1450 तक जा पहुंची है। वेनेजुएला में ये जलजले बुध के रोज आए थे। इन जलजलों की शिद्दत 7.2 और 7.5 थी। जनरल रॉड्रिक्स ने मुल्क में इमरजेंसी की ताजा तरीन सूरत हाल बताते हुए कहा कि वेनेजुएला में इन जलजलों के बाद हल्के से औसत दर्जे के 430 झटके भी महसूस किए गए। फीफा आलमी कप के नॉकआउट मरहले में अमरीका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त दी। ये कनाडा की किसी फीफा आलमी कप के किसी नॉकआउट मुकाबले में सबसे पहली जीत है। अब 4 जुलाई को सनेचर को रोज होने वाले मुकाबले में उसका मुकाबला नीदरलैंड्स या मराकश की टीम से होगा। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बहादुरी से मुतालिक अवार्ड पेश करेंगी। मरकजी वजीर पीयूष गोयल यूनान की राजधानी एथेंस में आला सतह के एक कारोबारी वक्त की क्यादत कर रहे हैं। अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोकने और कल से बातचीत दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। और बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना ने कहा है कि वो जान से मारने की धमकियों के बावजूद इस साल तक बांग्लादेश वापस लौट जाएंगी। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सभी शाम के 5 बजे चाहते हैं यहां हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम बराबर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार। आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस तेंदी ए पंजाबी सेवाएं शाम दे 5 बजे ने हम साड़ी दूजी सभा शुरू होंगी है। हम तुसी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दी कल प्रसारित हुए मन की बात का सराहकीय तर्जमा

0: समाप्त फरमाओ।
1: यह आकाशवाणी दी विदेश प्रसारण सेवा दी सिरायकी प्रसारण सेवा है। आओ सुनते हां प्रधानमंत्री दी मन की बात दी 135वीं कड़ी दा सिरायकी अनुवाद। अनुवाद करता है गीता कटारिया। मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात विच एक बार बाल तुसा सबनी नाल जुड़ के मेकू ढेर आनंद थींदा पे। 2026 दा अद्धा साल बीतण आला है। इन्हां 6 महीनियां विच असा मन की बात विच देशवासियां दी कई उपलब्धियां उत्ते चर्चा कीती है। जून विच भी देश ने कुछ अजिहियां उपलब्धियां हासिल कीतियां हन जिहड़ी हर देशवासी को गर्व नाल भर देनियां हन। इहो कामयाबियां देश दी सुरक्षा ते आत्म निर्भरता नाल जुड़ियां हन। हाल ही विच मेको कोलकाता विच नौसेना नाल जुड़े एक कार्यक्रम विच शामिल थीवण दा मौका मिलिया। उत्थां INS दुनागिरी INS संशोधक ते INS अग्रय को भारतीय नौसेना दे वेड़े विच शामिल कीता गया। इन्हां शिप्स दी डिजाइन ते मैन्युफैक्चरिंग ताई सब कुछ स्वदेशी है। साथियों जून दे महीने विच ही एविएशन सैक्टर विच भी देश को एक वड्डी कामयाबी मिली है। C-295 ए विमान मेड इन इंडिया है ते C-295 विमान ने पहली उड़ान पूरी कीती है ते एज 40 विमान भारत विच ही बनाए वेंदे पए। इन्दे कोलू MSME ते एरोस्पेस सैक्टर को नवी ताकत मिलदी पई है। रोजगार दे अवसर वधदे पए। ए आत्मनिर्भर भारत दा संकल्प भी मजबूत थींदा पए। इन महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स दा भी सफल परीक्षण किया है। इनको DRDO दी लैबोरेटरीज ते इंडियन इंडस्ट्रीज पार्टनर्स ने मिलके बनाया है। यानी आज समुद्र तो घेर के आसमान तक साडा भारत बहु सुरक्षित ते आत्मनिर्भर बनता पे। साथियों जून विच एक ब्याह आयोजन थिया है जिंदे विच पूरी दुनिया भारत दे प्रयासा नाल जुड़ी ते एक कार्यक्रम है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। ही वार दुनिया दे 2500 तो भी ज्यादा जगावा उत्ते योग दे कई वखो वखो कार्यक्रम थे। साडे देश विच करोड़ा लोका ने जा जाते योग कार्यक्रम विच हिस्सा लिता। ही महीने अहमदाबाद विच आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप दी भी बहुत चर्चा थी। हिन्दे विच भारत ने कुल 114 पदक जीते हैं जिंदे विच 102 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। भारत ही चैंपियनशिप दी पदक तालिका विच पहले नंबर ते रहा। मैं सारे विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देंदा हां। साथियों किसी भी राष्ट्र दी रूह हुंदे लोग हुंदे ते जदन हुं देश दे लोग कोई संकल्प लैंदे हैं तो कोई भी ताकत उन्हां को अपने लक्ष्य तो डिगा नहीं सकती। राष्ट्र निर्माण विच जन भागीदारी दी इह ताकत भारत दी बहुत वड्डी पूंजी है ते ही जन भागीदारी दा असा वार वार अनुभव करेंगे पए हां। साथियों पश्चिम एशिया विच बनी जंग दी सूरत हाल को देखते हुए मैं देशवासियों को कुछ आग्रह किते हन। मैं आख्या है कि जिथा तक मुमकिन थेवे कुछ वेले किते गोल्ड सोना गिनण तो बचो। लोका को आखे कि प्रदेश विच छुट्टियां मनावण तो बचो। मैं लोका को कार पुलिंग को भी वधावा देवण दी अपील कीती है। मैं किसाना को केमिकल तो मुक्त खेती कीते खेत बचावण कीते ते कुदरत खाद ते कुदरती खाद दा ज्यादा तो ज्यादा इस्तेमाल करण दा आग्रह कीता है। साथियों मैं देश दे हर नागरिक दा शुक्रगुजार हां कि मेरी अपील दा उन्हां ने ना सिर्फ साथ दित्ते बल्कि हर पासे तो हुंदे विच अपना सहयोग करेंदे पए हन। मेको कई परिवारां ने अपने संदेश भेज के अपने अनुभव साझा कीते हन। कितने ही परिवारां ने तय कीता है कि घर दे व्याह विच ही वार सोना कहना गिनसू। जरूरत पई तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नवे गाने बनवा लेंसू। कितने ही लोका ने सोशल मीडिया उत्ते ए भी लिखा है कि किवें उन्होंने ही वार प्रदेश यात्रा को टाल दिता है। साथियों कार पुलिंग को घेर के भी लोगों ने बहु अनुभव साझा किते हैं। जेडे लोग हर जी एक ही पासे अपनी अपनी गड्डी ते वेंदे हन ओ हुण कठे बनन लग गए। लोकी हर मुमकिन बस ते मेट्रो दा इस्तेमाल करेंदे पए हन। हिंदे तो पेट्रोल ते डीजल दी बचत थींदी पई है। ही तरह देश दे वखो वखो हिस्सियां विच कुदरती खाद दी खपत वधण दी खबरां आंदे पए हन। साथियों मेको ही गल दी खुशी है कि ग्लोबल क्राइसिस दा असां भारतीय मिल के मुकाबला करेंदे पए हां। मेको यकीन है जन भागीदारी दी इहो ही ताकत साकू मजबूती देसी साकू कामयाब बणी सी। मेरे प्यारे देशवासियों साडे देश विच जन्म दी शादी व्याह पारिवारिक कार्यक्रम हो

Thank you.

जी सामिन, इसी सिलसिला सोगत दे वारिस जिस विच तुसी शिव कुमार बटालवी दी रचना महेंद्र कपूर, नुसरत फतेह अली खां, जगजीत सिंह ते चित्रा सिंह दीआं आवाज़ां सुनी। ते सामिन अगला सिलसिला तैयार बर तैयार है। सिलसिला है एक गुलकार। एक गुलकार दे तहत अज सुनवाउण जा रहे हां कमल हीर दी आवाज दे विच कुछ नगमे।

0: फर्स्ट यू मस्ट एग्री, समझी? हुण इदा कर, एक आज्ञाकारी धी बन के तू एहो ही कह कि मेनू मंजूर है, जे उस कोई कमी ना होई ता। हुण तू इदा कर, मेनू कहना उस मुंडे दे पिंड दा नां ते बायोडाटा दे दे, फिर देखी अपनी दीदी दा कमाल। वैसे हुण तू बेफिक्र होके सौ जा, ते उस सुरूप सिंह दे पोते दे सुपने देख।
1: ठीक है दीदी।
2: कैनेडा दी पक्की वसनीक हो गई सी, उत्ते मापिया दा दबाव वध गया सी। मुंडे वाले भी रिश्ते दी गल अगे वधाउण लई जोर ला रहे सी। सिमरजीत कौर दी मां हरबंस कौर हर रोज सवेरे उस नूं फोन खड़काउण लग पई। एक दिन उसने फोन किया तो सिमरजीत ने इस तरह जवाब दिता।
0: हे माता, तुहाडे पैर क्यों लूह होई जांदे ने? तुहाडी पसंद दी रिपोर्ट तां हथ आ लवे। जे मैं एहो जी हुंदी ना तो हुण नूं तुहानूं व्याह करा के दस दी, फिर मैं तुहाडी सलाह क्यों पुछदी? तुसी मेरे सके मापे होके मेरे ते शक करी जांदे हो। इह तां असीं मन्नदे आं तीए, टीवी ते अखबारा च आउंदिया कन्न पाड़ू खबरां नहीं सानू टिकन दिंदिया।
3: ओ मां मां, आपे कहनी हुंदी है, आखिर पंजे उंगलां इक्को जिहियां नहीं हुंदियां, कुछ कुड़ियां परमाइयां भी जांदियां, सब नू इक्को रस्से ना नरड़ो माता जी, हफ्ता क होर सबर कर लो बस, फिर सट दियो जेड़े खुद सटना है।
2: दिलजीत कौर ने सिमरजीत के मापिया वालों उस लई पसंद किए हुए मुंडे बारे खुफिया रिपोर्ट अपने हथा च कर ली सी, ते उसने ये रिपोर्ट हुण तक सिमरजीत नाल सांझी ना करन दी वजह इस तरह दसी।
0: देख सिमर, जदों आपां सत समुंदर पार करके हजारों मील दूर परदेसा जा बैठे हां, तां आपणे लई मुंडे कितों दे वी हो सकदे आ। सानू जात गोत ते धर्मां दी परवाह करन नालों जिस गल दा बहुता ख्याल रखना चाहिदा है, ओ ए है कि मुंडे च कोई ऐब ना होवे ते हिम्मती ते हौसले वाला होवे। हुण सुन लै तूं ओहदे बारे, जिहड़ा तेरे मां प्यो ने 25 किल्यां दा मालक दस के लभिया तेरे लई, पर उहनां नूं इह नहीं दिता जदों उस नशेई दा अमल थुड़ गया ना, तां उहने इह 25 किले फूकणे नहीं, ते इहनां 25 किल्यां नूं फूकण लगे उहने चिर नहीं लाउणा। दीदी, जे खुफिया रिपोर्ट तुहाडे कोल पहुंच ही गई है तो हुण तक नशर करन नूं गुरेज क्यों कीता जांदा रिहा? सवाल तेरा पायदार है ते 100% जायज भी है। एक्चुअली मैं ये रिपोर्ट जानबूझ के नशर नहीं कीती, क्योंकि मैं सोचती हां कि हो सकदा है इस रिपोर्ट दे फैक्ट्स बारे तेरे मां प्यो नूं किसी होर पासे ही सूह लग ही जावे, ते सानूं ये माड़ी खबर नशर करन दा जहर ना ही पीना पवे। माड़ी खबर सुनाउण च काल नहीं करी दी सिमर।
2: दिलजीत दी रिपोर्ट अनुसार मजकूरा नौजवान लंबा ते पतला है, ते 86 पिछोकड़ वाले बाप दा इकलौता पुत्र है। उस कोल काफी जमीन है, वो नशा करदा ही नहीं थोड़ा बहुत बेचदा भी है। उस दे किसी गैंगस्टर नाल भी संबंध ने। उस दे मुलांकण लई घैंट शब्द अक्सर ही वरत्या जांदा है। सिमरजीत ने दिलजीत दे मुंह ए सब कुछ सुनिया तां उसने अपने कन्न अपने हथी बंद कर लए। उसकी अखां भर भर डुलन लगियां तां दिलजीत बोली,
0: कमॉन सिमर, सुदैनी तू तो शुक्र कर कि तू बच गई है, खुश होना चाहिए तेनू।
2: सिमरजीत रता को संभल गई तो उसने फोन करके अपनी मां नू ए सारी कहानी सुना दिती, ते उसदी मां ने ए सवाल कीता,
0: कुड़िए ए सच्ची सही गल है? तुसी दोवां सहेलियां ने रल के तां नहीं बनाई?
2: दिलजीत ने अपनी भूआ दे पुत्र तों पता करवाया सी। ए सुन के एक बार तां सिमरजीत दा परिवार सुन्न ही हो गया। हुण सिमरजीत ने अपने मापिया नाल नाराज़ होके उहनां नू फोन करना ही छड्ड दिता। एक दिन फोन राही अपनी तरफ दी मां नूं एह कह दिता,
0: मम्मी तुसी

0: भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथिनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफार्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन और रक्षा बलों में उनके समावेशन को सुगम बनाएगा। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ब्रिक्स सीसीआई के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठन को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी भी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। यह वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी पर आधारित औद्योगिक उत्पादन में 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन में 4.9% की वृद्धि हुई है थी। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उप विजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सुलिंग ली यांग से हार का सामना करना पड़ा। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम।
1: तो आज शीतल बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां आपके लिए और अपने किसान बहन भाइयों और युवाओं के लिए लेकर आए हैं हम।
0: जी बिल्कुल, पर श्रोताओं खासकर ध्यान रखें कि जैसे कि मौसम आप देख रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा गर्म है, लू चल रही है, मेरा खुद का भी गला खराब है क्योंकि ठंडा गर्म हो जाता है, मुझे भी हो गया है। आपको ख्याल रखना है खासकर, और इस समय जो आपको सेवन करना है ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, और क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम एक बार गर्मियों में खाना हम कम खाने चल जाएगा लेकिन पानी हमें प्रचुर मात्रा में चाहिए ही चाहिए, चाहे वो हम पानी पिए या जूस पिए या कोई भी हम तरल पदार्थ लें। और ऐसे में क्या होता है, जो हमारी प्रकृति ने हमें सब्जियां दी हैं गर्मियों में, ऐसी सब्जियों का सेवन करें जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। तो फिर आज हम बात करेंगे अपने श्रोताओं के लिए कि ग्रामीण युवा किस प्रकार बात करें।
1: और आज हम आपको बताने वाले हैं अर्बन फार्मिंग और टेरेस

0: फार्मिंग के बारे में कि कैसे छोटी सी जगह में हम अपनी आवश्यकता के या बिक्री के लिए थोड़ी बहुत सब्जी फलों का उत्पादन किया जा सकता है, इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ ग्रामीण युवाओं के लिए शहरी क्षेत्रों में सब्जियों की कैसे व्यवस्थित तरीके से व्यावसायिक उत्पादन किया जा सकता है, इस पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनंत कुमार।
1: ये बिल्कुल आप वैज्ञानिक हैं केवी के बागपत से। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार
1: जी। बिल्कुल सर, अब सर बताएं कि कौन कौन सी सब्जियां हैं जो व्यवसाय के लिए उगा सकते हैं।
2: बिल्कुल, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, हमारे जो पहले आपने शहरी और फार्मिंग की बात की है, हम शहरों में जो है किस तरह की खेती कर सकते हैं। देखिए, आजकल क्या है, सबको शहरों में ताजी सब्जियां और रसायन मुक्त सब्जियों की आवश्यकता आज बढ़ती चली जा रही है
0: जी।
2: तो ऐसे में जो हमारे छतें हैं, छत पर हम टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, और जो हमारी बालकोनीज है वहां भी हम अपने हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से और अपना जो है मल्टीलेयर फार्मिंग जिसे हम बोलते हैं उसके माध्यम से जो है कर सकते हैं, वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने घर में ही शहरों में जो हमारे छोटे छोटे मकान हैं या छत हैं उन पे जो है हम मल्टीलेयर फार्मिंग या हाइड्रोपोनिक्स के या एरोपोनिक्स के माध्यम से ही ताजा सब्जियां, रसायन मुक्त सब्जियां उगा सकते हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, आप जो बता रहे हैं उसमें जो सीधे खड़े हुए गमले होते हैं उनके अंदर जगह जगह होल से होते हैं और उनके अंदर फार्मिंग होती है, कुछ ऐसी व्यवस्था होती है उसमें?
2: जी जी, वर्टिकल फार्मिंग इसे ही कहते हैं हम, जिसमें जो है हम लेयर में जो है परत दर परत जो है सब्जियां जो है उगाते हैं पाइप के माध्यम से, और इसमें कम जगह में, कम समय में और कम पानी में
0: जी
2: हम ज्यादा ज्यादा सब्जियां जो है वो ले सकते हैं। और इस तरह से जो है हमारे जो एक आपने एक और प्रश्न किया था उसमें आपने पूछा था कौन कौन सी सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें हम संरक्षित कर सकते हैं, जिसे जो है हम अच्छे से संरक्षित रख सकते हैं। तो उसमें अगर हम बात करते हैं डेली यूज में जो सब्जियां ज्यादातर प्रयोग होती हैं, चाहे हमारा टमाटर हो, मिर्च है, आपका बैंगन है, लौकी, तुरई, करेला, ककड़ी, इस तरह की सब्जी जो ज्यादातर ज्यादा यूज में होती हैं, इन्हें हम आसानी से उगा भी सकते हैं और संरक्षित भी रख सकते हैं
0: जी।
1: जी सर, अच्छा शहरों में सब्जियों की सप्लाई का व्यवसाय ग्रामीण युवाओं के लिए क्या लाभदायक हो सकता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही आज की परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही आवश्यक है। जो हमारे ग्रामीण युवक हैं वो रोजगार के लिए शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, पर शायद उन्हें ये ध्यान देना है कि असली रोजगार वो गांव से ही प्रारंभ होता है, और उसके लिए आज शहरों में जो है ताजी सब्जियों की मांग, रसायन मुक्त सब्जियों की मांग वो दिन-दिन बढ़ती चली जा रही है। इसके लिए हर आदमी ये चाहता है शहरों में रहने वाला कि उसे ताजी सब्जियां, रसायन मुक्त सब्जियां अगर मिल जाए तो उसका जो है वो 2 से 3 गुना अधिक दाम भी देने को तैयार है। तो जो ग्रामीण युवक है वो गांव से जो है ताजी और रसायन मुक्त सब्जियों को शहरों में ले जाके, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स में हो, चाहे रेस्टोरेंट में हो, चाहे होटलों में हो, वहां उनकी सब्जियां बेच के जो है वो अच्छा धन कमा सकता है। इसमें जो है जो उपभोक्ता है, जो शहरी आदमी है, उन्हें भी एक लाभ होगा। जो बिचौलियों के माध्यम से जो है वो सब्जी शहरों तक पहुंचती है वो उसमें कई दिन लगते हैं, यहां हम सीधे ही ग्रामीण युवक से के संपर्क में आके ग्रामीण युवक गांव में जो है सब्जियां पैदा कराए, वहां एक समूह बना के वो सब्जियों को ताजी अवस्था में जो है शहर में लेके जाए और डिमांड के अनुसार
0: जी
2: जो डिमांड उन्हें मिलती है उस पे जो है लाके जो है वहां सप्लाई देगा, तो जिससे जो है हम बिचौलियों में जो हमारा ज्यादा पैसा जाता है
0: जी जी
2: वहां से भी हम बच सकते हैं और रसायन मुक्त सब्जियां जो है हमें शहरों में अच्छे से मिल सकती है, और गांव के लिए युवाओं के लिए एक अच्छा रोजगार ये अच्छा साबित हो रहा है।
1: तो सर, क्या कोई ग्रामीण युवा इस व्यवसाय की शुरुआत अगर करना चाहता है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना होगा?
2: बिल्कुल, देखिए जो ग्रामीण युवा है उन्हें किस किस बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली तो बात यह है कि वो जो हरी सब्जियां जो शहर में तक ले जाएगा, हर आदमी फ्रेश सब्जियां, फ्रेश फल

0: फूल, ये सब चीज पसंद करता है, तो उसे सबसे पहले जो है जो वाहन है वो इस तरह का बनाना पड़ेगा जिससे जो है वो शहर तक ले जाने में सब्जी एकदम ताजी बनी रहे, अपने जो थैला है या जो भी वाहन का जिसका इस्तेमाल कर रहा है उसमें इस तरह का रेफ्रिजरेटर वगैरह उसमें रखा होना चाहिए जिससे जो है शहर तक जाने में जो है हमारी सब्जियां जो है वो खराब ना हो,
1: जी ताजी बनी रहेंगी तो ज्यादा मूल्य मिलेगा,
0: ज्यादा मूल्य मिलेगा। दूसरी चीज डिमांड, मैंने डिमांड के अनुसार आज डिमांड जो है वो प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक उत्पाद या जैविक उत्पाद का जो है वो 2-3 गुना ज्यादा अधिक मिल रहा है, तो उसे जो है इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सब्जियां किस माध्यम से जो है शहर तक जाएंगी वो फ्रेश बनी रहे उसका इस्तेमाल उसे ज्यादा से ज्यादा करना है।
1: जी अभी आपने बताया कि वो जो ताजी सब्जियां हैं उनका मूल्य ज्यादा मिलता है, तो वो सब्जियों की गुणवत्ता भी इसमें अच्छी होती है तो और ज्यादा वो मिलता है। ऑर्गेनिक खेती में जो सब्जियां होती हैं उनकी मतलब खाने की जो स्वाद की गुणवत्ता होती है वो अलग ही होती है।
0: देखिए आजकल क्या हुआ है कि आज से 25-30 साल पहले अगर हम बात करें जब घरों में सब्जियां बनती थी तो आप देखिए कि दूसरा तीसरा घर भी ये बताता था कि भाई आपके यहाँ लौकी बनी है, आपके यहाँ फूल गोभी बनी है, आपके यहाँ ये वाली सब्जी बनी है। पर आज क्या हो रहा है कि आज केमिकल जो रसायन जो है इतना ज्यादा इंसेक्टिसाइड फंजिसाइड या फर्टिलाइजर इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ तक कि वैज्ञानिकों की बहुत सारे किसान नहीं सुन रहे हैं, वो अनाधुंध उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, कीट आए या ना आए उसमें जो है इंसेक्टिसाइड फंजिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने जो है जो खुशबू थी तो वो जो है हमारी गायब हो गई है और हम जो है जो उचित सब्जियां हमें मिलनी चाहिए जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है वो शायद आज बहुत सारे किसान नहीं उगा पा रहे हैं। तो इसके लिए भी जो ग्रामीण युवा है उस पर वो तकनीकी आती हैं, जैसे वो अपने गांव में क्या होता है कि गांव में तो बड़े बड़े खेत होते हैं, शहरों में जमीन का अभाव होता है, तो जो शहरों में भी हम ग्रामीण युवक टेरेस गार्डन ग्रो बैक लगा के ड्रिप इरीगेशन लगा के वहां भी जो है शहरी लोगों को वहां अपनी छतों पर उनकी छतों पर करने का तरीका भी बता सकता है और उसे भी करा के जो है वो आय अर्जित कर सकता है।
2: सर जैसे कि आप बात कर रहे थे गुणवत्ता और ताजगी की बहुत बड़ी भूमिका होती है जब सब्जियां पहुंचती हैं शहरों वालों पर, तो क्या इसमें परिवहन और पैकेजिंग और भंडारण की भी क्या कोई भूमिका होती है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे पहले ग्रामीण युवक को ये ध्यान देना है कि भाई मुझे डिमांड कितनी है उतनी ही सब्जी का वो भंडारण करें।
2: जी
0: भंडारण इस तरह से ना करें कि भाई हमें डिमांड जो है 1 क्विंटल की और हम 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल लेकर रख लें तो उसकी गुणवत्ता जो है वो डाउन हो जाएगी, फिर उसकी मार्केट नहीं होगी। तो हमें क्या करना है कि पैकेजिंग आजकल इको फ्रेंडली का जमाना है, ठीक है ना, इको फ्रेंडली जो है पैकिंग होनी चाहिए, साथ ही साथ हाइजीन का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है।
2: जी।
0: इस तरह से पैकिंग की जाए एकदम शुद्ध ताकि जो है वो शुद्धता बनी रहे, उसे खाने वाले बीमार ना हो, इस तरीके से रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जाए ताकि वो ताजी बनी रहे।
2: तो क्या सर देखने में भी थोड़ी सुंदर होनी चाहिए कुछ ऐसी भी पैकेजिंग या फिर बस सिंपल एक पन्नी की तरह कुछ होती है?
0: पैकेजिंग की सुंदरता पे नहीं जाइए, सब्जी की सुंदरता पे जाइए, खाने की ताजगी पे जाइए, उस गुणवत्ता पे जाइए, वो रसायन मुक्त हो उस पे जाइए, ठीक है ना। पैकिंग मैंने कहा हाइजीन होनी चाहिए, पैकिंग ग्रेडिंग के हिसाब से होनी चाहिए, आजकल ग्रेडिंग का टाइम चल रहा है कि एक ही तरह की ग्रेडिंग होनी चाहिए, अगर जिस साइज के फल है जिस साइज के फूल है जो भी है सब्जियां हैं वो एक ही ग्रेड की जो है सब्जियां होनी चाहिए, ए ग्रेड है तो ए ग्रेड, बी ग्रेड है तो बी ग्रेड, सी ग्रेड है तो सी ग्रेड, तो ग्रेडिंग के अनुसार हमारी पैकिंग होनी चाहिए जिसका मूल्य जो है हमें अच्छा मिलता है।
2: तो सर ग्रेडिंग के अनुसार ही मार्केट में सब्जी की बिक्री होती है कि ए ग्रेड की है तो उसके अनुसार आपको उसका
0: मिलेगा। आपने देखा होगा जो अच्छी मार्केट है जो अच्छे खरीदार है वो ए ग्रेड की सब्जियां खरीदेंगे, ठीक है ना, अगर आपने उस पर लेवल लगाया हुआ है कि जैविक उत्पाद है प्राकृतिक उत्पाद है तो उसका लेवल लगा हुआ जो है उसके खरीदार आपको अलग मिलेंगे, बी ग्रेड की जो सब्जियां हैं फल है उसका जो है बी ग्रेड वाले लोग अलग मिलेंगे आपको, वो थोड़ा सा कम कॉस्ट वाले जो कम खर्च करने वाले लोग हैं, सी ग्रेड की सब्जियां हैं तो सी ग्रेड के खरीदार आपको अलग मिलेंगे। तो मार्केट में हर तरह का खरीदार है

0: आप किस क्वालिटी का बेचना चाह रहे हैं वो,
1: मतलब किसी भी किसान को या ग्रामीण युवाओं को नुकसान नहीं होगा, आपको हर तरह का ग्राहक शहरों में मिल जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले ही आपको क्या करना है कि आजकल सोसाइटी में, मल्टीप्लेक्स में, आपके रेस्टोरेंट में पहले ही डिमांड लेनी पड़ेगी
2: जी।
0: अगर आप पहले से डिमांड नहीं लेंगे तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि फिर आप ऐसे घूमते रहेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो पहले से आपको डिमांड लेनी है और डिमांड के अनुसार आपको सप्लाई देनी है।
1: तो सर क्या इसके लिए भी कोई ट्रेनिंग होती है? इस पे हम बात करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले अपने भाइयों का करवाएंगे मनोरंजन और सुनेंगे राजेंद्र जाटक के आज में एक उपदेश।

0: सभी अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र जाटव को, और हम अर्बन फार्मिंग की और टेरेस फार्मिंग की खास बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी जानकारी डॉक्टर आनंद कुमार ने हमें दी है, लेकिन अभी और भी जानकारी आपके साथ साझा करनी है। तो शीतल, आप भी अच्छी अच्छी सब्जियां खाती होंगी, तो आपको कभी इस विषय की याद आई कि भाई मैं भी थोड़ी बहुत खेती वेती कर लूं छत पर?
1: लेकिन अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कर लेना चाहिए, फायदा होगा
0: जी। डॉक्टर साहब आए हैं तो उनसे पूछ लो जो भी पूछना है।
1: तो सर ये बताएं कि हम बात कर रहे थे कि फार्मिंग के बारे में, क्या सरकार या विभिन्न संस्थाओं द्वारा इस प्रकार का कोई व्यवसाय अगर हम करते हैं तो कोई ट्रेनिंग या कोई लोन या कोई सहायता सरकार हमें देती है ये अर्बन फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग को लेकर?
2: जी जी बिल्कुल, बहुत बड़े बात आपने पूछा है।

0: देखिए, जब हम अर्बन फार्मिंग की बात कर रहे हैं, शहरी खेती की बात करते हैं, तो उसमें हम बात करते हैं आपका टेरेस गार्डन की, उसमें बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स की, उसमें बात करते हैं एरोपोनिक्स की, उसमें बात करते हैं हम वर्टिकल फार्मिंग की।
1: सर, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। आपने सर दो तीन बार ये शब्द इस्तेमाल किया, हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स वगैरह, वो क्या है सर, एक बार हमारे श्रोताओं को?
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हाइड्रोपोनिक्स जो है वो कम क्षेत्रफल में पाइपों के माध्यम से उसमें केवल पानी और जो पोषक तत्व हैं वो मिला के जो है चलाए जाते हैं, जिसमें जो है जो पौधे को खड़ा करने के लिए हम कोकोपीट और परकोलाइट का इस्तेमाल उसमें करते हैं। इसमें बस पानी में पोषक तत्वों को हम चलाते रहते हैं, अलग से और कुछ नहीं डालते, मीडिया इसमें और इसमें नहीं इस्तेमाल करते। और ये हम अपने घरों की छतों में या बालकोनी में ये पाइपों के माध्यम से पूरा जाल बना लेते हैं, और उसी में जो है आप जो है जो सीजन की जो सब्जियां हैं वो बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एकदम ताजी सब्जियां अपनी बालकोनी में से लीजिए, और उसमें रसायन मुक्त सब्जियां बड़े आसानी से उगाई जाती हैं, और शहरों में इसका चलन बहुत तेजी के साथ, आधुनिक तकनीकी का चलन जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसी तरीके से वर्टिकल फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग में मैंने बताया कि इसमें जो है लेयर्स है, मतलब परत दर परत जो है हम अपने घरों में जो है या छतों पर जो है इस तरह का ढांचा तैयार करते हैं या रैक लगा लेते हैं, और रैक में जो है अपना गमला ये इस तरह से रख लेते हैं या पाइपों में वर्टिकल फार्मिंग करते हैं। तो जिस तरह का भी डिजाइन है आपको तैयार कराना है तो उस तरह का हम तैयार करा के इसमें हम सब्जियां बिल्कुल ताजा सब्जियां रसायन मुक्त सब्जियां जो है उगा सकते हैं। इसमें एक विधि मैंने और जिक्र किया है जिसमें मैंने बात की एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स में क्या होता है कि इसमें बिल्कुल जो है हम किसी चीज का भी इस्तेमाल नहीं करते, बस न्यूट्रिएंट जो पोषक जो तत्व है पौधे को जो 16-17 पोषक तत्व दिए जाने हैं उसमें पौधे को एक बॉक्स में जो है उसकी जड़ें लटका दी जाती हैं हवा में, और वहां जो है भाप के द्वारा फोक के द्वारा जो है वो पूरे पोषक तत्व दिए जाते हैं, जिससे पौधा जो है जड़ों के माध्यम से ले लेता है। और इसमें जो हम आलू की खेती है वो बड़े आसानी से करते हैं, और इसके साथ जो आपका पत्ते वाली जो सब्जियां हैं उसे भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
1: जी सर, एक सवाल और मेरा यह है कि अगर ये कोई युवा है, ग्रामीण युवा है, कोई मिलकर किसान उत्पादक संगठन जो कि MP होते हैं या क्या किसी समूह के रूप में कार्य करे, तो क्या उसे अलग से कोई लाभ मिल सकता है?
0: देखिए, बिल्कुल, ये बहुत ही आवश्यक प्रश्न है इस आज के बातचीत का। देखिए, इसमें क्या है कि जो हमारे ग्रामीण युवक हैं वो अगर किसान उत्पादक संगठन अगर बना लेते हैं कि भाई हमें ये सब्जियां अपने क्षेत्र में उगवानी है, और इसे उगवाने के बाद हम शहरों में इसकी डिमांड लेके जो है ये हम ताजिया रसायन मुक्त सब्जियां जो है सप्लाई देंगे
2: जी,
0: तो इसका जो है आजकल क्रेज बहुत ज्यादा है। FPO का आपने सुना ही होगा, FPO गांव-गांव बनाए जा रहे हैं, तो उसमें जो है इसका विशेष तौर से अगर हमारे जो नए युवा हैं वो इस तरह से अपना एक संगठन बना के जो है ताजी सब्जियों को शहरों में आसानी से बेच सकते हैं और अपना जो है आय का एक अच्छा स्रोत वो तैयार कर सकते हैं।
1: जी सर। और सर, अगर आपको कोई संदेश अगर देखना चाह रहे हो, हमारे जो ग्रामीण युवा हैं या जो सपना देख रहे हैं कृषि आधारित उद्यम शुरू करने का या करना चाह रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, जैसे मैं कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हूँ, तो मैं ये कहूंगा आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाइए, पहले इसकी तकनीकी थोड़ी जानकारी लीजिए कि किस तरीके से जो है हमारे जो ग्रामीण युवा हैं वो अपने क्षेत्र में किस किस सब्जियों को आसानी से उगा सकते हैं। उसी के साथ साथ जो अपने नजदीकी शहर हैं, आप उस शहर में जाके जो है जो मल्टी स्टोरी हैं, सोसाइटीज हैं, आपके रेस्टोरेंट हैं या होटल्स हैं, उनमें जाके आप डिमांड लीजिए, फिर उसके आधार पर जो है अपने क्षेत्र में जो है सब्जियां तैयार कराइए। सब्जियां तैयार कराने के बाद फिर जो है आप वो सप्लाई दीजिए, और कोशिश करिए कि आपके पास ऐसे वाहन हो जिसमें जो है ताजी या सब्जियां शहर तक आसानी से पहुंच जाएं। खरीदार को ये लालच में रहना चाहिए कि मुझे ताजी सब्जी मिल रही है, रसायन मुक्त मिल रही है, और साथ ही साथ जो किसान का जो है पैसा बिचौलिए पर ज्यादा जाता था, तो उसकी जो है सीधे जो है ग्रामीण युवक को सीधे बचत होगी, जिससे जो है वो FPO को बचत होगी।

0: और एक्ट को सरकार से जो है लाभ मिलता ही मिलता है, ये सब लोग जानते हैं। तो इस तरीके से हमारे ग्रामीण युवा जो हैं वो अपनी आय का एक अच्छा स्रोत गांव में बैठे हैं जो है बना सकते हैं।
1: सर कार्यक्रम के अंत में एक सवाल आप कुछ पूछना चाह रहे हैं?
2: हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे छोटे किसान हैं वो भी क्या इन सब्जियों के उत्पादन में जुड़ सकते हैं शहरों से?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे जो छोटे किसान हैं उनके लिए सब्जियां जो है सबसे लाभकारी जो है एक उद्यम है। अगर वो सब्जियों की खेती करता है तो वो एक साल में 3-4 फसलें आसानी से ले सकता है। और आजकल क्या है, मल्टी स्टोरी का जमाना आ गया, हम मल्टी स्टोरी जो है वो तैयार करा रहे हैं, एक ही साथ जो है वो 3-3, 4-4 फसलें लेवा रहे हैं, जिससे जो है छोटा किसान जो है एक साथ 3-4 फसलें लेकर जो है वो मार्केट के लिए अच्छी सब्जियां तैयार कर सकता है। और साथ ही साथ ये देखिए कि आजकल डिमांड बहुत तेजी के साथ जो है वो हमारी बढ़ रही है जैविक उत्पाद की, प्राकृतिक उत्पाद की, तो हमारे जो छोटे किसान है उस तरफ भी ध्यान दें कि कहां से हमें ज्यादा अर्निंग हो सकती है, तो उस तरफ जो है छोटे किसान जो है काम करेंगे, सब्जियों पर ज्यादा काम करेंगे तो उन्हें ज्यादा फायदा जरूर पहुंचेगा।
2: जी तो डॉक्टर साहब बहुत ही लाभकारी रही आपसे ये बातचीत, और विषय था ग्रामीण युवाओं के लिए शहरों में सब्जियों की सप्लाई और अर्बन फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग, और इस विषय पर बातचीत कर रहे थे डॉक्टर अनंत कुमार, आप वैज्ञानिक हैं बागपत में।
1: जी बिल्कुल, और ये जो बातचीत हमारे साथ डॉक्टर साहब ने की है हमारे ग्रामीण युवाओं के लिए शहरों में सब्जियों की सप्लाई के व्यवसाय से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यकीनन हमारे जो ग्रामीण युवा हैं और साथ के साथ जो हमारे शहरी युवा हैं जो अपने टेरिस पे छत पे अगर कुछ फार्मिंग करना चाहते हैं और लाभ कमाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगी।
2: डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी बहुमूल्य जानकारी दी, आपका आभार, धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद,
0: नमस्कार।
2: और इसी के साथ साथियों आज का ये कृषि जगत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान बहन भाइयों को राम राम।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक थे शिव नंदन लाल।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस वक्त शाम के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गजलों का, जिसमें आप सुनेंगे जगजीत सिंह की आवाजों में चंद गजल।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली,
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, कैमरा, नई लाइट्स।
0: लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज सहकारिता सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया गया और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी और मादक पदार्थ तस्करी मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष रक्षा अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इसके अंतर्गत सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए।
3: राष्ट्रपति द्वारा ये अलंकरण 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा, 30 परम विशिष्ट सेवा, 12 उत्तम युद्ध सेवा और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक कर्मियों को उनकी असाधारण उत्कृष्ट सेवा के लिए दिए गए हैं। ये सम्मान देश में आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। एयर मार्शल तरुण चौधरी को अति विशिष्ट सेवा पदक, वाइस एडमिरल तरुण सोपती को उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। वहीं परम विशिष्ट सेवा पदक से लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह को सम्मानित किया गया। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक प्रदान किया गया। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
2: दिल्ली सरकार ने आज राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी नीति को मंजूरी दी है। 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहने वाली इस नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, शून्य कार्बन उत्सर्जन और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त शहर बनाना है। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
4: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचना

0: संरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी।
1: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी एक पॉलिसी में दी गई है।
0: और वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति से दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और M1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इससे दिल्ली में प्रदूषण की समस्या कम होगी, परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
2: शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT में आयोजित टेक फॉर फ्यूचर, फ्यूचर मेकर्स इनोवेटर्स बूट कैंप के ग्रैंड फिनाले और इनोवेशन शोकेस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम श्री स्कूलों के विद्यार्थियों ने स्मार्ट सिटी, कृषि, आपदा प्रबंधन और सहायक प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर 20 नवाचारी तकनीकी प्रोटोटाइप प्रस्तुत किए। समारोह के दौरान शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के चार प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय महिला तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ 3 वर्षों के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों के अंतर्गत श्री स्कूलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा अन्य उभरती तकनीकों में विशेषज्ञ मार्गदर्शन और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। श्री सूद ने कहा कि ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने और उन्हें नवाचार आधारित कार्यबल के रूप में तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अलका सिंह।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी BLO कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
4: हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें BLOs एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनॉग्रेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स है और सभी पे BLOs अपॉइंटेड है, तो सभी BLOs को उनके इनॉग्रेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा।
3: श्री कुमार ने कहा कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दाखिल की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिल्ली में आज सहकार से समृद्धि सहकारिता सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में सहकारिता जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर सप्ताह भर चलने वाले जन जागरूकता अभियान की शुरूआत की।
5: सरकार से समृद्धि सहकारिता सप्ताह 2026 के शुभारंभ के दौरान श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सहकारिता सामाजिक सहभागिता, आत्मनिर्भरता और सामूहिक विकास का सशक्त माध्यम है। वहीं सहकारिता मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह सहित दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और आशीष सूद भी उपस्थित रहे। श्री सिंह ने कहा कि सप्ताह भर दिल्ली में जागरूकता अभियान, सेमिनार, पैनल चर्चा, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्विज प्रतियोगिताएं तथा वृक्षारोपण अभियान आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नरेला, द्वारका, रोहिणी सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक, पारदर्शी और डिजिटल सहकारिता व्यवस्था के माध्यम से नागरिकों के आर्थिक सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
3: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। इनमें आरोग्य सेतु के दूसरे चरण, आयुष्मान

0: सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमयन और भारत के डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
1: Applications launch are going to play a very important role.
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहल शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
1: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा दिल्ली विधानसभा में कल डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी की 162वीं जयंती के अवसर पर बंगाल टाइगर आशुतोष मुखर्जी के संकलित भाषण नामक विशेष स्मारक ग्रंथ का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता करेंगे। समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद तथा विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट भी उपस्थित रहेंगे। इस स्मारक ग्रंथ में डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी के संसदीय भाषणों का पहली बार एक संकलित संस्करण प्रकाशित किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी अब तक कुल 26 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 14 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, डिजिटल सबूत और एक चार पहिया वाहन बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी झारखंड के जामतारा और देवघर सहित राष्ट्रीय राजधानी में सक्रिय थे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आरोपी पीड़ितों को व्हाट्सएप द्वारा एपीके फाइल भेजकर उन्हें इंस्टॉल करने के लिए उकसाते थे, जिससे पीड़ित की बैंक से जुड़ी जानकारी आरोपी को हासिल हो जाती थी। वहीं पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1392 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किए। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले 9 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर दिल्ली यातायात व्यवस्था की समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने इस दौरान यातायात पुलिसकर्मियों को जाम वाली मुख्य जगहों पर लक्षित कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं गलत दिशा में गाड़ी चलाने और बिना अनुमति पार्किंग जैसे उल्लंघनों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने पर भी बल दिया। उपराज्यपाल ने पुलिसकर्मियों से स्थानीय निवासियों के साथ जनसंपर्क बढ़ाने और क्षेत्र के हिसाब से समाधान विकसित करने के लिए नागरिक केंद्रित प्रोजेक्ट संगम का भी उल्लेख किया। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स एशियन जूनियर चैंपियनशिप में वॉल्ट स्पर्धा में रजत पदक और टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए युवा जिम्नास्ट अक्षत बजाज को बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि अक्षत बजाज की मेहनत, अनुशासन और समर्पण देशभर के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। दिल्ली सरकार में मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने आज राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर आधुनिक भारतीय सांख्यिकी के जनक और पद्म विभूषण डॉ प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री सिरसा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ महालनोबिस की दूरदर्शी सोच ने आंकड़ों को प्रभावी नीति निर्माण और राष्ट्रीय विकास का सशक्त माध्यम बनाया। राजधानी में आज दिनभर तेज धूप रही और शाम के समय हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है और शाम के समय हल्की वर्षा, आंधी तूफान और बिजली चमकने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने आज साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और शासन के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं से प्राप्त आंकड़ों के उपयोग के बढ़ते महत्व पर बल दिया। श्री मिश्रा ने नई दिल्ली में 20वें सांख्यिकी दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज सहकारिता सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया गया। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी और मादक पदार्थ तस्करी मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ब्रेक में कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
4: बचत शुरू, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, इमरजेंसी के लिए भी बचाओ, ताकि रहो क्योंकि वो इंजेक्शन
5: आरबीआई कहता है।
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। 8 बजने को है, प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। अपने इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
8: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ दीपिका जायसवाल और आज मेरे साथ हैं
1: प्रतीक आनंद। नमस्कार श्रोताओं।
0: और आज खेल खिलाड़ी में क्या है खास, सबसे पहले वह जानेंगे आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में क्या रहा खास और कौन कौन सी टीमें पहुंची सेमीफाइनल में, वो आज हम जानेंगे। और क्रिकेट की बात को जारी रखते हुए भारत और आयरलैंड के बीच हुआ दूसरा टी20 मैच पर रिपोर्ट भी आज आप सुनेंगे और साथ ही साथ एक्सपर्ट की राय भी जानेंगे इस हार को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स। और इसके अलावा सबसे ज्यादा बहुचर्चित लोकप्रिय फीफा वर्ल्ड कप की जानकारी कार्यक्रम के दौरान आपको दी जाएगी। 63वां इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में भी बताएंगे, कौन कौन से खिलाड़ी एशियन गेम्स में क्वालिफाई किया और कितने नेशनल रिकॉर्ड्स बने। इसके अलावा पेरिस डायमंड लीग की बात करेंगे, यूएस ओपन बैडमिंटन, विम्बलडन और एफआईएच प्रो लीग के बारे में भी आज कार्यक्रम में बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं फीफा वर्ल्ड कप से।

आइए अब बात करते हैं फुटबॉल के महाकुंभ फीफा विश्व कप 2026 की, जहां कल देर रात नॉकआउट स्टेज की शुरुआत हुई। टूर्नामेंट के सबसे रोमांचक और करो या मरो वाले दौर की, जहां इतिहास रचने और बाहर होने के बीच सिर्फ 90 मिनट का फासला है। कल कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेले गए पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराकर अगले राउंड में यानी राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। मुकाबला शुरुआत से ही बेहद कड़ा और रक्षात्मक रहा। शुरू से ही दोनों टीमों ने मौके बनाए मगर गोल दागने में असमर्थ रही, जिसकी बदौलत हाफ टाइम पर स्कोरलाइन 0-0 रही। दोनों टीमें पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में खेल रही थी, जिसका दबाव साफ नजर आ रहा था। दक्षिण अफ्रीका की बफाना टीम ने पूरे मैच में रक्षात्मक खेल दिखाया और उनके गोलकीपर कप्तान रॉनवेन विलियम्स ने कुल 5 शानदार बचाव किए। दूसरे हाफ में भी टीमों ने जुझारू खेल दिखाते हुए अपनी अपनी रक्षा पंक्ति को सजग रखा और गोल बचाव में अहम भूमिका निभाई। जब ऐसा लग रहा था कि मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, तभी खेल के अतिरिक्त समय में कनाडा के मिडफील्डर स्टीफन युस्ताकियो ने पेनल्टी बॉक्स

के ठीक बाहर से एक शानदार हाफ वॉली गोल मारकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई। उन्होंने अपनी तरफ आती बॉल को चेस्ट डाउन कर दाहिने पैर से एक दंडनाता शॉट सीधे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में दे मारा। ने कनाडा को राउंड ऑफ 16 का टिकट दिला दिया। यह कनाडा के फुटबॉल विश्व कप इतिहास की पहली नॉकआउट जीत रही, साथ ही यह कनाडा का फुटबॉल विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अब राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला नीदरलैंड्स या मोरक्को से होगा। वहीं बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो भले ही वह हार गए, लेकिन ग्रुप स्टेज में दक्षिण कोरिया को हराकर राउंड ऑफ 32 में पहुंचना उनके विश्व कप इतिहास का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। आइए नजर डालते हैं आज के नॉकआउट मुकाबलों पर। पहला मैच ब्राजील बनाम जापान होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से टेक्सास के ह्यूस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां एक तरफ सांबा मैजिक होगा, वहीं दूसरी तरफ समुराई ब्लू। जापान ने अक्टूबर 2025 में एक दोस्ताना मैच में ब्राजील को 3-2 से शिकस्त दी थी। अब देखना यह होगा कि क्या जापान ब्राजील को चुनौती दे पाएगा। ब्राजील की टीम में निगाहें रहेंगी उनके स्टार खिलाड़ी विनीशियस जूनियर पर, जो अब तक 4 गोल दाग चुके हैं, साथ ही मथियस कुनिया पर, जिनके नाम भी 3 गोल हैं। वहीं बात करें जापान की, तो जापान की ओर से डाइची कमाडा और अयासे उएडा ने 2-2 गोल मारकर अपनी टीम को राउंड ऑफ 32 तक पहुंचाया है। अगर इस प्रतियोगिता की बात करें तो जापान का सबसे शानदार गोल कन्वर्जन रेट रहा है। बात करते हैं आज के दूसरे मुकाबले की, जो कि होगा जर्मनी बनाम पेरेगुए। यह मुकाबला मैसाचुसेट्स के बॉस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा, जो भारतीय समय अनुसार रात 2 बजे से शुरू होगा। जर्मनी के स्टार खिलाड़ी जोशुआ किमिच की कप्तानी में जर्मनी अगले राउंड में प्रवेश करना चाहेगी। कोच जूलियन नगेल्समैन की शानदार युवा टीम आज पेरेगुए से लोहा मनवाएगी। जर्मनी में स्टार खिलाड़ी देखने को मिलेंगे जमाल मुसियाला, फ्लोरियन विट्स, काय हवर्त, लेरोय साने। वहीं पेरेगुए गुस्तावो गोमेज की अगुवाई में अगले चरण में खेलना चाहेगी, जहां उनके स्टार खिलाड़ी मिगेल अल्मेरॉन खेलते दिखेंगे। जर्मनी इस मैच में प्रबल दावेदार बनके उतरेगा, लेकिन उनकी चिंता का विषय यह है कि वह अपना आखिरी मैच दक्षिण अमरीकी टीम इक्वाडोर से 2-1 से हार गए थे। वहीं पेरेगुए की टीम बेहद रक्षात्मक खेल के लिए जानी जाती है, जिन्होंने 10 खिलाड़ी सहित खेलते हुए भी तुर्की को 1-0 से हराया था। यह मैच बेहद रोमांचक रहेगा। अब बात करते हैं आज के तीसरे मैच की, नीदरलैंड्स बनाम मोरक्को। यह मैच मेक्सिको के मोंटेरे स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार कल सुबह 6:30 बजे खेला जाएगा। यह मैच इस स्टेडियम का इस विश्व कप में आखिरी मैच होगा। हेड कोच रोनाल्ड कोमिन और कप्तान वर्जिल वैन डाइक की अगुवाई में नीदरलैंड्स अगले चरण में प्रवेश करना चाहेगी। वहीं मोरक्को की टीम 2022 कतर विश्व कप में सेमीफाइनल तक का सफर तय करने के बाद अब दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से एक गिनी जाती है। फ्रांस के स्टार खिलाड़ी ब्रायन ब्रॉबी अब तक 3 गोल मार चुके हैं, वहीं कॉडी गैको अब तक 2 गोल दाग चुके हैं। वहीं बात करें मोरक्को के स्टार मिडफील्डर इस्माइल साइबरी पर सबकी निगाहें रहेंगी, जो अब तक 3 गोल कर चुके हैं।

0: और फीफा के बाद अब बात करते हैं बैडमिंटन की। भारत के बैडमिंटन स्टार किदांबी श्रीकांत का यूएस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार सफर रनरअप के साथ खत्म हुआ। मेंस सिंगल्स के फाइनल में उन्हें चीनी ताइपे के सूलियांग से 3 गेम के कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले 33 साल के किदांबी ने पहला गेम हारने के बाद वापसी करते हुए मैच को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाया, लेकिन अपने से 9 साल छोटे और दुनिया के 46वें नंबर के खिलाड़ी से हार गए।
1: I played okay. Could have played a little better maybe in the opening set.

0: But I feel I've played okay. I don't know. Second half of the third set, it was just hitting really well all of a sudden. But probably I should have maybe played a little better in the opening set. I just feel like whatever I've been doing is working. I just have to keep working hard. Probably I feel like I'm there. It's just about being able to. It's been playing really well. You know, last few months it's been playing really well. So just. It's another day where he kind of played exceptionally well and the points are really maxed.
1: एक घंटे से ज्यादा चले इस मुकाबले में श्रीकांत को आखिरकार 15-21, 21-16, 9-21 से हार मिली। मुकाबले के शुरुआत में श्रीकांत अच्छी लय में नजर आए, लेकिन शुरुआती रैलियों में हुई एक गलती उन पर भारी पड़ गई और नेट के पास शॉट खेलते समय उनका रैकेट नेट की दूसरी तरफ चला गया, जिसके बाद सू ली यांग ने लगातार अंक जुटाकर 7-2 की बढ़त बना ली। हालांकि श्रीकांत ने शानदार वापसी करते हुए अगले 11 में से 8 अंक अपने नाम किए और स्कोर 10-10 के बराबर कर दिया। मिड गेम ब्रेक तक उन्होंने 11-10 की मामूली बढ़त भी बना ली थी, लेकिन ब्रेक के बाद सू ने खेल की रफ्तार बढ़ा दी और श्रीकांत से लगातार गलतियां करवाते हुए 17-12 की बढ़त हासिल कर ली। आखिरकार पहला गेम 21-15 से सू ली यांग के नाम रहा। वहीं दूसरे गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। 4-4 की बराबरी के बाद श्रीकांत ने लगातार 3 अंक जीतकर 7-4 की बढ़त बनाई। सू ने स्कोर 8-8 कर दिया, लेकिन श्रीकांत ने बेहतरीन नेट प्ले की बदौलत ब्रेक तक 11-8 की बढ़त कायम रखी। इसके बाद सू ने कुछ शानदार स्मैश लगाए, लेकिन श्रीकांत ने धैर्य बनाए रखा और स्कोर 18-13 तक पहुंचा दिया। विरोधी खिलाड़ी की कुछ गलतियों के बाद उन्हें 7 गेम पॉइंट मिले। सू ने 3 गेम पॉइंट जरूर बचाए, लेकिन श्रीकांत ने दमदार डाउन द लाइन स्मैश लगाकर दूसरा गेम 21-16 से जीत लिया और मुकाबला निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया। वहीं तीसरे गेम से सू ली यांग ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और लगातार सटीक स्मैश लगाते हुए 4-1 की बढ़त बना ली और श्रीकांत ने बीच बीच में अच्छे शॉट खेले, लेकिन लगातार हो रही गलतियों का नुकसान उन्हें उठाना पड़ा और मिड गेम ब्रेक तक सू ने 11-7 से बढ़त बना ली थी। इसके बाद उन्होंने बढ़त को 15-7 और फिर 18-8 तक पहुंचा दिया और श्रीकांत के कई शॉट कट से कोर्ट से बाहर चले गए, जिससे सू को 12 चैंपियनशिप प्वाइंट मिल गए और श्रीकांत एक प्वाइंट बचाने में सफल रहे। लेकिन अगली रैली में सू ने अंक हासिल कर मैच और खिताब दोनों अपने नाम कर लिया और यह सू ली यांग के करियर का पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब रहा, जबकि श्रीकांत के लिए यह सीजन का पहला फाइनल था।
2: नमस्कार श्रोताओं, अब आइए बात करते हैं आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की, जहां कल देर शाम एक ऐसा ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया जिसने क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी। कहानी कल लॉर्ड्स के एक ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के महामुकाबले की, जिसने न सिर्फ करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ा बल्कि इस टूर्नामेंट की दिशा ही बदल दी। यह मुकाबला भारत के लिए करो या मरो का था, जहां ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। लॉर्ड्स की पिच पर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का साहसिक फैसला लिया। भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 170 रनों का मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया, लेकिन सामने 6 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए 19 ओवरों में ही 4 विकेट खोकर 172 रन बना दिए और 6 विकेट से इस रोमांचक मैच को जीत लिया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने महिला टी20 विश्व कप इतिहास का सबसे सफल रन चेस दर्ज कर एक नया कीर्तिमान रच दिया। भारतीय पारी की शुरुआत शानदार रही। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधना 38 रन और शेफाली वर्मा 34 रन ने पहले विकेट के लिए 66 रनों की आक्रामक साझेदारी की। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मैदान पर आते ही तबाही मचा दी। उन्होंने विपक्षी कप्तान सोफी मोलिनॉक्स के आखिरी ओवर में लगातार 3 छक्के जड़ते हुए महज 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो महिला टी20 विश्व कप में किसी भी भारतीय द्वारा लगाया गया सबसे तेज अर्धशतक है। हरमनप्रीत ने 207.41 के स्ट्राइक रेट से 27 गेंदों पर नाबाद 56 रन बनाए, जिसमें 6 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। जमीमा रॉड्रिगेस ने भी 34 रनों का बखूबी योगदान दिया, लेकिन दुर्भाग्य से 19वें ओवर में रिटायर आउट होकर

इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। मौजूदा टी ट्वेंटी विश्व चैंपियन भारतीय टीम को आयरलैंड के हाथों दूसरे टी ट्वेंटी में महज एक रन से बेहद रोमांचक हार का सामना करना पड़ा। इस दिल

0: काम देने वाली जीत के साथ ही आयरलैंड ने भारत को इस सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। इसी के साथ भारतीय टीम का पिछले 16 द्विपक्षीय T20 सीरीज से चला आ रहा अजेय रथ भी थम गया। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 154 रन बनाए। बेलफास्ट की यह पिच बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं थी, लेकिन आयरिश बल्लेबाजों ने सूझबूझ से एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया। आयरलैंड की ओर से मध्यक्रम के बल्लेबाज हैरी टेक्टर ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने संकट के समय 47 गेंदों में 53 रनों की पारी खेली। उनके अलावा बेन केलिट्स ने आखिरी ओवर में तेजी से 23 गेंदों में 37 रन जोड़कर अपनी टीम को 150 के पार पहुंचाया। इसके जवाब में 155 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत किसी बुरे सपने जैसी रही। भारतीय टीम का शीर्ष क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। मध्य क्रम में उप कप्तान तिलक वर्मा ने अकेले किला लड़ाया। उन्होंने 46 गेंदों में 55 रनों की जुझारू पारी खेलकर भारत को मैच में बनाए रखा। पूरी टीम लड़खड़ाते हुए 20 ओवरों में 9 विकेट पर 153 रन ही बना सके और इतिहास में पहली बार आयरलैंड से सीरीज हार गई। आयरलैंड के गेंदबाजों खासकर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जय मुंदड़ा और मैट हॉलार्ड ने 3-3 विकेट चटकाकर भारतीय बल्लेबाजों को बांधे रखा। इस मैच में युवाओं के जोश और नए चेहरों पर भी सबकी नजरें रही। भारत की तरफ से खेल रहे युवा प्रिंस यादव ने अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। गेंदबाजी में उन्होंने कमाल करते हुए सिर्फ 22 रन देकर 3 विकेट झटके। इतना ही नहीं, जब मैच की आखिरी गेंद पर भारत को जीत के लिए 8 रन चाहिए थे तब प्रिंस यादव ने एक शानदार छक्का भी जड़ा। हालांकि टीम को जीत दिलाने में वह काफी नहीं रहा। दूसरी तरफ आयरलैंड के युवा सनसनी जय मुंदड़ा ने इस मैच में तबाही मचा दी। उनकी घातक गेंदबाजी के लिए न सिर्फ प्लेयर ऑफ द मैच बल्कि पूरी सीरीज में शानदार खेल के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया। श्रोताओं, इस मुकाबले ने क्रिकेट जगत में कई नए रिकॉर्ड स्थापित किए। क्रिकेट इतिहास में पहली बार है जब आयरलैंड ने भारत को किसी भी फॉर्मेट की सीरीज में व्हाइट वॉश किया है।
1: जी हाँ, भारत सीरीज हार गई है 2-0 से। और जाना हमने कि एक्सपर्ट्स का कहते हैं इस हार पर और किस तरह से वो इस टीम के कॉम्बिनेशन और वैभव सूर्यवंशी को ना खिलाने के बारे में कहते हैं, आइए सुनते हैं।
2: मैचेस जो इंग्लैंड में हुए हैं, थोड़ा भारतीय टीम ने उसको कैजुअल, मैं कहूंगा कुछ अप्रोच कैजुअल थी। देखिए, वहां की विकेट्स का और कंडीशंस का बहुत फर्क होता है। उस कंडीशंस में खेलना, क्योंकि अभी ये हार्ड विकेट के गए हैं, वहां पर थोड़ा स्पंजी बाउंस होता है उन विकेट्स पे, खासकर इंग्लैंड आयरलैंड में। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज, खैर सभी प्रोफेशनल प्लेयर हैं और इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, पर जो खेल का एक नियम होता है ना, कि अभी उनका बैट उसी हिसाब से चल रहा है जो अभी आईपीएल खत्म हुआ, आईपीएल के हिसाब से खेले, तो कहीं ना कहीं वो फर्क इनको नजर आया वो देखने में, जिसकी वजह थी ये दोनों मैच लूज कर गए।
3: टीम कॉम्बिनेशंस पर भी सवाल उठ रहे हैं, बॉलर्स पर भी सवाल उठ रहे हैं, सर क्या कहेंगे आप?
2: देखिए, जब टीम हारती है तो सवाल तो उठेंगे ही, और जब टीम हारती है तो हर एक चीज गलती नजर आती है। और अगर यही जीत लास्ट बॉल पे, जैसे अगर हर्षित राणा का वो छक्का लग जाता तो फिर वो जीत में सब कवर हो जाता। तो ये चीजें देखिए स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में चलती रहेंगी। और मैं समझता हूँ कि देखिए कॉम्बिनेशन क्या कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक कॉम्बिनेशन खेल रहा है। मेरे एज ए क्रिकेटर मैं तो नहीं समझता कि कोई गलत कॉम्बिनेशन है। देखिए, एक आयरलैंड की जो टीम है, अभी नई टीम है, तो उसके अगेंस्ट हर कोच, हर टीम एक चाहती है कि मैं नए प्लेयरों को मौका दूं, उनको उस मौके को वो बनाए। तो यही स्ट्रैटेजी इंडिया की टीम की भी रही है।
3: वर्ल्ड कप जीतने के एकदम बाद कैप्टन का बदल जाना और वैभव सूर्यवंशी का इन दोनों मैचेस में ना खिलाना, उसको कैसे देखते हैं
2: आप? देखिए, वैभव सूर्यवंशी के पास बहुत टाइम है और यंग लड़का है, नो डाउट कि उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है। तो देखिए, हम अगर उसको बहुत जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट में डालेंगे तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ भी जा सकती है ये बात, और उस बच्चे में प्रेशर भी आ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि टाइमली अगर वो फीड अप टीम में फीड हो जाएगा तो कोई इसमें बुराई नहीं है। अब शायद देखिए इंग्लैंड के अगेंस्ट उनको चांस मिलेगा ही मिलेगा, वैभव सूर्यवंशी को। देखिए, इस टाइम तो वो स्टार बना हुआ है, और मुझे याद है जब हमारा खेलने का टाइम था तो सचिन तेंदुलकर आया था उस टाइम 16 साल में, अब ये बच्चा तो 14 साल में ही आ गया। तो कहीं ना कहीं जो किस्मत है, जो डेस्टिनी है, वो इसके साथ है, और जो इसने प्रदर्शन आईपीएल में करा है वो काबिले तारीफ था। और ऐसा नहीं कि खाली आईपीएल में, इसने इंडिया ए के लिए भी करा, अभी श्रीलंका में भी करा, इंडिया अंडर 19 में भी इसने 100 रन बनाए। तो मैं

0: समझता हूँ कि कहीं ना कहीं देखिए वो प्लेयर बड़ी फॉर्म में है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये जानना चाहूंगा या कहना चाहूंगा आपको कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट आती है ना उसका एक प्रेशर अलग होता है, जब कंट्री टू कंट्री मैच होते हैं उसका प्रेशर एक अलग होता है, तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि क्या कितना खड़े उतरते हैं वैभव। बिल्कुल,
1: ये थे हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर बंटू सिंह जी, और इनका कहना है कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट होता है तो उसका असर जो है और उसका प्रेशर जो है वो खिलाड़ियों पर अलग होता है। तो प्रतीक, और क्या है खास इंटरनेशनल क्रिकेट से जुड़ी खबर?
2: जी हाँ, मैं श्रोताओं आपको बता दूं कि बेन स्टोक्स ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेटर को अलविदा कह देंगे, जो कि बेन स्टोक्स के फैन के लिए एक बहुत ही दुखद खबर है।
1: और अब बात कर लेते हैं एथलेटिक्स की। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में 24 से 29 जून तक आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारतीय एथलेटिक्स के लिए ऐतिहासिक साबित हुई, और इस प्रतियोगिता में कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटे और कई खिलाड़ियों ने एशियाई खेल 2026 के लिए क्वालिफिकेशन मानक भी हासिल किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं किन किन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। एमसी सोजन, इन्होंने महिला लंबी कूद में ये उपलब्धि हासिल की, और इनका रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड जो बना है वो 6.88 मीटर का बना है। पुराना रिकॉर्ड था 6.83 मीटर का, और इन्होंने ये अंजू बॉबी जॉर्ज का रिकॉर्ड को तोड़ा है जो साल 2004 में बना था। और अगला जो नेशनल रिकॉर्ड है सर्वेश कुशारे ने बनाया है, पुरुष ऊंची लंबी कूद महाराष्ट्र के हैं ये, और 2.30 मीटर की ऊंचाई पार करके इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। देव मीना पुरुष पोल वॉल्ट में इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, और उन्होंने एशियाई खेलों के लिए भी क्वालिफिकेशन पार कर लिया है। अनुष्का यादव महिला हैमर थ्रो, हरियाणा की ये एथलीट है, और इन्होंने महिला हैमर थ्रो में अपना ये रिकॉर्ड बनाया है। और साथ ही साथ पांचवें खिलाड़ी की बात करें, जो पांचवा जो नेशनल रिकॉर्ड बना है उसकी बात करें, तो सिंधु श्री जी ने महिला पोल वॉल्ट में भी रिकॉर्ड बनाया है और स्वर्ण पदक हासिल किया है। 4.24 मीटर का इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा अगर हम जो एशियाई खेलों में क्वालिफाई करे हैं उनकी अगर बात करें तो वो है सिंधु श्री, इन्होंने महिला पोल वॉल्ट में, देव मीना पुरुष पोल वॉल्ट में, एमसी सोजन महिला लंबी कूद, सर्वेश कुशारे पुरुष ऊंची कूद, ज्योति याराजी 100 मीटर बाधा दौड़, अनुष्का यादव महिला हैमर थ्रो, रोहित यादव पुरुष भाला फेंक, मुरली श्रीशंकर पुरुष लंबी कूद, और समरदीप सिंह पुरुष गोला फेंक, और विशाल टी के पुरुष 400 मीटर, मनु टी एस पुरुष 400 मीटर। और अब जान लेते हैं हॉकी में क्या है खास।
2: जी हाँ श्रोताओं, हाल ही में समाप्त हुई FIH प्रो लीग में कल यानी 28 जून को लंदन के ली वैली हॉकी सेंटर में भारतीय टीम ने अपने इस अभियान का अंत करा बेहद ही थ्रिलर मैच के साथ। मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया यह मैच निर्धारित समय तक 0-0 की बराबरी पे था, लेकिन असली ड्रामा शुरू हुआ पेनल्टी शूटआउट में, जहां भारत ने इंग्लैंड को 3-2 से मात दी और एक बोनस प्वाइंट अपने नाम किया। अगर हम पूरे प्रो लीग सीजन के बारे में भारत की सफर पर नजर डालें तो काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। भारत ने कुल 16 मैच खेले जिसमें से 4 में सीधी जीत मिली, 5 में ड्रॉ, 7 में हार का सामना करना पड़ा।
1: अब पेरिस डायमंड लीग की बात कर लेते हैं। पेरिस डायमंड लीग दुनिया के कई दिग्गज एथलीटों का शानदार प्रदर्शन किया, उनमें से कुछ खास प्रदर्शन आपको बताते चलते हैं। पोल वॉल्ट में डुप्लांटिस का दबदबा जारी रहा, स्वीडन के विश्व रिकॉर्डधारी इस खिलाड़ी ने 6.13 मीटर की छलांग लगाकर एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित की। वहीं महिलाओं की 800 मीटर रिकॉर्ड बनाया स्विट्जरलैंड की युवा धाविका ऑड्रे वेरो ने, और वो क्या कहती हैं अपने इस रिकॉर्ड पे, आइए सुनते हैं।
3: Run at the pace of the world record, but still a really good time at the end. It's not the world record, but I'm still really happy with my time and with my performance today. I think I was a little bit late at the 600 meters passage, so I was a little bit late on the green light. So at this moment, I just tried to catch up the light, but it was hard because we cannot. A delay in such a race, so I think for the next time I can stay more with the lights.
1: चीन की यान जी जो 18 वर्षीय भाला फेंक खिलाड़ी हैं, उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की जेवलिन स्पर्धा में खिताब अपने नाम किया, गोल्ड मेडल जीता और 67.44 मीटर का इन्होंने थ्रो फेंका, और अपने पहले प्रयास में इतने मीटर का थ्रो किया, और इस जीत से इन्होंने 2026 डायमंड लीग फाइनल

0: उसमें अपनी जगह पक्की कर ली है और अब विंबलडन के लिए चलते हैं प्रतीक के पास।
1: जी हाँ, आप चर्चा करते हैं टेनिस जगत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित टेनिस प्रतियोगिता की। 1877 में ऑल इंडिया लोन टेनिस के राम क्लब से शुरू हुई यह प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम इतिहास की पहली और सबसे पारंपरिक प्रतियोगिता है, जिसकी शुरुआत 22 जून से हुई है और इसके जिसमें आज पहले राउंड के मुकाबले खेले जा रहे हैं। पहले राउंड में अगर बात करें तो यानिक सिनर हमको देखने को मिलेंगे मियामिर केक्रमानोविच के खिलाफ, वहीं डैनियल मेदवेदेव देखने खेलते दिखेंगे मारिन सिलिच के साथ। नोवाक जोकोविच 7 बार के विंबलडन चैंपियन सर्बिया के और चीन के वू यिबिंग से खेलते दिखेंगे, वहीं वर्ल्ड नंबर 2 अरीना साबलंका खेलते दिखेंगी थियोडोरा कोस्तोविक के साथ।
0: और इसके अलावा चलते चलते एक और खास खबर आपको बताते चलते हैं। हमारे पैरा शटर प्रमोद भगत ने ब्रिटिश और आयरिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 में पुरुषों के सिंगल्स SL3 में गोल्ड मेडल और मिक्स्ड डबल्स में मनीषा रामदास के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता और ये एक इन्होंने नया कीर्तिमान अपने नाम किया और भारत का नाम रोशन किया। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दीपिका सवाल को और
1: प्रतीक आनंद को
0: दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

यस्य रक्षणं क्रियते एवं तु वनस्पति संसारे अपि यथा च अश्वगंधा नागरमोथा गिलोय शतावरी आदि बहवः औषधय रसायन रूपेण प्रयुज्यन्ते एवं तु वेदेषु ऋग्वेदे यजुर्वेदे मुख्यतः अथर्ववेदे तु औषधीनां भण्डारः वर्तते आयुर्वेद अथर्ववेदस्य उपवेद ऋग्वेदे सूर्यचिकित्सा जलचिकित्सा एवं विविध औषधीनां मन्त्राणि सन्ति यथा च ऋग्वेदे दशमे मण्डले एकशतं त्रिषड् सूक्ते आगच्छति ॐ हृदरोगं मम सूर्यनाशय अर्थात हे सूर्यदेव मम हृदयः वैज्ञानिक रूपेण अस्माकं सम्मुखे सन्ति चरक श्रुत्यमन अगस्त्य आदि आचार्याः अपि विशिष्ट वैद्याः चिकित्सकाः संस्कृत साहित्ये आयुर्वेदं सुशोभयन्ति पंचकर्म अर्थात वमन उल्टीति नामना विधि विरेचन दस्त नामना विधि बस्ति एनिमा नस्य अर्थात नासिकासु जलम तैलम घृतम अथवा सूत्रम प्रयोगम कृत्वा यत उपचार स नस्य अंतिम च रक्त मोक्षण अर्थात रक्त शुद्धि हेतु उपचार एवं वात पित्त कफ त्रिदोषा अपि आयुर्वेदे सम्यन्ते एवमेव षटकर्म अर्थात नेति जलेन नासिका शुद्धि धोति अन्न प्रणालीं शोधयति पाचन तंत्रम शुद्धम करोति नौली उदरस्य मांसपेशी नाम शुद्धिम करोति बस्ति बृहद अंतरम शुद्धम करोति कपालभाति ललाटम फुफ्फुसम च शुद्धयति त्राटकश्च यह ध्यानम केन्द्र

स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम अर्थात व्यायामेन स्वास्थ्य दीर्घायु बलम सुखम च प्राप्यते निरोगिता परम भाग्यम अस्ति तथा स्वास्थ्य एवं सर्व कार्येषु सिद्धिदायक भवति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संस्कृत सौरभ। हम ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। इस वक्त रात के 8:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत सुप्रिया जोशी और रवि त्रिपाठी की आवाजों में।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित।

0: चयनित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू

0: कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: एप्लीकेशन लॉन्च गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
1: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है, जो पहले दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे।

0: कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94.54 रूपये पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया

से मजलिस में सबसे पहला प्रोग्राम आप सुनेंगे एक फनकार, और इस प्रोग्राम में आज के फनकार हैं हरी हरन। नौ बजकर 45 मिनट पर खबरें नशे की जाएंगी और 9:00

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। एक फनकार इस प्रोग्राम में, आज के फनकार हैं हरिहरन। आगाज फरत शहजाद के इस

उनसे आप बच सकते हैं। इसमें कैंसर, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर और ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों की कमजोरी जैसी बीमारियों से लोबिया के इस्तेमाल से बचा जा सकता है। उनका जो जोखिम है एक तरह से वो कम हो जाता है। अब चूंकि इसमें घुलने वाले फाइबर्स होते हैं लोबिया में, तो जो अफराद शुगर के मरीज हैं उनके लिए एक बेहतरीन गजा है ये, जो कि ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में और उसके खतरात को कम करने में मुआविन साबित होता है लोबिया। और दिल की बीमारियों के लिए भी उम्दा समझा जाता है लोबिया, ऐसा माहिरीन का कहना है। तो अपने रोजाना के गजा में इसको शामिल कीजिए और दिल की बीमारियों के जो खतरात हैं उनमें कमी वाकई कीजिए। लोबिया में एक और बड़ा अच्छा जूस पाया जाता है, वो है लिग्निन। ये फाइटो एस्ट्रोजन का एक दरअसल ग्रुप है और कई मौलिक बीमारियों से ये बचाते हैं, कैंसर और स्ट्रोक जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है इसके इस्तेमाल से। इनके खतरात इसके इस्तेमाल से कम हो जाते हैं। बहुत कम ऐसी गजाई अज्जा होते हैं जो तिल्ली यानी स्प्लीन और मैदे और आंतों को जो है परेशानियों से बचाते हैं, जिसमें लोबिया भी एक ऐसा है जो कारगर साबित होता है। और इसके अलावा ये फलियां आपके जिस्म में आंतों के काम को बेहतर बनाती हैं और उसमें अगर गर्मी का एहसास होता है, शिद्दत होती है, तो उसको भी दूर करती हैं। बेचैनी या फिर रुकावट जैसी पेशाब से मुतालिक परेशानियों को दूर करने में भी मुआविन साबित हो सकता है लोबिया। और वजन घटाने के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लो फैट है और लो कैलोरी फूड है, वजन घटाने के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि सब्जी में सोडियम की मकदार बहुत कम होती है इसमें, इसके अलावा लोबिया बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल फ्री होने की वजह से भी आपके वजन कम करने में मुआविन साबित हो सकता है। और बालों की सेहत के लिए भी उम्दा माना जाता है, लेकिन कुछ इसके नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम है। वो ऐसे कि अगर आप इनका इस्तेमाल ज्यादा कर लेते हैं तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना तो पेट आपका गड़बड़ हो सकता है, बदहजमी हो सकती है, कब्ज हो सकता है। दूसरा जो है, हामला खवातीन है या जो बच्चों को फीड कराती हैं, वो खवातीन को लोबिया का इस्तेमाल कितना करना है या नहीं करना, ये डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। और वो अफराद जो किसी भी चीज से एलर्जिक होते हैं, किसी खाने की चीज से, किसी गजा से, तो ऐसे में कुछ लोगों को, वैसे तो बहुत कम लोगों को ऐसा होता है, वो एलर्जी हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। तो ये थे तमाम तिब्बी फवायद लोबिया खाने के। और इसको आप नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उबालकर हल्का सा नमक मिर्च डालिए, थोड़ा सा टमाटर प्याज और खीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गर्मी का मौसम है और कुछ लोग इसमें दही मिलाकर भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये अपना अपना तरीका है खाने का। बहरकैफ बहुत ही उम्दा गिजा है, हाई प्रोटीन भी है, फाइबर्स इसमें बहुत ज्यादा हैं, फायदे ही फायदे हैं जनाब, नुकसान तो कम ही हैं। तो बहरकैफ आज के हेल्थ मशवरे में बस इतना ही। मीडियम वेव्स 1350 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। पेश खिदमत है अदबी मैगजीन आईना। मौजू है उर्दू शायरी में बरसात का मौसम।

0: भूमि अपने उरूज पर है, आसमान से आग बरस रही है, चिलचिलाती धूप, जिस्मों को झुलसा देने वाली गर्म हवा, नदियां नाले खुश्क, पेड़ पौधे मुरझाए हुए, और दोजख क्या होगी?
1: कोसों किसी शजर में न गुल थे न बरगुबार, ठेके का नखल जल रहा।

ऐसी गर्मी के इलाही तौबा, जीना दोबर हो गया। लोगों की निगाहें आसमान पर भटकते हुए बादलों पर लगी हुई हैं, हाथ दुआ के लिए उठे हुए हैं।

वो सारे बरस की जा बरसात, वो कौन खुदा की शाह बरसात, आई है बहुत दुआओं के बाद और सैकड़ों इल्तिजाओं के बाद। बरसात का बज रहा है डंका, एक शोर है आसमां पे बरपा है, अब की फौज आगे आगे और पीछे है दल के दल हवा के, है रंग बिरंग के रिसाले, गोरे हैं कहीं कहीं है काले।

रोशमली आबादी को इश्क की हद तक फितरी मनाजर से लगाव था। उन्हें जबान पर गैर मामूली कुदरत हासिल थी, जज्बात पर उनकी गहरी नजर होती थी। ऐसी मंजर कशी करते कि सुनने वाले के सामने पूरी तस्वीर आ जाती है। उनकी नज्म बरसात के पहले घटा।

0: वंशी द्वारका प्रसाद उफत लखनऊ ने बरसात की बहार का बयान क्या ही दिलकश अंदाज में किया है।
1: रुत आई हुस्न इश्क अंगेज, फसलें खुशगवार आई, बहार आई बहार आई बहार आई बहार आई। कभी ऊदी घटा छाई, कभी काली घटा उठी, जब उठी दिल लुभाने वाली मतवाली घटा उठी। चमक दिखला के कौंदा इस तरह खामोश होता है, कोई झलकी दिखाकर जिस तरह रूपोश होता है।
0: परों को फैलाते हुए मोर नाच रहे हैं, कोयलों की कुंकू फजाओं में गूंज रही है, बगले कतार बनाए आसमान पर परवाज कर रहे हैं। बेनजीर शाह ने बहुत खूबसूरत तशबीहों और इस्तारों के जरिए बरसात के इस मंदिर की अक्कासी की है।
1: घटा ऊदी ऊदी ये क्या छा गई, बहारे चमन रंग पर आ गई। परों को इधर मोर तोले हुए, घटाएं इधर बाल खोले हुए, वो कोयल गजब ने बजाती हुई, पपीहू से ताने लड़ाती हुई। हवा दोष पर शाल डाले हुए, घटाओं के आंचल संभाले हुए, घटाएं वो बगलों की हर सो कतार, के जुल्मत में आपे हयात आश्कार। गरज बादलों की सुनाती हुई, बाहर आई डंके बजाती हुई।
0: वजीर अकबर आबादी उर्दू के पहले शायर हैं, जिनकी शायरी में हिंदुस्तान की जिंदगी अपनी भरपूर खूबसूरती और रानाई के साथ जलवागत नजर आती है। वो ऐसी चीजों और वाकयात को मौजू बनाते हैं जिनमें आवाम और खवास दोनों को दिलचस्पी होती है।

0: कुछ दिन पहले गर्मी की यह हालत थी कि परिंदे परों में चोंचे दबाए अपने घोंसलों में दुबके बैठे थे। बारिश हुई तो मंजर ही बदल गया। अब परिंदों की दिलकश मुतरन्नम आवाजें फजा में गूंज रही हैं। उर्दू शायरों ने बरसात की बहुत हसीन और दिलकश अक्कासी की है, लेकिन मुंशी दुर्गा सहाय सुरूर जहां आबादी ने इस हसीन मौसम की कैसी जुजियात बयान की हैं।
1: उठा वजूद के साकी चमन में अब्र बहार, चटक रही है शगुफे परस रही है फुहार। सही कदों का है जमघट किनारे आब रवा, के बीच में लबे जमना है गोपियों की कतार। है मोतियों की लड़ी या कतार बुदलों की, हवा में उड़ते हैं जुगनू के छूटते हैं अनार। अजब निशात है बाधा कशो चलो तो सही, पया में ऐश है लाया चमन में अब्रे बहार।
0: दिल्ली में रिवाज था कि नई शादीशुदा लड़कियां शुरू की दो तीन बरसातें अपने मैके में गुजारती। इधर बादल आए, उधर लड़कियों ने अपने मैके जाने की तैयारियां शुरू की। इस जज्बे का इजहार इस गीत में होता है।

0: अब के सैलाब में डूबा हुआ है जज्व कुल, खार के नफ्सों में भी दौड़ा हुआ है खूने गुल। सहन में पानी है और पानी में है बच्चों का गुल, एक तरफ लकड़ी की कश्ती एक तरफ मट्टी का पुल। झूम कर बरसी है क्या बरसात की पहली घटा, बाहमी आवेजिशें गमख्वारियां सी बन गईं, बेजरी की कुलफतें सरदारियां सी बन गईं। भर गया पानी जमीं पर धारियां सी बन गईं, जा बजा मट्टी जो सिमटी क्यारियां सी बन गईं। झूम कर बरसी है क्या बरसात की पहली घटा।
1: बरसात का मौसम कैसा हसीन और रोमान परवर होता है। आसमान पर ऊदी ऊदी घंघोर घटाएं छा रही हैं, हर तरफ हरियाली है, पपीहों की सदाओं से बाग गूंज रहे हैं, ठंडी ठंडी मस्त हवाओं ने सोए हुए जज्बात को जगा दिया है। ये हुस्न इश्क के मिलाप का मौसम है। लेकिन बरसात जो बहुत से लोगों के लिए दुनिया की बहुत बड़ी नेमत है, वहीं कुछ लोगों के लिए अजाब इलाही भी बन जाती है। मेरा बरसात ने मीर तकी मीर के घर की हालत तो देखिए।

जिंदगी के फसाने की अगर बात की जाए दोस्तों, तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी की हकीकत को अगर जानना है तो बारिश में पतंगे उड़ाया करो। जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है दोस्तों, इसलिए हंसी खुशी गुजार दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि फिकरात में जिंदगी गुजरे और लड़ते झगड़ते गुजरे, एक दूसरे की नाराजगी मोल लेकर गुजरे। मोहब्बतों के रिश्तों को निभाइए, अपनी जिंदगी में खुशियां लाइए और जिंदगी को खुशगवार बनाइए। हम भी अपने प्रोग्राम को खुशगवार बनाते हैं आपके नामों से और शामिल करते हैं तामिल शायद प्रोग्राम में अब आपके तमाम ईमेल्स। माय फिल्म के इस नगमे को, जिसे रफी साहब की आवाज ने खूबसूरती बख्शी, नगमा निगार मशहूर सुल्तानपुरी सलील चौधरी की थी मौसीकी, सुनना चाहते थे एसएम जावेद शगुफ्तान्यूम टावर चौक गुमला झारखंड से। ये फरमाइश मौसूल हुई बांदा यूपी से फहीम मंसूरी, फातिमा मंसूरी और अहले खाना की, और आप हैं मुख्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीश तो और निशु। और इसी नगमे को सुनने के मुंतजर थे ओल्ड लिसनर्स ग्रुप रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, ठाकुर साहेब और साथ में बिहारी बाबू भी हैं, और आप हैं आकली दीवान एमपी से रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी, काजल दिलीप। और ये फरमाइश आई है बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय दर्द और अहले खाना की, और इसी नगमे को सुनना चाहते थे अलीका डब्बाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार और कुलदीप गांधी। ये फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ आत्मनगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी और भानु प्रकाश का, और आप हैं घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, साथ में संप्रीत पंचोलिया। और इसी नगमे को एंजॉय कर रहे थे कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। मुल्लापुर दाका से फरमाइश की थी राजेश जैन, बिट्टू जैन और गोटना जैन ने, और आप हैं ऊपरकोट मोहल्ला बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, शाहनवाज सरफराज अब्बासी। आज एक नाम गायब है, उनसे क्या नाराजगी है आपकी? भाई हमारी तो नाराजगी नहीं है, लेकिन चूंकि आपने दो ही नाम लिखकर भेजे तो दो ही जनाब शामिल कर लिए। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, साथ में अनिल शर्मा साहब। और इसी नगमे से महजूज हो रहे थे कोल सिटी बरकाना से अफजालता, शाहीन सुल्ताना और सोनू तस्नीम। और ये फरमाइशी मेल मौसूल हुआ राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार का, और ये फरमाइश मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज और शरीफ नवाज की थी गिरडी झारखंड के दादा बाबू रोड से। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से सुनना चाहते थे इस नगमे को रविन्द्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, साथ में स्वीटी छाबड़ा। और रेलवे रोड गंज डोंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज, साथ में बेबी फातिमा गाजी। और ये फरमाइश चौरसिया खानदान की है, और आप हैं सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया और इनके प्यारे से पोते भी हैं बाबू शिवा चौरसिया, साहबगंज चौराहा फरुखाबाद यूपी से। आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा, और ये नगमा है मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, मदन मोहन की मौसीकी, आवाजें हैं लता मंगेशकर और हमनवाओं की, और फिल्म का जहां तक नाम है तो आप पहचान गए होंगे जनाब,

चिराग फिल्म का ये खूबसूरत नगमा है और इसे सुनना चाहते हैं। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और हमेशा की तरह साथ में उनके प्रतीक मल्होत्रा। कर्नाटक के स्टेट के चिन्ना तिरुपति से हैं प्रकाश शामल्या, अश्वनी आनंद और मनवित रमेश। इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर गांव थाना पंजाब से हरजिंदर चिंदा, जसवी जस्सी और सीता, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, पार ढींगिया की फरमाइश है बागपत यूपी से। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं छत्रपति संभाजीनगर से राजेश रसावले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि राजेश और उनके कुछ और साथी। करनाल से फरमाइश की है बलविंदर सिंह सोढ़ी साहब ने और अगला नगमा आपकी नजर में करते हैं आप है गाडगेनगर यतमाल महाराष्ट्र से हमारे सामने लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे और साथ में शैलेश। शाहरुन अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी और तस्लीम अंसारी की फरमाइश है हररपुर मटकली जिला बरेली यूपी से। और मजनू कटीला दिल्ली से अगला नगमा सुनना चाहते हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा। राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी और साथ में बुल्की वाली फलना जाओ, गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से, आसेगांव बाजार से फरमाइश करण रंजीत पुनकर की भी है इसी नगमे के लिए। और सिद्धार्थ नगर दरियापुर भावली से गजानंद ये नवदीप ले साथ में सुशील। इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर है वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, हमेशा की तरह बिमला अनेजा के साथ और बड़ा खूबसूरत रंग बिरंगा ईमेल हमेशा की तरह आज भी मौसूल हुआ, शुक्रिया जनाब। नलेश्वर नगर नरबेल विदर्भ से पीएस नाहौकर, निर्मला नाहौकर और साथ में विशाल। राहुल मनवर, सरला मनवर, बेबी प्रियांशी, शाहूनगर, यवतमाल महाराष्ट्र से। और अगला ईमेल हो गया है रिपीट, इसको भी करते हैं यही टॉप। और फिलहाल सुनवाते हैं बहुत खूबसूरत सा नगमा, शराबोर हो जाइए बारिश की इन बूंदों में, बरखा के इन बूंदों में।

और तमिल शत प्रोग्राम की अगली पेशकश है धरती फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ नगमा है और शंकर जयकिशन की है मौसीकी। और सुनने के लिए बेकरार आप तमाम सामीन अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला और सबाहत हुजरे की फरमाइश है सांगली जत शहर से। और आप हैं नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा महाराष्ट्र से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल, साथ में नदीम पटेल और ये फरमाइश है मधुसूदन भट्ट और साथ में उनके हैं आरती भट्ट और जैस्मिन भट्ट जयराज प्लॉट राजकोट से। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं बैलड़ी लबस्ता छत्तीसगढ़ से शिव प्रसाद देवदास, मोहित कुमार देवदास और साथ में युवती देवदास, अनुपम कुमारी, अपूर्व सिंह, राकेश कुमार हैं जमशेदपुर से, सुनने के मुंतजिर अगले नगमे को। और चंद्रेश गौहर वंदना गौर साथ में जयपाल यादव सागर एमपी से है आपकी फरमाइश। और मोटाला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला सुरलकर और साथ में आरती कुमारी, मनोज जेठवा साथ में है उनके हर्षा जेठवा हमेशा की तरह, बुराव के नगर श्रीरामपुर से है आपकी फरमाइश। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू, विनोद मोणत, नेहा जैन, दीपक मोणत बोरखेड़ा उज्जैन से हैं। और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं हमारे कुछ और सामीन पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुआभा का श्वेता भक्त, साथ में किशु ताशु और कासगंज यूपी से हैं गीता नायक, योगेंद्र नायक और निहारिका सुशांत नायक। अगला नगमा आपकी नजर करते हैं गंगोला दातागंज बदायूं से इशरत खान, सायरा बेगम और रऊफ खान और अहले खाना और ये फरमाइश आई है अशोक दले, सविता दले, निकेत दले की, कुम्भार गली श्रीरामपुर से। अगला नगमा आपकी नजर भी करते हैं और आप हैं सल्लाही सोकनहा नेपाल से, अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, साथ में है राहुल कुमार शर्मा और ये फरमाइश है मोहम्मद रुकनुद्दीन मंठा, शबीर बनहट्टी, आसिफ इकबाल की, कर्नाटक के गुलबर्गा से।

जी हाँ दोस्तों, कहीं कहीं तो मौसम भीगा भीगा है और कहीं अभी तपिश है, शिद्दत है गर्मी की। तो चलिए दुआ करते हैं जनाब कि सब जगह मौसम खुशगवार हो जाए और ये बरखा जो है चारों तरफ छा जाए। और अब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में एक और खूबसूरत दिलकश नगमा। फिल्म है जब प्यार किसी से होता है, शैलेंद्र के बोल, मौसीकी शंकर जयकिशन की है और सुनने के ख्वाहिशमंद आप तमाम सामिन। छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, इकबाल अहमद, इमरान अहमद और उनके अहले खाना, और इसी नगमे को सुनने के मुंतजर हैं हमारे कुछ और सामिन। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं जनाब।

आगे बढ़ने से पहले, प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण हैं, करणवीर हाउस भुचो कैचिया बठिंडा पंजाब से, और ये फरमाइश आई है पवन गौड़ तन्मय पूर्वी गौड़ आशीष गौड़ की, आवास विकास कॉलोनी कासगंज से, और ये भी यूपी से है, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से हैं, ओम प्रकाश राय उषा राय साथ में अमित कुमार राय, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, सुनना चाहते हैं अगला नकमा नासिर शेख नाजे नासिर साजिद शाहिद और रजाक मोहम्मद शमीम बेगम इरफान खान की फरमाइश है, हनुमानगढ़ राजस्थान से, नरेंद्र मिर्गे प्रियदर्शी मिर्गे डॉक्टर प्रियंका कालपांडे साईनगर आरवी महाराष्ट्र से सुनने के मुतमन्नी अगले नकमे को, जलालाबाद वेस्ट से फरमाइश की है सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा दिशानी और अहले खाना ने, और आप हैं संजय साहू साथ में सुजाता और शशांक पोटिया कला दुर्ग से, और ये फरमाइश है ये संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव की, इसी नगमे को सुनना चाहते हैं आफ्ताब अहमद अंसारी रियाज अहमद अंसारी मास्टर अनवर हैं शेरवानी स्कूल गंज टुंडवारा से, आपने ये फरमाइश हमें इरसाल की है, और अगला ईमेल रिपीट हो गया इसको साइडलाइन करना पड़ेगा दोस्तों, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर प्रमोद येमेकर और प्रदीप येमेकर, सिद्धार्थ गोंदानी अर्चनाताई गोंदानी की फरमाइश है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से, और इसमें जो तीसरा नाम है वो किस वजह से शामिल नहीं कर रहे ये आप बखूबी जानते हैं दोस्त, हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं चूंकि इनका नाम किसी दूसरे ईमेल से आता है और वो अभी कुछ देर में शामिल भी हो जाएगा जनाब। अब्दुल गफ्फार डावर साथ में है अब्दुल हक टावर जियाउल हक टावर नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से, इसी नगमे को सुनना चाहते हैं दातार सिंह शेखावत संगीता कंवर और तुषार सिंह गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से आपकी फरमाइश है, और आप हैं किशोर नगर अमरावती से हीरामन शिंडे शीला देवी शिंडे, और यहां वो नाम जैसे कहते हैं फ्लिप कर दिया गया है, वो साहब इनका नाम लिखना चाहते थे ये उनका नाम लिखते हैं, अपने यहां से अपने ही नाम लिखे तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि दोनों के जब ईमेल आते हैं तो फिर ये घालमेल अच्छा नहीं लगता दोस्तों, और कहीं ना कहीं ये चोरी पकड़ी जाती है। रिगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा, और अब बारी है नगमे की चूंकि वक्त कम है तो नगमा सुनवा देते हैं, और बाकी तो नाम तो जनाब आपके शामिल करते ही रहेंगे ईमेल के जरिए, तो आइए सुनते हैं ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज में।

और लाइन ऑफ क्रेडिट समेत मुतअद्दद शोबों में मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। मगरबी बंगाल कानून साज असम्बली ने आज मगरबी बंगाल अवामी तहफ्फुज और समाज मुखालिफ सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक बिल 2026 और मगरबी बंगाल में अमन अमान कायम रखने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दी। मस्कुरा बिल की हिमायत में 176 वोट हासिल हुए जबकि मुखालिफत में 41 वोट पड़े। वहीं बी सरकार ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस बिल के तहत ऐसे अफराद को जिनकी समाज मुखालिफ सरगर्मियों से अवाम की सलामती अमन अमान और नज्म व नस्क को खतरा लाहक हो सकता है उन्हें एहतियाती तौर पर ज्यादा से ज्यादा 12 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है। हुकूमत के मुताबिक इस कानून का मकसद समाज दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों पर काबू पाना, उन्हें सख्त सजा देना और उनकी साजिशी मनसूबाबंदी को नाकाम बनाना है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में हरियाणा और राजस्थान की हुकूमत ने आज नई दिल्ली में जमुना आबी प्रोजेक्ट की तामीर और उस पर अमल दरामद के लिए एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए। इस मौके पर बात करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस मुफाहमतनामे से हरियाणा और राजस्थान के लोगों को तकरीबन 3 दहाइयों से दरपेश पानी के मसले का हल हो गया है। उन्होंने कहा कि यह मुआहदा वजीर आजम नरेन्द्र मोदी के वसूल मुजाकरात के जरिए हल की एक बेहतरीन मिसाल है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस मुआहदे के तहत अगले माह से अक्टूबर तक 3 जेर-ए-जमीन पाइप लाइन्स के जरिए यमुना कैनाल से राजस्थान को तकरीबन 580 मिलियन क्यूबिक पानी मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन पाइपलाइन से दोनों रियासतों के अवाम को पीने का पानी मुहैया हो सकेगा। इस दौरान जल शक्ति के वजीर सीआर पाटिल ने कहा कि इस मुआहदे के तहत मानसून के मौसम में राजस्थान के हिस्से का पानी हथनी कुंड बैराज से वेस्टर्न यमुना कैनाल के निजाम के रास्ते बिछाई गई जेर जमीन पाइपलाइन के जरिए फराहम किया जाएगा। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर फौजी हमले को आर्जी तौर पर रोकने और आबनाए हुरमुज से तजारती बहरी जहाजों की आमदोरफ्त दोबारा शुरू करने पर इत्तफाक किया है। इस दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुजाकरात का एक नया दौर कल कतर की राजधानी दोहा में होगा। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि ईरान ने मीटिंग की दरख्वास्त की थी और ये मीटिंग दोहा में होगी। ताहम उन्होंने मुजाकरात के एजेंडे या दोनों ममालिक की नुमाइंदगी की सतह के बारे में मजीद तफसीलात फराहम नहीं की। सनती पैदावार के इशारिये आईआईपी के मुताबिक मई 2026 के दौरान भारत की सनती पैदावार में सालाना बुनियाद पर 5.1% का इजाफा हुआ। इससे कबल अप्रैल में सनती पैदावार की शरह नमू 4.9% थी। मई के आदादोशुमार अप्रैल के आदादोशुमार के बाद जारी किए गए हैं जो कि नए बुनियादी साल 2022-23 के तहत आज सरे 9 तश्कील शुदा आईआईपी सीरीज के पहले आदादोशुमार थे जिसमें जदीद तरीन मसनूआत की फहरिस्त वजन और मुख्तलिफ शोबों की ज्यादा जाम शमूलियत शामिल हैं। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि हुकूमत ने बुनियादी सानवी और तीसरे दर्जे के तिब्बी सहूलती मराकज में तोसी करके मुल्क के सेहत निजाम को नुमाया तौर पर मजबूत किया है। नई दिल्ली में सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी कौंसिल की 16वीं कॉन्फ्रेंस से खताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि शहरियों और सेहत निजाम के दरमियान रबते के पहले मरकज के तौर पर मुल्क भर में 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर कायम किए जा चुके हैं। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों जेली हिमालयाई मगरबी बंगाल बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरला और माहे में कल शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक अगले 2 रोज के दौरान उड़ीसा झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ तेलंगाना तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकल में भी शदीद बारिश का इम्कान है। भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली पहली टीमों में शामिल हो गई है। ताहम मर्दों की टीम को बराह रास्त क्वालिफाई करने के लिए रवा साल के अख्तितम तक आईसीसी की मर्दों की टी20 की रैंकिंग में एशिया की सबसे आला दर्जे की टीम बनना होगा। बैन अल-अक़वामी क्रिकेट कौंसिल ने इस बात की तस्दीक की है कि भारत ऑस्ट्रेलिया बरतानिया और जुनूबी अफ्रीका ने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों में खवातीन टी20 मुकाबलों में अपनी जगह यकीनी बना ली है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर।
संघ जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक्कदा दिफाई एजाजात की तकरीब में बहादुरी के एजाजात अता किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स के साथ 50 साल पुरानी शराकतदारी अब जिद्दत तराजी, पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली के जरिए

साजन देहलवी ने इस नगमे को कलम किया और तर्ज बनाई थी श्याम जी घनश्याम जी ने। और जहां तक फिल्म की बात है, सब समझ गए होंगे ठोकर फिल्म का ये नगमा था। अब एक और नगमा आपकी नजर करने जा रहे हैं सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में है ये नगमा। फिल्म है प्यार की बाजी, मौसीकी जिम्मी की और नगमा निगार अख्तर रुमानी। चलिए एक पहेली आपसे भी पूछ लेते हैं, इस फिल्म में ये नगमा किस अदाकार पर यानी हीरो हीरोइन पर ये फिल्म आया गया है? और आप शामिल करते हैं आपके बहुत सारे ईमेल्स। खेलवादार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद्र मल्होत्रा हैं और ये फरमाइश है, ये बुलडाणा महाराष्ट्र के आसल गांव बाजार से संतोष एस काले, गजानन सालोकर और देवेंद्र भटकर की। और बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, साथ में उत्कर्ष चौहान। और अगला ईमेल रिपीट हो गया, इसको करते हैं साइड लाइन। छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से सुनील सामंग, साथ में उनके अंजलि सुनील। और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से नाजिया नूरी नाज, शाजिया शाहीन नाज और साथ में नुसरत जहां नाज। और अगला ईमेल इसी ईमेल आईडी से, इसलिए ये शामिल नहीं किया जाएगा जनाब, एक ही ईमेल आईडी से एक ही नाम हम शामिल करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ और नाम शामिल कर लेते हैं क्योंकि ये तो ईमेल शामिल हो चुका है। जल्दी जल्दी से मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री, अयुब खत्री, छिपा कॉलोनी खंडवा, थोड़ा सा वक्त लगा उसको रिफ्रेश करने में, इसलिए पन्ना टॉकीज नेपालगढ़ से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, साथ में पिरखर और उनके अहले खाना। और ये फरमाइश आई है डॉक्टर सुरेश जाधव, नीता जाधव, सुनल प्रसाद जाधव की, नेहरू चौक पैठण से है। और अगला ईमेल भी रिपीट है, इसको साइडलाइन करते हैं। शनिमंदी चौक खंडवा से अनिता सैनी, दुर्गा प्रसाद सैनी, साथ में गौरव। और ये फरमाइश ईमेल मौसूर हुआ है बिलगाम गेट कासगंज से हैं असलम सैफी, जेबुनिसा बेगम, साथ में सद्दाम सोनी और मनोज सेन, साथ में उनके हैं पूनम सेन, दीपक सेन, सिटी सेंटर खंडवा से। अगले नगमे की फरमाइश स्वर्ण सिंगल, दजीत सिंह और अविराज की भी है, गांव लोगा ठाकुरावाला से। और पहला नगमा जो हमने सुनवाया था उसको सुनना चाहते हैं सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, शव्या और अहले खाना। और छत्तीसगढ़ के चूड़ी लाइन मुंगेरी से हैं मोहम्मद इसाक, खदीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक और अहले खाना। और आप हैं पश्चिम थोक गंज टंडवारा से मास्टर अलीम रजा सिद्दीकी, मास्टर मुनव्वर अंसारी और फैजुल अलीम सिद्दीकी। ये फरमाइश उन दोस्तों की जो शामिल हो चुके हैं, तो साइड लाइन करना पड़ेगा इनको। जवानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल और साथ में हैं दीपक और उनके कुछ और साथी। शंभुलाल खटक, विमला देवी, दीपक कुमार हैं गांव जाखोद राजस्थान से। और ये फरमाइश आई है कि तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, मीनाक्षी गोस्वामी की नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। रोशनलाल देवांगन, कौशल्य देवांगन, हेमलता है भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, शुभम आकोट से। और आप हैं बिट्टू भाटिया, रजत भाटिया और रीटा भाटिया झज्जर हरियाणा से। ये फरमाइश आई है लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तृप्ति की। और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं वो दोस्त जिनके नाम है कुमार गली कोलगांव से, पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रथमेश चंदन और उनके बहुत सारे साथी। बड़ा रंग बिरंगा ईमेल आपने भेजा है, शुक्रिया जनाब। राज पलेस, मोहनलाल भंजन यूपी से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन और उनके अहले खाना। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं सूरज चौधरी साहब कोलकाता से। और अगला ईमेल मिला है अभिजीत गोहन का, राही सरिता गोहन का, अर्जुन को गोहन का डुगू का, मेहनगर उमरखेड़ से हैं। और ऊंचे गांव नांदेड़ महाराष्ट्र से देवानंद शिंदे पाटिल और विजय महोबिया, कविता महोबिया, पेंटर बाबू, रामगंज खंडवा से हैं। ये फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ है तंबरम चेन्नई से हैं शाहिद अली, इफ्फत फारूकी और हिफ्जा अली। और लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, साथ में रानी मानिकपुरी। कंडला बंदरकश से जगदीश जौहरी और पूजा और पायल जौहरी की फरमाइश भी है अगले नगमे के लिए, उस्मान शेख फौजी।

सायरा बानो और करिश्मा है परसोगा लातूर से। ये फरमाइश मेल मौसूल हुआ है वेदमिड्डा अलका मिड्डा का गांव नाई वाला जिला हनुमानगढ़ से और इसी नकमे को सुनना चाहते हैं अल्तमश समीना और मुदस्सर जुम्मा नगर खंडवा से। अगला ईमेल रिपीट है, इसको करते हैं साइडलाइन। पोषण बंचोर चंद्रकिरण बंचोर और आज जगह का नाम और सब कुछ गायब है जनाब। चलिए शामिल तो हो गए आप। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ और अगला नकमा आपकी नजर पे करते हैं। इम्तियाज इमाम आतिश ताहिरा परवीन आतिश साथ में हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा बिशनपुर गेडी झारखंड से। विजेंद्र विश्वकर्मा सोनाली विश्वकर्मा सोनम विश्वकर्मा है बन्ने बुजुर्ग पलेरी टिकमगढ़ से। और अगला ईमेल है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले रेखा कामले और राखी कामले का। तो आइए सुनते हैं जनाब ये नगमा मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में।

आओ प्यार करें। जी हाँ, ये इन्विटेशन तो है ही, लेकिन फिल्म का नाम भी है जनाब, और आवाज है लता मंगेशकर की, मौसीकी उषा खन्ना की है। इस नगमे में सुनना चाहते हैं सौरभ निषाद, प्रकाश निषाद, बिल्लू निषाद, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, और वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी अरोड़ा की फरमाइश भी है, अमोल मानकर, शोभा तयमानकर, श्लोक कुमार है बुल्डाना की बटशिंगी से, और अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक पहाड़गंज के मुल्तानी ढांडा से आपने फरमाइश की है, गुलाम साबिर रही मिराज जहां, और साथ में है ताज मोहम्मद अंसारी लक्सर हरिद्वार से आजाद नगर, और वैशाली कटंकर, रमेश कटंकर अकोला गांधीबाग से आपने फरमाइश की है। नगमा तो आपको हमने सुनवाई दिया रफी साहब की आवाज में, ठोकर फिल्म का, उम्मीद करते हैं सुन लिया होगा। हिना साबरी, आयजर इमाम, मोहम्मद हसन इमाम है गिरडी झारखंड से, और ये फरमाइश आई है शबनम और अकरम साथ में उनके तबरेज भी हैं ठीकरी से, ये फरमाइश ईमेल मिला है। मंगल जनागल रही, रोशनी जनागल, अंकुर जनागल इंदू है एमडी पत्रोड़ा श्रीगंगानगर राजस्थान से, और इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर हैं डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जिशान अहमद सिद्दीकी, पुरानी भिलाई तीन चरादा छत्तीसगढ़ से, और ये फरमाइशी ईमेल मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद हसन पवार का है, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से हैं, अजीत भावसार, प्रणबा भावसार, भावेश हैं विरमगाम गुजरात से सुनने के मुंतजिर, और दिलीप रामेकर, हर्ष रामेकर, अक्षय रामेकर हैं राहड़ गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से, और ये फरमाइशी ईमेल दारा पंडित संजय शर्मा प्रियंका का है, चौटाला हरियाणा से हैं, चंपालाल दुबे, दर्शित और अनंत हैं भोपाल से, इसी नगमे को सुनना चाहते हैं बाबू ठेकेदार, शेख वजीर, सोहेल शेख, मोटाला बाजार से, और जूनी तलैया से फरमाइश की है महेंद्र चौरसिया, शशि चौरसिया ने, और आप हैं संजोग नगर भोपाल से सुहानी, मनु और तनु दुबे, और ये फरमाइश ईमेल मिला है गांव भोजपुर तला सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद और राहत अली का, और इसी नगमे को सुनने के मुंतजर हैं जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, बिलिस डिकेस्टो, जनकपुरी सहारनपुर से। तो आइए नगमा सुन लेते हैं जनाब, और जैसे जैसे वक्त रहेगा तो थोड़े बहुत नाम भी शामिल कर लिए जाएंगे।

चलिए जनाब, थोड़ी सी गुस्ताखी हम भी कर लेते हैं, नाम शामिल कर लेते हैं। राजावत कॉम्प्लेक्स, नई सड़क शाहजहापुर एमपी से, मनमोहन राजावत राज, मधुर राजावत और राशि रक्षित, और पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत और सुलोचना भगत। और ये फरमाइश आई है गंज डुडवारा गणेशपुर से फिरासत हुसैन और कमर जहां और शिफा सिमरन की। शाहजी बोर्ड के उत्तम गंधाड़े नंदा बोर्ड के हैं हिंगोली महाराष्ट्र से, और कुछ और दोस्त हैं प्रियंका कुमारी, बंदना कुमारी और एले खाना रेणु शर्मा के साथ में। विराट नगर नेपाल से आपकी फरमाइश मिली है। मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान इरफान है गांव दुलापुर मुरादाबाद से, और ये फरमाइश मिली है नाभा पटियाला पंजाब से, सोमदत्त कैरव ज्योति रानी और उनके एहले खाना की। हयात कॉलोनी अरे बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकबल और उनके एहले खाना। और ये फरमाइशी मेल प्रभुराज कोटेचा, हंसा कोटेचा, आशीष कोटेचा है जंक्शन प्लॉट राजकोट से। पहल बाजार पहल शेगांव महाराष्ट्र से नील मोहाल, अनीस मोहाल माफ कीजिएगा, मोहम्मद दानिश मोहाल, मोहम्मद रिजवान मोहाल और जसबीर सिंह इल्मावादी, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह है निमनाबाद जींद से, और नथुराम शर्मा, ललित शर्मा, इंदिरा शर्मा है मंडी हरजीराम मालोट से, सुरेश नारंग साथ में, आशा नारंग और सोनाली प्रतीक पाठिक लिखा है आपने सहारनपुर से, फरमाइशी मेला मेरे साल किया है। और मोहम्मद कलीम अंसारी के साथ

कौन है देखना पड़ेगा। ज़ाहिरा बेगम अंसारी मोहम्मद यान अंसारी गंज टंडवारा यूपी से, और ये फरमाइशी मेल मिला है। मुबारकपुर आलमगढ़ से जावेद अख्तर आई, शमसुल कमर आई, साथ में बेगम रुखसार और अहले खाना। दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायाब, आपने रघुवीर नगर दिल्ली से फरमाइश की है। सोपान ताइड़े, वसुंधरा भोजने, पी एस नाव करें, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से। एक और नगमा मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म है राज, और कुछ नाम भी शामिल कर लेते हैं। बाजार रोड मुंगी सापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुनिसा, शबिस्ता और अहले खाना। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा और विशु खेड़ा। विठल यादव, अंशु यादव, पवन राय यादव नागपुर महाराष्ट्र से हैं। धनौरी तेलीवाला से निशाद सलमानी, नौशा सलमानी, बेबी आलिया। विनोद मंडलकर, वीणा मंडलकर, विविधा मंडलकर हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। पंधर कावड़ा से अनिल उषा बुरांडे, अनुश्री धनश्री बुरांडे, और अगला ईमेल रिपीट है, इसको कहते हैं साइडलाइन। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति हैं बटेना पाटन दुर्ग से। आष्टी जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर मसरत। छन्नूलाल श्रीवास, साथ में उनके हैं अंजू, योगिता श्रीवास, सज्जन और उनके कुछ और साथी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आपने फरमाइश की है, और ये फरमाइशी ईमेल गन्नूलाल रजक, साथ में उनके कुछ और नाम भी हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अश्वनी वर्मा, साथ में होंगे गणेश राम मिस्त्री और अहले खाना, भाटापारा छत्तीसगढ़ से। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, दूलापुर मुरादाबाद से। और कमल पाठक, सुनील पाठक, गविया मल्होत्रा है, दीपिका मल्होत्रा माफ कीजिएगा, अनारकली बाजार जगराव से ये फरमाइश मिली है। और प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी, एम ए वहीद रुमानी, मोहम्मद फसी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, फुलाउंग निजामाबाद तेलंगाना से। संजय चौरसिया, वंदना चौरसिया, कुशाग्र चौरसिया, फर्रुखाबाद नाला मच्छरट्टा यूपी से। पंजाब रामटेकी, यशोधरा, शव्या, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से। और ये फरमाइशी ईमेल मौसूल हुआ है व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से, भारत भूषण, साथ में अंजू श्रीवास्तव। कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, राजनगर कांति निकेतन से हैं। और दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से हैं रेखा बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता और अन्विका तनुश्री। शेगांव बुलडाला महाराष्ट्र से हैं संतोष एसकाले, तेजस एसकाले, लोकेश एसकाले और उनके बहुत सारे साथी। बालकेश्वर कॉलोनी आगरा से हैं सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया और वीर चौरसिया। गुरमीत सिंह हैं मीता साहब साउथ एक्सटेंशन से, और ये फरमाइश ईमेल मिला है। आनंद राज सागर, तरुलता सागर का, चांदखेड़ा अहमदाबाद से। मदर अली अंसारी, रजी बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, अस्तूपा जिला मऊ से। और रफीक शिपा की फरमाइश है गांव कोसाना जोधपुर राजस्थान से।

0: और सेशल्स के राजनयिक संबंधों का ये 50वां वर्ष ही रहा। आज हम इस विषय पर विस्तार से विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं विदेश मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा। प्रोफेसर मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो सबसे पहले हम इसी सवाल से इस चर्चा को शुरू करते हैं कि जिस तरह से भारत ग्लोबल साउथ की एक आवाज बनकर उभरा है और विकास के सहयोगी के तौर पर भारत एक बहुत बड़ा देश बनकर उभरा है, सेशल्स की यात्रा में आपको इस संबंध में क्या नजर आया?
1: देखिए, भारत और सेशल्स के बीच में संबंध पिछले 50 सालों में हमने देखा है कि वो दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर नहीं है, उनमें एक बड़ा महत्वपूर्ण आयाम ये है कि भारत सेशल्स के लिए चाहता है कि वो हिंद महासागर में और हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं, चाहे वो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हो या आर्थिक सुरक्षा संपन्नता को लेकर हो, सामुद्रिक सुरक्षा हो, इन तमाम आयामों पर सेशल्स ऐसी स्थिति में रहे कि वो न सिर्फ अपने ऊपर आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके बल्कि क्षेत्र में भी, हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी वो इन चुनौतियों का सामना करने में एक सकारात्मक भूमिका निभा सके। तो मल्टीलैटरल एस्पेक्ट में भारत की कोशिश रही है कि सेशल्स एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर की भूमिका निभाए, तो ये दूसरा उसमें आयाम है। तीसरी एक चीज है कि भारत ने हमेशा ये कोशिश की है, जैसा कि हम जानते हैं कि महासागर नीति जो पहले सागर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसका आगाज पहले किया था, अब वो महासागर नीति में, उसमें भी हम देखते हैं कि महासागर नीति के तहत उद्देश्य ये है कि जो छोटे आइलैंड स्टेट्स हैं, छोटे जो हिंद महासागर के और बड़े पैमाने पे अगर हम कहें कि ग्लोबल साउथ के जो छोटे द्वीपीय देश हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनकी जरूरतें जो है, जनता की जो आवश्यकताएं हैं, इन देशों की जो आकांक्षाएं और उनकी जो चिंताएं हैं, उनको दूर करना और उनको एक हाशिए से उठा करके उनको मेन स्ट्रीम में लाना, ये भारत की नीति रही। तो भारत और सेशल्स के संबंधों में ये साफ तौर पर दिखता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वक्तव्य दिया कि हम साथ चलते हुए हम अपने संबंधों में भरोसे और भरोसे के साथ सहयोग और सहयोग से आज हम जन कल्याण की ओर बढ़ रहे हैं, ये हमें प्रधानमंत्री की विजिट में भी दिखता है और भारत सेशल्स के संबंधों में भी दिखता है। क्योंकि बड़े पैमाने पर भारत के जो भी, अगर हम लिस्ट ऑफ एमओयूज को देख लें या पिछले तमाम वर्षों में भारत ने जो सहयोग सेशल्स के लिए किया वो सेशल्स की जरूरतों पर केंद्रित रहा है, और ऐसा वहां के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक ने भी कहा कि भारत सेशल्स संबंध सेशल्स की जरूरतों को ध्यान में रखे गए हैं, और यही मुझे लगता है इस द्विपक्षीय संबंध की बड़ी खास बात है।
0: तो कैसे आप देखते हैं किस तरह से भारत सेशल्स के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और जिस तरह से सहयोग भारत ने रखा है वो कैसे मदद करेगा दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ करने में?
1: एमओयूज की जहां तक बात है उसमें क्षमता को बढ़ाना, कैपेसिटी बिल्डिंग, सारे एमओयूज में कहीं ना कहीं वो दिख रहा है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सेशल्स के सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हो भारत के सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरन अफेयर्स में, या फिर वो आईसीएआर और सेशल्स की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके बीच में सहयोग हो, तो कैपेसिटी बिल्डिंग एक बहुत बड़ा आयाम है इन संबंधों का। साथ ही साथ जैसा कि हमने पहले भी देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेशल्स के लिए एक बड़ी जरूरत है, वहां पर तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भारत ने काम किया है और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार, मुझे लगता है, किसी देश के साथ संबंधों में जन कल्याण की बात कही,
0: बिल्कुल,
1: और वो इसलिए है कि सेशल्स के लिए न सिर्फ एक नया सेशल्स नेशनल हॉस्पिटल बनेगा इस एमओयू के तहत, बल्कि वो तमाम जेनरिक दवाएं और मेडिसिनल सप्लाईज जो है वो जन औषधि स्कीम के तहत सेशल्स को दी जाएंगी। तो एक तरह से हमें दिख रहा है इन एमओयू के तहत कि बड़ा ही समेकित एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग और एग्रीमेंट्स का इन दोनों देशों के बीच में साइन हुआ है। जहां तक लाइन ऑफ क्रेडिट का सवाल है उसमें भी एक बहुत, जो 175 मिलियन की बात तमाम बार दोनों देशों के नीति निर्धारकों के बीच में बातचीत में भी आई और मीडिया में भी तमाम ये खबरें आई, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अम्ब्रेला लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट है जिसमें 125 मिलियन तो लाइन ऑफ क्रेडिट है, 50 मिलियन ग्रांट के तौर पर दिया जा रहा है। तो सेशल्स की जो आर्थिक क्षमता है उसको भी ध्यान में रखते हुए इन एग्रीमेंट को ये रूप दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा है। साथ ही साथ देखिए, सेशल्स एक ऐसा देश है, छोटा सा देश है जिसकी तटरेखा बहुत बड़ी है, 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की उनकी तटरेखा है, तो उसके लिए स्पेस सैटेलाइट एप्लीकेशंस और कैपेसिटी बिल्डिंग उस क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में, सैटेलाइट इमेजरी के क्षेत्र में, ये मुझे लगता है कि सेशल्स की क्षमताओं को एक बड़े नए स्तर पर पहुंचाएगा जिससे सेशल्स हिंद महासागर में भी जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की जो चिंताएं हैं, चाहे वो

0: पायरेसी को लेकर हो या ड्रग ट्रैफिकिंग नारकोटिक्स को लेकर हो या गन रनिंग को लेकर हो, उनमें भी सेशल्स की क्षमता बढ़ेगी तो हिंद महासागर में मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ेगी, जो दोनों ही देशों के लिए और क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छा है।
1: आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और सेशल्स के संबंधों और समुद्री सुरक्षा के बारे में क्या कहा।
2: अवर कोऑपरेशन इन मैरिटाइम सिक्योरिटी कैपेसिटी बिल्डिंग हाइड्रोग्राफी एंड मैरिटाइम डोमेन awareness reflect our shared commitment to a safer and more secure region. I met President Albany Topath this morning. Our vision is captured in the idea of Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions Mahasagar. This vision recognizes that our futures are interconnected and interdependent and we will continue to work together for a safer and more secure Indian Ocean region.
1: तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संबंधों को दूसरे देशों के साथ मजबूत करना भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और सेशल्स जैसे देश इसमें कितनी बड़ी एक साझेदारी की भूमिका निभा सकते हैं।
0: देखिए, भारत की हिंद प्रशांत क्षेत्र में, खासतौर से हिंद महासागर के क्षेत्र में, भारत की रणनीति सबसे पहले तो ये है कि दुनिया की तमाम महाशक्तियों के इतर भारत ये चाहता है कि इस क्षेत्र में सभी देश, सभी मित्र देश एक अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं, उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जाए और सभी मिलकर कॉमन सिक्योरिटी पर काम करें, कोऑपरेटिव पीस के उद्देश्य पर काम करें, जिससे कि यह क्षेत्र न सिर्फ स्थिर रहे बल्कि शांति भी इस क्षेत्र में बनी रहे। इसलिए मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस इस लिहाज से बहुत जरूरी है और महासागर के कॉन्सेप्ट में सेशल्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, उतनी महत्वपूर्ण में मुझे लगता है जितनी की मॉरिशस या मॉलदीव्स या श्रीलंका की है। तो इस लिहाज से महासागर नीति के तहत भारत का जो उद्देश्य है, भारत का जो लॉन्ग टर्म विजन है कि सभी का विकास हो, जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, तो ये सारी चीजें इस नीति में हमें दिखती हैं। महासागर के लॉन्च होने के बाद 2025 में, सागर नीति को 2015 में लाया गया था, 2025 में उसे अपग्रेड करके महासागर नीति का रूप दिया गया, तो पिछले एक साल में हमने देखा कि तमाम जो हिंद महासागर के छोटे द्वीपीय देश हैं उनके साथ सहयोग में इस बात को बड़ी मुखर तौर पर कहा जा रहा है कि सभी देशों की क्षमताओं को एक साथ जोड़कर हिंद महासागर के क्षेत्र में हमें ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी दोनों ही एस्पेक्ट्स में काम करना है। तो मुझे लगता है कि भारत की नीति बहुत स्पष्ट है कि एक इंक्लूसिव रूल्स बेस्ड पीसफुल और स्टेबल ऑर्डर हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में बने।
1: जी, सेशल्स की नेशनल असेंबली को भी प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों को अपने संबोधन में रेखांकित भी किया था, तो उस संबोधन से भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और बातों को आप हमारे श्रोताओं के समक्ष रखना चाहेंगे।
0: देखिए, एक खास पहलू भारत और सेशल्स के संबंधों में वहां पर मौजूद भारतीयों और भारतवर्षियों का योगदान है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारतीय जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, एनआरआईज हैं और जो हमारा डायस्पोरा है वहां पर, वो 8 से 10% की संख्या वहां पर टोटल पॉपुलेशन में देता है और उनका योगदान बहुत प्रमुख है। पहले तो वो 1770 में जब पहली बार भारतीय सेशल्स पहुंचे तो वो ब्लू कॉलर वर्कर्स थे, वो खेतों में और इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए गए थे, लेकिन आज भारतीयों का कॉन्ट्रीब्यूशन, और मैं डायस्पोरा के साथ साथ एनआरआईज को भी जोड़ूंगा, वहां सेशल्स में एडवांस जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो टेली कम्युनिकेशन हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग के सेक्टर्स हो, सिविल इंजीनियर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे हुए हैं, या वहां के सिविल सर्वेंट्स, इन तमाम क्षेत्रों में भारतीयों का योगदान बहुत प्रमुख है। इस बात को प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेखांकित किया। साथ ही साथ जो भरोसे की नींव पर आधारित जो ये संबंध है, इसमें ये जो तमाम एस्पेक्ट्स आते हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है खाद्य सुरक्षा का, जो सेशल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमेशा से भारत से चावल सेशल्स को जो है वो भेजा जाता है, कभी कभी वो एक्सपोर्ट के तौर पर, बहुत ऐसे भी ओकेजन्स आए हैं जब भारत ने चावल सिर्फ जो है वो सहायता के लिए भेजा। सेशल्स जैसे देश आज जलवायु परिवर्तन और बहुत तेजी से बदलती हुई ये जो क्लाइमेट डिबेट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उससे जूझ रहे, उनकी इन तमाम जो जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट रिलेटेड कैलामिटीज हैं, उनसे लड़ने में भारत क्या योगदान दे सकता है, दोनों देश मिलकर क्या काम कर सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी कहा कि 50 साल का सफर हमने तय कर लिया है, आगे आने वाले 50 सालों में हमें क्या करना है। तो मुझे लगता है कि सेशल्स को लेकर एक बहुत दूरगामी नीति बनाने की बात उन्होंने कही और इसमें में सेशल्स के नीति निर्धारकों का, सेशल्स की जनता का और सेशल्स में रह रहे भारतवर्षियों का भी योगदान उन्होंने मांगा। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव, एक बड़ा ही व्यापक और इंक्लूसिव एजेंडा उन्होंने प्रस्तुत

0: या जिसे सेशल्स की जनता और वहां के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और राष्ट्रपति ने बड़े ही खुले मन से स्वीकार किया।
1: जी, जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, सेशल्स की अब हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो इन देशों में जो अपने रणनीतिक संबंधों में भारत विकास का जो एक क्षेत्र लाया है और सहयोग और जनकल्याणकारी जो साझेदारी है इस क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहा है, वो कैसे भारत अपने एक सकारात्मक प्रभाव को इन देशों के साथ प्रस्तुत कर रहा है और कैसे विश्व में ये एक संदेश भी जा रहा है कि भारत अपने सहयोगियों के साथ एक विकास का प्रबल सहयोगी बनकर उभर रहा है।
0: जैसे मैंने पहले कहा कि भारत की महासागर नीति 2025 की, उसमें बहुत स्पष्ट है कि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, खासतौर से ये हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश हैं, उनके साथ सहयोग में एक बड़ा स्तंभ ये होना चाहिए कि इन देशों की, जिनकी बात दुनिया के किसी भी स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो या दुनिया के और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर, उनकी कॉप की जो मीटिंग्स हैं उन पर, इन छोटे देशों की बात सुनी नहीं जा रही। तो इसलिए ग्लोबल साउथ की आज सबसे मुखर और सबसे सशक्त आवाज बनकर भारत उभर रहा है, जो इन देशों की जनता की जो सर्वाइवल से जुड़े इश्यूज है, कृषि है, खाद्य सुरक्षा है, फिशरीज का सेक्टर है, मछली पालन का, क्योंकि इलीगल और अंडर रिपोर्टेड फिशिंग को लेकर के, IEUU जिसे कहते हैं, उसको लेकर के चिंताएं बहुत सारी हैं, तमाम जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आती हैं, उनमें भारत हमेशा से हिंद महासागर क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है और फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। तो इस बात को भी ग्लोबल साउथ के संदर्भ में भारत ने रखा है। भारत को, जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया की फार्मेसी समझा जाता है, लेकिन आज सिर्फ अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसका इस्तेमाल हो रहा है कि जनता, जो जन औषधि योजना जो भारत में लागू हुई, ये दुनिया के तमाम जो विकासशील देश हैं, ग्लोबल साउथ के सदस्य हैं, जिन्हें दुनिया के अग्रणी जो विकसित देश हैं उनसे कोई चिकित्सा से संबंधित या हॉस्पिटल से संबंधित, दवाओं से संबंधित, नई टेक्नोलॉजी से संबंधित जो समर्थन, जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, आज भारत उसको मुहैया कराने की स्थिति में है। तो इसलिए ग्लोबल साउथ को लेकर के भारत की नीति बहुत स्पष्ट है कि इन तमाम देशों को साथ में लेकर आगे बढ़ना है, तभी ग्लोबल साउथ एक ऐसे स्तर पर, ऐसे मुकाम पर पहुंचेगा जहां वो अपनी बात को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कह सके, ना कि सिर्फ जो अभी तक हमने ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ की डिबेट सुनी है उसमें हमेशा ये होता है कि ग्लोबल साउथ के देश कहते हैं कि हमें और फंडिंग दी जाए, हमें ग्रांट्स दी जाए, हमें एड दी जाए। आज भारत अपने इन तमाम ग्लोबल साउथ के देशों की मदद के साथ ये कहना चाहता है, ये करना चाहता है कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ एक ऐसे इस तरह से एक दूसरे को एंगेज करें कि ये वन वे डोनर और रेसिपिएंट रिलेशनशिप से बदले और साउथ अपनी बात को, अपने मुद्दों को कॉन्फिडेंस के साथ ज्यादा असर्टिवली कह सके, और इसके लिए इनकी कैपेसिटीज को बढ़ाना जरूरी है। यही अफ्रीका के देशों में दिख रहा है, यही पैसिफिक आइलैंड के जो तमाम जो छोटे देश हैं और हिंद महासागर में भी यही बात दिख रही है।
1: बिल्कुल, प्रोफेसर राहुल मिश्रा बहुत धन्यवाद। भारत और सेशल्स के संबंधों पर आपने विस्तार से विश्लेषण रखा और निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को बहुत कुछ इन संबंधों को लेकर जानकारी प्राप्त हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा, समुद्री सुरक्षा और सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DT फ्रेडिश पर हमारी नशियात जारी है। पेशे खिदमत कवालियां फनकार हैं मोहम्मद अहमद कवाल और हम

50 साल पुरानी शराकत दारी अब जिद्दत, तराजी, पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली के जरिए मुस्तहकम होगी। वज़ीर आज़म सेशल्स का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान फिजाई हमले रोकने की रजामंदी जाहिर करने के बाद यूएई और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुसाफिर परवाजें दोबारा शुरू हो गई हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जानिब से किए गए फिजाई हमलों की शदीद मजम्मत की है, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत मुतअद्दद शहरी हलाक हुए हैं। यूरोप में शदीद गर्मी के हालात जारी हैं और इससे कई ममालिक मुतासिर हैं और भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनका 3 रोज़ा सेशल्स का दौरा नहायत कामयाब रहा और इससे दोनों मुल्कों के रिश्तों में इजाफा होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 50 वर्षों से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और मुश्तरका तरक्की पर इस्तवार रहे हैं, जबकि आइंदा 50 साल जिद्दत, पायदार तरक्की और इज्तिमाई खुशहाली से इबारत है। अपने दौरे के आखिरी दिन जनाब मोदी ने विक्टोरिया के नवासक्ति विनेगर मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा की। वहां उन्होंने भारतीय बिरादरी के अरकान से भी मुलाकात की। उन्होंने पीस पार्क में नसब महात्मा गांधी के मुजस्मे पर फूलों का नजराना भी पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने सेशल्स के 50वें यौम आजादी की तकरीबात में शिरकत पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने सेशल्स के सदर डॉक्टर पेट्रिक हर्मिनी, हुकूमत और आवाम का शुक्रिया भी अदा किया। सेशल की नेशनल असेंबली को खिताब करने वाले वो भारत के पहले वजीर आजम है। दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के माबेन यूपीआई, ज़राअत, जहाजरानी, खलाई ताउन, मुलजमान की हवालगी और लाइन ऑफ क्रेडिट समेत मुतअद्दद शोबों में मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। अमरीका और ईरान के दरमियान फिजाई हमले रोकने पर रजामंदी जाहिर करने के बाद यूएई और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुसाफिर परवाजें दोबारा शुरू हो गई हैं। दुबई हवाई अड्डे पर परवाजों के औकात के मुताबिक ईरानी परवाज फलाई सेफरन आज तेहरान के लिए दुबई बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे से रवाना हुई। परवाजों की मुअत्तली के बाद इस रूट पर यह पहली बराह रास्त तजारती मुसाफिर परवाज है। इस दौरान ईरान और ओमान के दरमियान मस्कत में नौ तश्कील शुदा मुश्तरका हुरमुज कमेटी की पहली मीटिंग मुनक्किद हुई। यह मीटिंग मुसलसल इलाकाई कशीदगी के दरमियान मुस्तकबिल में आवनाए हुरमुज की हुक्मरानी और समुन्दरी बंदोबस्त से मुतालिक मसाइल के हल की एक ताजा सिफारती कोशिश है। उधर सदर ट्रंप ने भी ऐलान किया है कि आज कतर में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुनक़िद होगा। भारत ने कल अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जानिब से किए गए फिजाई हमलों की शदीद मजम्मत की है, जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत मुतअद्दद शहरी हलाक हुए हैं। एक बयान में वजारत खारजा ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से यह जारहाना कार्रवाई अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और इकतदार आला पर हमला है और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा है। भारत ने अफगानिस्तान के इकतदार आला और इलाकाई सालिमियत के लिए अपनी गैर मुतजलजल हिमायत का इरादा किया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने कल रात अफगानिस्तान के सरहदी सूबों पक्तिका, पक्तिया और कुनार में फिजाई हमले किए। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अफगान हुकूमत के नायब तर्जुमान हमदुल्ला फितरत ने कहा कि पाकिस्तानी फिजाई हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 36 सिविलियन मारे गए हैं, जबकि 163 अफराद जख्मी भी हुए। काबुल में तालिबान की जेर क्यादत हुकूमत ने इसे अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इन हमलों की मजम्मत की और पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि वो अपनी दाखिली सलामती के चैलेंजों के लिए अफगानिस्तान को बलि के बगरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इटली, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी और चेक जमहूरिया समेत यूरोप के कई ममालिक में रिकॉर्ड सतह पर गर्म लहर जारी है। आलमी सेहत तंजीम WHO के मुताबिक 21 जून से पूरे यूरोप में शदीद गर्मी से 1300 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। इटली में शदीद गर्मी में इजाफे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वजारत सेहत के हीट वेव बुलेटिन में ये ताजा जानकारी दी गई है कि 22 शहरों में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत का अलर्ट जारी किया गया है। जर्मनी, चेक जमहूरिया, पोलैंड और हंगरी में भी रिकॉर्ड दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भी हालिया दिनों में 40 डिग्री सेल्सियस का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में कल मुनक्कदा दिफाई एजाजात की तकरीब के दूसरे मरहले में दिफाई अफवाज और भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते के एहलकारों को बहादुरी एजाजात अता किए। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन, वजीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा दीगर मरकजी उजरा और मुसल्ला अफवाज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया ने इस तकरीब में

0: सात है सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल्स, 30 परम विशिष्ट सेवा मेडल्स, 12 उत्तम युद्ध सेवा मेडल्स और 56 अति विशिष्ट सेवा मेडल्स अता किए। अति विशिष्ट सेवा मेडल पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वर्षनी और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल्स पाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजू घई शामिल हैं। इसी तरह वाइस एडमिरल संजय वस्यान, लेफ्टिनेंट जनरल मजेंद्र सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को परम विशिष्ट सेवा मेडल्स अता किए गए। उत्तम युद्ध सेवा मेडल पाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये एजाजात मजकूरा एहलकारों को उनके गैर मामूली और नुमाया खिदमात के एतराफ में दिए गए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर फिजाई हमले को आर्जी तौर पर रोकने और आबनाए हुरमुज से तजारती बहरी जहाजों की आमदोरफ्त दोबारा शुरू करने पर इत्तफाक किया है। इस दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुजाकरात का एक नया दौर आज कतर की राजधानी दोहा में होगा। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि ईरान ने मीटिंग की दरख्वास्त की थी और ये मीटिंग दोहा में होगी, ताहम उन्होंने मुजाकरात के एजेंडे या दोनों ममालिक की नुमाइंदगी की सतह के बारे में मजीद तफसीलात फराहम नहीं की। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कल कहा कि हुकूमत ने बुनियादी, सानवी और तीसरे दर्जे के तिब्बी सहूलती मराकज में तौसी करके मुल्क के सेहत निजाम को नुमाया तौर पर मजबूत किया है। नई दिल्ली में सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी कौंसिल की 16वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि शहरियों और सेहत निजाम के दरमियान रबते के पहले मरकज के तौर पर मुल्क भर में 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर कायम किए जा चुके हैं। सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक कौमी फंड NIIF में हुकूमत हिंद की मजमूई सरमायाकारी अब 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। यह इकदाम मुल्क में बुनियादी ढांचे और कौमी अहमियत के हामिल दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़्म की अक्कासी करता है। पिछले हफ्ते मरकजी काबिना ने मजकूरा फंड में 30,000 करोड़ रुपए की इजाफी सरमायाकारी की मंजूरी दी थी ताकि बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों में सरमायाकारी में तेजी लाई जा सके और मुल्क में घरेलू व बैन अल-अक़वामी इदाराजाती सरमायाकारों को रागिब किया जा सके। वजारत खजाने के मुताबिक ये इजाफी रकम सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक कौमी फंड NIIF के बुनियादी ढांचे पर मरकूज दूसरे फंड के क्याम के लिए इस्तेमाल की जाएगी जो साबिका अहम फंड की जगह लेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में हरियाणा और राजस्थान की हुकूमत ने कल नई दिल्ली में जमुना आबी प्रोजेक्ट की तैयारी और उस पर अमल दरामद के लिए एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए। इस मौके पर बात करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस मुफाहमतनामे से हरियाणा और राजस्थान के लोगों को तकरीबन 3 दहाइयों से दरपेश पानी के मसले का हल हो गया है। उन्होंने कहा कि यह मुआहदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उसूल मुजाकरात के जरिए हल की एक बेहतरीन मिसाल है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस मुआहदे के तहत अगले माह से अक्टूबर तक 3 जेर-ए-जमीन पाइप लाइन के जरिए यमुना कैनाल से राजस्थान को तकरीबन 580 मिलियन क्यूबिक पानी मुहैया कराया जाएगा। भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली पहली टीमों में शामिल हो गई है। ताहम मर्दों की टीम को बराह रास्त क्वालिफाई करने के लिए रवा साल के अख्ताम तक आईसीसी की मर्दों की T20 की रैंकिंग में एशिया की सबसे आला दर्जे की टीम बनना होगा। बैन अल-अक़वामी क्रिकेट कौंसिल ने इस बात की तस्दीक की है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और जुनूबी अफ्रीका ने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों में खवातीन T20 मुकाबलों में अपनी जगह यकीनी बना ली है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स के साथ 50 साल पुरानी शराकतदारी अब जिद्दत तराजी, पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली के जरिए मजीद मुस्तहकम होगी। वजीर आजम सेशल्स का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान फिजाई हमले रोकने की रजामंदी जाहिर करने के बाद यूएई और ईरान के दरमियान बराह रास्त परवाजें दोबारा शुरू हो गई हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जानिब से किए गए फिजाई हमलों की शदीद मजम्मत की है। यूरोप में शदीद गर्मी के हालात जारी हैं और इससे कई ममालिक मुतासिर हैं और भारतीय क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव से 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रीडेश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। किनासी के मौसीकी में लीजिए सुनिए विदुषी अनुपम महाजन का सितार पर बजाया राग माल कौंस।

क्लासिकी मौसीकी में अभी आप सुन रहे थे विदुषी अनुपम महाजन का सितार पर बजाय राग मालकौस। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशा जारी है मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आखिरी शब्द इस प्रोग्राम में सुनिए चंद सदाबहार पुराने फिल्मी नाम में। आगाज लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म है दिल अपना और प्रीत पराई।

0: सारंगा फिल्म का नगमा सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, और इस नगमे के साथ ही आखिरी शब प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 12:50 हुए हैं, अब खबरें नशी की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल हफीज से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स के साथ 50 साल पुरानी शराकतदारी अब जिद्द तराजी, पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली के जरिए मजीद मुस्तहकम होगी। वज़ीर आज़म सेशल्स का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान फिजाई हमले रोकने की रजामंदी जाहिर करने के बाद यूएई और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुसाफिर परवाजें

0: दोबारा शुरू हो गई हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के जानिब से किए गए फिजाई हमलों की शदीद मजम्मत की है, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत मुतअद्दद शहरी हलाक हुए हैं। यूरोप में शदीद गर्मी के हालात जारी हैं और इससे कई ममालिक मुतासिर हैं और भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनका 3 रोजा सेशल्स का दौरा नहायत कामयाब रहा और इससे दोनों मुल्कों के रिश्तों में इजाफा होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनरल मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 50 वर्षों से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और मुश्तरका तरक्की पर इस्तवार रहे हैं, जबकि आइंदा 50 साल जिद्दत, पायदार तरक्की और इज्तमाई खुशहाली से इबारत है। अपने दौरे के आखिरी दिन जनरल मोदी ने विक्टोरिया के नवासक्ति विनयगर मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा की। वहां उन्होंने भारतीय बिरादरी के अरकान से भी मुलाकात की। उन्होंने पीस पार्क में नस्व महात्मा गांधी के मुजस्मे पर फूलों का नजराना भी पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने सेशल्स के 50वें यौम आजादी की तकरीबात में शिरकत पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने सेशल्स के सदर डॉ पेट्रिक हार्मनी, हुकूमत और आवाम का शुक्रिया भी अदा किया। सेशल्स की नेशनल असेंबली को खिताब करने वाले वो भारत के पहले वजीर आजम हैं। दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के माबेन यूपीआई, जरात, जहाजरानी, खलाई ताउन, मुलजमान की हवालगी और लाइन ऑफ क्रेडिट समेत मुतअद्दद शोबों में मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। अमरीका और ईरान के दरमियान फिजाई हमले रोकने पर रजामंदी जाहिर करने के बाद यूएई और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुसाफिर परवाजें दोबारा शुरू हो गई हैं। दुबई हवाई अड्डे पर परवाजों के औकात के मुताबिक ईरानी परवाज फलाई सेफरन कल तेहरान के लिए दुबई बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से रवाना हुई। परवाजों की मुअत्तली के बाद इस रूट पर यह पहली बराह रास्त तजारती मुसाफिर परवाज है। इस दौरान ईरान और ओमान के दरमियान मस्कत में नौ तश्कील शुदा मुश्तरका हुरमुज कमेटी की पहली मीटिंग मुनक़िद हुई। यह मीटिंग मुसलसल इलाकाई कशीदगी के दरमियान मुस्तकबिल में आबनाए हुरमुज की हुक्मरानी और समुन्दरी बंदोबस्त से मुतालिक मसायल के हल की एक ताजा सिफारती कोशिश है। उधर सदर ट्रंप ने भी ऐलान किया है कि आज कतर में अमरीका और ईरान के दरमियान मुजाकरात का पहला दौर मुनक़िद होगा। भारत ने कल अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जानिब से किए गए फिजाई हमलों की शदीद मजम्मत की है, जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत मुतअद्दद शहरी हलाक हुए हैं। एक बयान में वजारत खारजा ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से यह जारहाना कार्रवाई अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और इकतदार आला पर हमला है और इलाकाई अमनो इस्तेकाम के लिए बराह रास्त खतरा है। भारत ने अफगानिस्तान के इकतदार आला और इलाकाई सालमियत के लिए अपनी गैर मुतजलजल हिमायत का इरादा किया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने कल रात अफगानिस्तान के सरहदी सूबों पक्तिका, पक्तिया और कुनार में फिजाई हमले किए। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अफगान हुकूमत के नायब तर्जमान हमदुल्ला फितरत ने कहा कि पाकिस्तानी फिजाई हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 36 सिविलियन मारे गए हैं, जबकि 163 अफराद जख्मी भी हैं। काबुल में तालिबान की जेर क्यादत हुकूमत ने इसे अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफवर्जी करार देते हुए इन हमलों की मजम्मत की और पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि वो अपनी दाखिली सलामती के चैलेंजों के लिए अफगानिस्तान को बलि के बकरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इटली, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी और चेक जमहूरिया समेत यूरोप के कई ममालिक में रिकॉर्ड सतह पर गर्म लहर जारी है। आलमी सेहत तंजीम WHO के मुताबिक 21 जून से पूरे यूरोप में शदीद गर्मी से 1300 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। इटली में शदीद गर्मी में इजाफे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वजारत सेहत के हीट वेव बुलेटिन में यह ताजा जानकारी दी गई है कि 22 शहरों में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत का अलर्ट जारी किया गया है। जर्मनी, चेक जमहूरिया, पोलैंड और हंगरी में भी रिकॉर्ड दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भी हालिया दिनों में 40 डिग्री सेल्सियस का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में कल मुनक़दा दफाई एजाजात की तकरीब के दूसरे मरहले में दफाई अफवाज और भारतीय साली मुहाफिज दस्ते के अहलकारों को बहादुरी एजाजात अता किए। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन, वजीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा दीगर मरकजी उजरा और मुसल्ला अफवाज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया ने इस तकरीब में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल्स, 30 परम विशिष्ट सेवा मेडल्स, 12 उत्तम युद्ध सेवा मेडल्स और 56 अति विशिष्ट सेवा मेडल्स अदा किए। अति विशिष्ट सेवा मेडल पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वर्सनी और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल्स पाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजू घई शामिल हैं। इसी तरह वाइस एडमिरल संजय वस्यान, लेफ्टिनेंट जनरल मजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को परम विशिष्ट सेवा मेडल्स अदा किए गए। उत्तम युद्ध सेवा मेडल पाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये एजाजात मस्कुरा एहलकारों को उनके गैर मामूली और नुमाया खिदमात के एतराफ में दिए गए हैं। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर फिजाई हमले को आर्जी तौर पर रोकने और आबनाए हुरमुज से तजारती बहरी जहाजों को आमदोरफ्त दोबारा शुरू करने पर इत्तफाक किया है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि ईरान ने मीटिंग की दरख्वास्त की थी और ये मीटिंग दोहा में होगी, ताहम उन्होंने मुजाकरात के एजेंडे या दोनों ममालिक की नुमाइंदगी की सतह के बारे में मजीद तफसीलात फराहम नहीं की। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कल कहा कि हुकूमत ने बुनियादी, सानवी और तीसरे दर्जे के तिब्बी सहूलती मरकज में तौसी करके मुल्क के सेहत निजाम को नुमाया तौर पर मजबूत किया है। नई दिल्ली में सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी कौंसिल की 16वीं कॉन्फ्रेंस से खताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि शहरियों और सेहत निजाम के दरमियान रबते के पहले मरकज के तौर पर मुल्क भर में 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर कायम किए जा चुके हैं। सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक कौमी फंड NIIF में हुकूमत हिंद की मजमूई सरमायाकारी अब 60,000 करोड़ रूपये तक पहुंच गई है। यह इकदाम मुल्क में बुनियादी ढांचे और कौमी अहमियत के हामिल दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़्म की अक्कासी करता है। पिछले हफ्ते मरकजी काबीना ने मस्कूरा फंड में 30,000 करोड़ रूपये की इजाफी सरमायाकारी की मंजूरी दी थी ताकि बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों में सरमायाकारी में तेजी लाई जा सके और मुल्क में घरेलू और बैन अलाक़वामी में दराजाती सरमायाकारों को रागिब किया जा सके। भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली पहली टीमों में शामिल हो गई है। तहां मर्दों की टीम को बराह रास्त क्वालिफाई करने के लिए रवा साल के अख्ताम तक ICC की मर्दों की T20 की रैंकिंग में एशिया की सबसे आला दर्जे की टीम बनना होगा। बैन अलाक़वामी क्रिकेट कौंसिल ने इस बात की तस्दीक की है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और जनूबी अफ्रीका ने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों में खवातीन T20 मुकाबलों में अपनी जगह यकीनी बना ली है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स के साथ 50 साल पुरानी शराकतदारी अब जिद्दत तराजी, पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली के जरिए मुस्तहकम होगी। अमरीका और ईरान के दरमियान फिजाई हमले रोकने की रजामंदी जाहिर करने के बाद UAE और ईरान के दरमियान बराह रास्त परवाजें दोबारा शुरू हो गई हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जानिब से किए गए फिजाई हमलों की शदीद मजम्मत की है, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत मुतअद्दद शहरी हलाक हुए हैं। यूरोप में शदीद गर्मी के हालात जारी हैं और इससे कई ममालिक मुतासिर हैं। और भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1,071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फिडेश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब का एक बजा चाहता है। हमारी तीसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। सुबह 9:30 पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे पहली मजलिस की नशरियात के साथ। समय तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। शब बखैर। जय हिंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल

0: चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीश शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे, विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने बताया कि यह समिति शादी, तलाक और गोद लेने जैसे कुल 9 विषयों पर अध्ययन कर 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिन पूर्वोत्तर का दौरा करेंगे। श्री चौहान असम के गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में असम और आसपास के इलाकों में बाढ़ से फसलों और गांवों में हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। इसके बाद श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मूज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। फीफा विश्व कप में ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में ब्राजील ने जापान को 1-2 गोल से हरा दिया। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मैच में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में जर्मनी का सामना पैराग्वे से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच देर रात 2 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी आप आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है और स्टूडियो की घड़ी में रात के 1:10 हुए हैं। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम गीत सुनहरी गोल्डन एरा। जी हाँ, ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए लाते हैं वो खूबसूरत सदाबहार गीत जो कभी पुराने होते नहीं। और आज अपने गीतों का पिटारा लेकर मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म सरस्वती चंद्र के इस गीत के साथ। आवाज लता मंगेशकर की है और साथ ही साथ मुकेश कुमार की। गीतकार इंदिवर है और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

गीत सवेरे कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म प्यार का मौसम से आवाज़ है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

ये सुनते हैं अगला गीत मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से, आवाजें हैं लता मंगेशकर की, गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ये सुनते हैं अगला गीत फिल्म किस्मत से, आवाजें हैं लता मंगेशकर की और गीतकार हैं नूर दिवासी, संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

ओ बेवफा तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा, तू गुस्सा जो करती है कर ले प्यार भी थोड़ा। तेरे बिना जीना मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार तो हर यार को बिल्कुल ना पहचाने। मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नादमी जालिम हसीना मान जाए।

0: तेरे और दिल पर सोनी।
1: खूबसूरत गीतों की लड़ी में लीजिए सुनिए अगला गीत। फिल्म का नाम है दो कलिया, आवाज मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की है। गीतकार है साहिर लुधियानवी और संगीत यह है रवि ने।

0: मुझे सुनते हैं अगला गीत, फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है, आवाज़ है मोहम्मद रफी की, गीतकार है हसरत जयपुरी और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।
1: हमने

मैंने नहीं सोचा था।

चलिए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है प्रिंस, आवाज है लता मंगेशकर की, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म का नाम है आदमी और इंसान। आवाजें हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर की। संगीत दिया है रवि ने।

0: पहले ये मालूम न था।
1: गीत सुनहरे कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपने दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार, लेकिन जुड़े रहिए एयरलाइन न्यूज 24x7 चैनल के साथ, क्योंकि अब से थोड़ी देर में ठीक 2 बजे पहले हिंदी में और उसके उपरांत अंग्रेजी में समाचार सुनिए। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्य के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वासन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के

0: की उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान कानून के पालन के लिए राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने कहा कि ये समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर राज्य सरकार संहिता तैयार करेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि कानून का शासन न तो कोई कल्याणकारी योजना है और न ही कोई आर्थिक नीति है, बल्कि ये सत्ता के इस्तेमाल को अनुशासित करता है ताकि कोई भी व्यक्ति मनमानी करने वाली सरकार का शिकार न बने। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस सम्मेलन में अपने मुख्य संबोधन में ये बात कही। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबू धाबी से आए 25 साल के एक यात्री को 2,38,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 7 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले आरोपी मोइन खान को एयर खुफिया इकाई ने खास जानकारी के आधार पर पकड़ा। नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच खतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि खतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। फीफा विश्व कप में ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में ब्राजील ने जापान को 1-2 गोल से हरा दिया। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मैच में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में जर्मनी और पराग्वे के बीच मुकाबला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is Akashvani, the news read by Akhila. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan last evening. The President confers 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishish Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishish Seva Medals at the ceremony. The medals are awarded to the personnel for distinguished service of an exceptional order. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of the armed forces were also present on the occasion. Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both the nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. In a social media post, he said over the last 50 years, the relationship between the two nations has been characterized by profound trust and mutual advancement.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत पहाड़ नॉन स्टॉप फिल्म संगीत कार्यक्रम। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

0: जी आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 3 बजने को है। अब से थोड़ी देर में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णे और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे, विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री

0: की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने कहा कि यह समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर रहेंगे। श्री चौहान असम के गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में असम और आसपास के इलाकों में बाढ़ से फसलों और गांवों में हुए नुकसान की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबुधाबी से आए 25 साल के एक यात्री को 2,38,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 7 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले आरोपी मोइन खान को एयर खुफिया इकाई ने खास जानकारी के आधार पर पकड़ा। नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का पारगमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में जर्मनी और पैराग्वे के बीच मुकाबला जारी है। हाफ टाइम तक मुकाबले में पैराग्वे 1-0 से आगे है, वहीं ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Akhila. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the phase 2nd of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan last evening. The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. The medals were awarded to the personnel for distinguished service of an exceptional order. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of armed forces, were also present on the occasion. Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both the nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. In a social media post, he said, over the last 50 years, the relationship between the two nations has been characterized by profound trust and mutual advancement, whereas the forthcoming 50 years will be shaped by innovation, sustainability and collective prosperity. The West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026 have been passed in the State Legislative Assembly. Under the provisions of the Public Safety Bill, a person can be detained for a maximum of 12 months under preventive arrest norm for antisocial activities which may cause disturbance to public safety and disturb public peace and order. The Maintenance of Public Order Amendment Bill, the original act of 1972, has been amended

जगजीत सिंह की आवाज में गाई इस गजल के बढ़ा दीजिए। एक बार फिर से सुनिए जगजीत सिंह को इस गजल में, देर लगी आनी।

खूबसूरत सी गजल के बाद लीजिए अब आपके लिए पेश है शशि लता मकर की आवाज में गजल जिंदगी किस मकाम से गुजरी।

गजलों के बाद लीजिए, अब सुनिए कर्नाटक संगीत का ये कार्यक्रम।

नारायण तीर्थ की एक रचना सुनिए। कलाकार हैं नेदुनूरी कृष्णमूर्ति, एम जलजाक्षी, एम बी रमणम मूर्ति, पी सूर्या राव, एम एल नरसिम्हम, एस वसुंधरा देवी और एम जोगुलाम्बा।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना, आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात के 4:20 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत पर आधारित कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गायन। कलाकार हैं TV मणिकंदन। आपने प्रस्तुत किया है रागम पूर्वी कल्याणी जो आदिताल में निबद्ध है। संगीत दिया है रामानंद श्रीनिवास अयंकर ने और मृदंगम पर साथ दिया है N पद्मनाभन और वायलिन पर G राघवेंद्र ने। तो लीजिए सुनिए TV मणिकंदन का गाया रागम पूर्वी कल्याणी।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे टीवी मणिकंदन का गाया रागम पूर्वी कल्याणी जो आदि ताल में निबद्ध था। संगीत दिया था रामानंद श्रीनिवास अयंकर ने और मृदंगम प्रसाद दिया था एन पद्मनाभन ने और वलन प्रसाद दिया था जी राघवेन्द्र ने।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम में 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है। शक सम्वत 1948 के आषाढ़ मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 जून 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम आओ योग करें। 5:20 का समय रहेगा देशभक्ति गीत का और 5:30 सुनिएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आप सुन सकेंगे चंद्रिमा मजुमदार का सरोद वादन। आप सुनेंगे राग बटियार।

कमिटमेंट का समय रहेगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का चिंतन सुनेगा 6:40 पर। आज आप सुनेंगे सुमित्रा नंदन पंत के विचार। 5:45 का समय रहेगा रामचरित पढ़ने से पाठ का। आज प्रस्तुत होगा बालकांड का भाग 102। 6:55 पर सुनेगा संस्कृत में समाचार और फिर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

मैं सतगुरु जी को स्मृत पर सुनिएगा संगीतिका, इसके अंतर्गत आज शब्द प्रसारित किए जाएंगे बलजीत सिंह की आवाज में। साढ़े 7 बजे समय रहेगा गीतों भरी गुड मॉर्निंग का।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा आप सुन सकेंगे सुबह 8:45 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे स्मित तिवारी का सर्वोत्पादन। आज आप सुन सकेंगे राग अहिर भैरव। नमस्कार, 15 मिनट पर सुनिएगा कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। इसका विषय रहेगा मॉलिक्यूलर आणविक ऑन्कोलॉजी में वैज्ञानिक प्रगति। 9:30 मिट्टी की महक पंजाबी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। प्रस्तुत करेंगे इंद्र प्रीत कौर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश 11:10 पर सबरिस प्रसारित किया जाएगा। और 11:30 सुनिएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर मंजनी। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गोपाल सिंह का गिटार पर बजाया राग तोड़ी। सचिन, ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुनिए 5 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।

विवेक दान विसाह दान प्रसादान दान सरदान नाम दान श्री अमृत सार साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बंदे जुगों जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

साम कैसे तुम स्वामी सच में अच्छे साच रहे सबको सच सुमावे जिग कह रहे भरपूर राम नाम देवा मैं सूरत नाइलेष्ट जाहे नानक तुम खंत्र में जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जाद भया पार जात गो पीला आया बिंद्रबन में रंग किया कल मैं गोरथर बन हुआ नाउ खुदाई लोह भया नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद होए सचार पड़े गुणे तिन चार विचार भाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुखन तुर पाए पौड़ी सतगुरु मिटो वारिया जित मिले कसम संभालिया जिन कर दिशा जिंदी इन नेत्रे जगत निहाले।

बार पुस्तक संध्या बादं सिल पुरुष बगल समादं मुख चोट बपूखण सारं त्रै पहल तिहाल बिचारं गल माला तिलक ललाटं दे धोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्म कर्म सफुक निश्च कर्म कहो नानक निश्च त्यावे सतगुरु वात।